0: पुडेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। एक पूरी श्रृंखला हम तय कर रहे हैं जिसमें कितना कुछ जान रहे हैं। ये जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो पूरा एहसास है, ये हम इस सफर में तय करते हुए जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जब एक एक पर्दा हटता जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किताब का एक एक वर्क, एक एक अध्याय हम पढ़ते जा रहे हैं और फिर पूरा का पूरा जो सिनारियो है, जो दुनिया का सिनारियो है, उसको जान पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस जो कार्मिक फिलॉसफी की हम बात कर रहे थे पिछली कड़ी में, उसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। बहुत सी बातें हमने जानी है, बहुत अच्छा लगता है। अब इट्स अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल फीलिंग। और जो अगर हम पिछली कड़ी को देखें तो हमने उस कार्मिक फिलॉसफी की बात की थी जो जिसके ऊपर शायद हमारे पूरे अगर हम देखें किसी भी धर्म के हो, हमारा पूरा जीवन खड़ा मिलता है।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो
1: एंड मेजोरिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस विल गेट आंसर्ड
0: एक्चुअली,
1: यू नो, अगर आप सीरियसली उसको समझने की कोशिश करें और किसी भी परिस्थिति में हो तो डिटैच होकर एक मिनट उस लॉ को वर्क करें, यू विल गेट योर आंसर।
0: एक लॉ जो हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था पिछली बार, वो ये कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और ये बात आई थिंक जब मैं छोटी थी, जब मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने पढ़ ली थी। और हर बार ये पढ़ते गए जानते गए, लेकिन जिंदगी में अपनाना और क्या बो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। मैं तो ये नहीं समझ पाती थी कि मैंने पौधा कौन सा लगाया था। आज जाके इतने समय बाद ये बात क्लियर हुई है कि ये हमारे कर्म है, ये हमारा थॉट है।
1: वही बात हो गई ना, ज्ञान आत्मा हूँ ये भी तो पहले पता था। लेकिन अवेयरनेस, इसी तरह कार्मिक लॉ वर्क करता है। सुना था, मतलब ये बात तो इतनी बार सुनी है। एंड उसको न्यूटन्स लॉ से भी कंपेयर करते हैं, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी नो इट, बट आर वी अवेयर ऑफ इट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन? आर वी अवेयर ऑफ इट व्हेन वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन? यू नो, फिर अगर अवेयरनेस होती तो ये नहीं बोलना पड़ता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इफ आई रिमेम्बर कि एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, अब वो नीचे वापस आएगी और उतने ही फोर्स से आएगी, कहीं और नहीं चली जाएगी, वो मेरे पास ही आएगी। तो फिर जब वो मेरे पास गिरती है तो मैं ये क्यों पूछ रही हूँ ये कहाँ से आ गई मेरे पास,
0: क्यों आई,
1: वेयर हैज इट कम फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू। यू नो, कर्म इज लाइक रिपल्स इन द पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड के अंदर एक पेबल गिराते हैं, ऐसे एक छोटा सा पत्थर फेंकिए, बहुत सारी लहरें बनती है, रिपल्स बन जाती है और वो सारी ट्रेवल करती है उस पॉन्ड के अंदर। अब वो जाकर किनारे को हिट करके वापस आ जाती है। और कई जो रिपल्स हैं वो पॉन्ड के बीच में कुछ और पत्थर या कुछ और पौधे होंगे तो उसको हिट करके वापस आ जाएगी, लेकिन वापस हर रिपल आती है। सिमिलरली एवरी एनर्जी दैट आई क्रिएट, एवरी थॉट दैट आई क्रिएट, इट्स अ रिपल।
0: एवरी एक्शन
1: एक्शन से भी पहले, या दैट्स व्हाट, एवरी थॉट, वी कॉल थॉट आल्सो एन एक्शन, यू नो। तो स्थूल कर्म नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी इसको कर्म, तो हर संकल्प वो एक रिपल की तरह है। ये यहाँ से निकलेगा, जिसके लिए क्रिएट किया गया था वहां पर जाएगा, उस टारगेट को हिट करेगा, वापस आएगा। नाउ द रिपल्स व्हेन दे आर कमिंग बैक, कोई रिपल तुरंत आ जाएगा वापस, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद। लेकिन जब वो 100 साल बाद आता है या 10 साल बाद भी आता है तो वी हैव फॉरगॉटन, यू नो, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम सो गए हैं फिर से। तो हमें ये भूल गया कि ये उसी का रिटर्न है जो एनर्जी मैंने बाहर भेजी थी।
0: तो ये जरूरी नहीं है कि हमें याद रहे। सी अगेन,
1: दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स।
0: हमें ये जरूरी नहीं है कि हमने क्या किया है,
1: ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा वैसे भी
0: कि हमने क्या
1: किया। हाँ, नहीं, क्या हमने गलत किया वो तो करने के टाइम उसकी अवेयरनेस होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसको तुरंत कनेक्ट
0: कर पाए।
1: यू नो, वो वाला जो किया था ये उसका रिजल्ट है। नो, दिस इज एनर्जी फ्लोइंग आउट, कमिंग बैक, व्हेन, वेयर, आई माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। एंड सही बार जरूरी नहीं है उसी टाइम हो जाए ना, कुछ गलतियों का रिजल्ट तो हमें उसी टाइम मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये गलती की थी, ये सजा मिली है। लेकिन जब वो एक टाइम गैप के बाद होता है तब वो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारी एनर्जी इस तरह से भेज रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली।
0: एक बार सिस्टर शिवानी, हम दोबारा वो MIS सिस्टम जो हमारा है, जो पूरा कार्मिक फिलॉसफी का है, कि किस तरह से हमारा जो हम संकल्प करते हैं वो किस तरह से इंटेलेक्ट एक्शन में परिवर्तित करता है और फिर वो इम्प्रेशन बनता है. एक बार और उस तक
1: लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड आई थिंक हर एक को ये बहुत अच्छी तरह से समझ के फिट कर लेना पड़ेगा ताकि हर टाइम करते समय वो साइकिल जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए. हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं, माइंड बुद्धि उस पर निर्णय देती है, इंटेलेक्ट, और फिर वो कर्म में आ जाता है, एक्शन. सो आई हैव टेकन अ थॉट, डिसीजन, एक्शन. जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसका इम्प्रेशन, तो इट वेंट आउट लाइक दिस, इम्प्रेशन बैक. तो वो मार्क एक बन गया जिसको हम कहेंगे संस्कार बन गया. अब जैसा मेरा संस्कार बन गया है, नेक्स्ट टाइम उस संस्कार की क्वालिटी के आधार पर संकल्प, फिर डिसीशन, फिर एक्शन, फिर उसका संस्कार बनेगा. तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन एवरी टाइम. तो सपोज राइट नाउ किसी भी परिस्थिति की वजह से मैं बहुत दुखी हूं, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ सोरो, लॉट ऑफ पेन इनसाइड. तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. यू नो, लेट्स स्टॉप लुकिंग फॉर द रीजन आउटसाइड. नॉर्मली क्या हो रहा है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है. ही इज रिस्पॉन्सिबल, शी इज रिस्पॉन्सिबल, सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल, गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, व्हेन नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, माय स्टार्स आर रिस्पॉन्सिबल, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग एवरीथिंग. आई मीन वी जस्ट गो,
0: इट हैज टू हैपन, इट इज रिटन,
1: डेस्टिनी, मेरी लक खराब है. तो अनफॉर्चुनेटली जहां रीजन है उसको छोड़ के हम बाहर की तरफ देख रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपने पास देखना कि अभी मैं उदास हूं, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में मैंने इस तरह की शक्ति को या इस तरह के इम्प्रेशन को बनाया था, क्योंकि उस समय मेरे में शक्ति नहीं थी एक सही कर्म करने की, एक सही निर्णय करने की. तो आई क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सोरो. नाउ एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग इनटू दैट सिचुएशन या एवरी टाइम आई एम मीटिंग दैट पर्सन, यू नो, कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर दर्द होता है, या उनसे मिलकर नहीं लेकिन उनकी वजह से हमें दर्द मिल रहा है हर टाइम. शायद वो हमारे साथ नहीं है इसलिए दर्द हो रहा है, कारण कुछ भी है, बट आई, यू नो, आई अकाउंट देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि इनकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है. और जैसे आपने कहा वो अच्छा भी लगने लगता है थोड़े टाइम के बाद, तो वो अच्छा लगना मतलब तो हम उसको और भी ज्यादा रीइन्फोर्स करते जा रहे हैं, उस संस्कार को और पक्का करते जा रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा संस्कार मैंने पहले क्रिएट किया था, अब फिर जब मैं कर्म में आ रही हूं उनके साथ, मैं फिर से वही थॉट प्रोसेस से जा रही हूं, फिर वो संस्कार पक्का होता जा रहा है. अब मुझे समझना होगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं, अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उस इम्प्रेशन दर्द वाला है ना, तो वो ही कर्म में आ जाता है. सी आई हैव क्रिएट, इट्स लाइक सेइंग, लेट्स फॉर एग्जांपल, अ ब्लैक पिक्चर इनसाइड. अब वो ब्लैक पिक्चर ही एक थॉट क्रिएट करता है, वो ही एक्शन में लाता है, तो एक ब्लैक थॉट क्रिएट होता है, एक ब्लैक एक्शन क्रिएट होता है. अब इस ब्लैक एक्शन का ही इम्प्रेशन
0: दोबारा
1: फिर से ब्लैक वाला बनेगा. तो somehow वो साइकिल ही पूरा ब्लैक कलर का हो गया है. अब नाउ आई एम सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, लेकिन वो कलर ही ब्लैक है यहाँ पे, तो बाहर क्या जा रहा है. तो वो फ्री होने की बजाय वो और भी ज्यादा
0: ब्लैक
1: पक्का होता जाता है, क्योंकि जो अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी बाहर जा रही है, वही एनर्जी फिर से आ रही है. तो वो अकाउंट खत्म होने की जगह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन सबसे पहली अवेयरनेस ये चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, and when we say जो कुछ, it means absolutely जो कुछ भी, you know, चाहे वो आपकी health है, चाहे वो आपके business में ups and downs है, चाहे वो आपके relationships में ups and downs है, चाहे वो कोई physical disability है, I mean just think of anything, या चाहे वो हमारे घर में किसी बहुत नजदीक व्यक्ति का शरीर छोड़ना है, whatever, everything, हर चीज जो मेरे साथ हो रही है उसका जिम्मेवार
0: मैं हूं.
1: उससे पहली बात स्टेबिलिटी आ जाती है कि ये कर्म मैंने कोई किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये अकाउंट मेरा क्रिएट किया हुआ था उसको सेटल मुझे करना पड़ रहा है, तो उसका वाइज वेयर व्हाट हाउ स्टॉप.
0: लेकिन यहां ये जो कार्मिक थ्योरी है पूरी, कि मैं मानती हूं मैंने मैंने कोई कर्म किया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन इस जन्म में तो मैं देखती हूं अगर उसी व्यक्ति के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी भी या किसी भी सिचुएशन में मैंने कुछ वहां पे कुछ नहीं किया हुआ, तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? यू नो, देन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी बिकम्स रियली टफ.
1: सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो

0: Now you see, yesterday you were wearing a yellow saree. Today you are wearing a red saree. जब आपने कल येलो साड़ी पहनी थी एंड आप मेरे से 500 रुपए बोरो करते हैं, ठीक है, मैंने भी आपको दे दिए, आप लेकर चले गए. आज आप आ गए रेड साड़ी पहनकर एंड आई से एक्सक्यूज मी कनुप्रिया, माई 500 रुपीज बैक.
1: मेरा मेमोरी लॉस हो गया बीच में फिर.
0: या दैट्स ओके, बट आई टू नीड माई मनी बैक.
1: But then again, I'm not living with awareness that I don't have that memory.
0: Right, but I need my money back. So if you are not going to give it to me with love, I will pull it from you. I will snatch it from you.
1: But then that will pain me.
0: That is what is happening.
1: So then I accept. I should accept because I have a memory loss.
0: Right.
1: I don't remember that I had given you the money.
0: Right, but you have to remember that when I'm asking you for it, you had borrowed it from me. अब आप आकर कहें कि नहीं मैंने तो नहीं लिया था आपसे. क्योंकि आपने लिया था, आपको याद नहीं है. आप कहेंगे उस टाइम मैं येलो साड़ी में थी.
1: नहीं तो, मुझे तो याद ही नहीं ना. सी अगेन, दिस इज व्हाट आई एम
0: सेइंग. ठीक है, फाइन, आपको याद नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज होने से आप बदले.
1: मैं नहीं बदली. हाँ.
0: तो आपने ही बोरो किया था, अब आपको रिटर्न करना होगा. अब वो आप प्यार से करें या जबरदस्ती करें, करना तो आपको पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई. आपने बोरो किया था, कॉस्ट्यूम है ये भी. आज ये है, थोड़े साल बाद इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे. लेकिन इस कॉस्ट्यूम में जो आपके साथ अकाउंट बनाऊंगे, अगर आपको दुख दिया तो फिर कहीं ना कहीं वो दुख मेरे पास वापस तो आना ही पड़ेगा.
1: तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आज के वक्त में, आज इस कॉस्ट्यूम में, कानुप्रिया की जिंदगी में या किसी का भी नाम ले, उसकी जिंदगी में अगर दुख, जिसका वजह वो आज नहीं समझ पा रही, पिछले जन्म का कुछ, कहीं कोई कार्मिक डेप्ट या कुछ अकाउंट चल रहा है, तो वो मेमोरी तो नहीं है.
0: कोई बात नहीं,
1: तब एक्सेप्टेंस.
0: इसीलिए तो मेमोरी नहीं है, लेकिन नॉलेज तो अब हो गई ना
1: कि ये कहीं ना कहीं होगा,
0: मेरी वजह से है. सी, एक्सेप्ट करना तब मुश्किल होता है जब मुझे उसका रीजन नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं ये पैसे. लेकिन जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, भले आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपने बोरो किया था इसलिए आपको रिटर्न करना है, तो भले आप अनविलिंगली रिटर्न करेंगे, लेकिन इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी. तो सिमिलरली, हमने जो पिछले कॉस्ट्यूम में किया हमें याद नहीं है, लेकिन अब अगर हमें लॉ समझ में आ गया कि हाउ द लॉ वर्क्स, देन वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट्स माई क्रिएशन. मैंने एनर्जी दी थी, आज मुझे वापस मिल रही है, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा जो वो हैवीनेस आती है क्वेश्चंस के साथ वो खत्म हो जाएगी. एंड आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैंने ही इसको एक्सप्लॉइट किया होगा, मैंने ही रॉन्ग एनर्जी ट्रांसमिट की थी, आज मुझे मिल रही है. लुक इन द एनवायरमेंट, What have we done to the environment? So environment हमें वापस नहीं देगा वो, और वो दे रहा है.
1: दे रहा.
0: अब हम कहते हैं जी ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से इतना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. डोंट वी समवेयर नो दैट वी हैव डन इट. सो इवन टू दैट हाइएस्ट ग्लोबल लेवल वी आर गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑफ आर एक्शंस, इवन फ्रॉम नेचर. इट वर्क्स एट एवरी लेवल, पर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल, तीनों लेवल्स पर वो वर्क करने वाला. तो अब सिर्फ चाहिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेवार मैं हूं. आधा काम उससे खत्म हो जाता है. यू नो, जैसे राह चलते कोई मिलता है और एकदम से, यू नो, रोड पे बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा आप किसी को क्रॉस करते हैं, गाड़ी को टक्कर लग जाती है, कई लोग बस खड़े होकर वहां जोर जोर जोर से आपसे कुछ बहुत कहेंगे और गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे. पहले वी वुड से ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया, आई हैव टू रिप्लाई बैक, आई हैव टू डू दिस. इजी वे इज ओके, अकाउंट सेटल्ड, फिनिश्ड, ओम शांति, फुल स्टॉप. देयर इज नो
1: कंटिन्यूअस प्रोसेस,
0: दैट इज द सेटलिंग ऑफ द अकाउंट फर्स्ट. जो ये और हम एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, वेयर, व्हाई डिड दिस हैपन, आई एम क्रिएटिंग मोर नेगेटिव एनर्जी, तब फिर वो अकाउंट सेटल होने की बजाय और भी ज्यादा accumulate होता जाता है. तो accept कर लीजिए, वैसे भी कोई option नहीं और actually
1: यहाँ नहीं मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि
0: resist करने से भी कोई option नहीं है. It just is very conflicting. लेकिन जब आप accept कर लेते हैं, now then you can change it.
1: वो
0: दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट
1: ट्रांसफॉर्मेशन है या एनर्जी.
0: जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज को, हम रेजिस्ट करते रहते हैं. सो वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी.

0: तो पहले नेगेटिव कर्मा था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि हम सेटल क्यों नहीं कर पाते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ट्रांसफॉर्म नहीं करते. व्हाट वी कीप डूइंग इज क्रिएटिंग मोर नेगेटिव कर्मा विद दैट नेगेटिव इम्प्रेशन. एक बना है हम और अपसेट होते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, फिर और अपसेट होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सो यू सी अगेन नेगेटिव आउट नेगेटिव रिटर्न, संस्कार और पक्का, एंड इट्स बिकम अ विशियस साइकिल नाउ. इट्स अ वेरी वेरी विशियस साइकिल. एंड आत्मा बिल्कुल जैसे उस बोझ से
1: उसमें घुसता ही जा रहा है, घुसते ही जाते हैं,
0: एंड जितना हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं
1: और उलझ जाते हैं.
0: तो इसलिए जो आपने कहा ना कि कई बार हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, बट अब अपने जन्म की डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉडर करें कि अब मैं आत्मा, तो आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु की बात नहीं है. जीवन की ये यात्रा है, ये एक कॉस्ट्यूम है, या कहें ये एक एपिसोड है. यू नो आजकल जो सीरियल्स आते हैं टेलीविजन पर, सो यू वोंट हैव अ सेपरेट स्टोरी इन एवरी एपिसोड. इट्स अ कैरी फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाई द यू नो द सोप इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक है कि एवरी एपिसोड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नो इतने सालों से यू नो एक सीरियल चल रही है, सोप ओपेरा, तो हर एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड. Every life is a continuation of the previous episode. Now this is one episode. इस episode में हम जो कुछ करेंगे इसका carry forward हमारे next episode में होगा. And that's why the world drama is interesting.
1: Okay, यहाँ एक और बात जानना चाहती हूँ. I think बहुत से हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं कि ये एक inquisitiveness है कि हर episode में जो characters हैं हमारे आसपास वही कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे या कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे या वही सोल. ये भी एक सवाल है कि क्या हम, क्योंकि अगर कार्मिक डेप्थ है या कार्मिक अकाउंट्स है तो वही लोग फिर मिल जाते हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो क्या हम घुमा फिरा के चलते हैं?
0: यस एब्सोल्युटली. इट इज अ पर्टिकुलर सेट व्हिच इज टुगेदर. जैसे डिफरेंट सीरियल्स चल रहे हैं एट अ टाइम ऑन एयर, लेकिन एक पर्टिकुलर सीरियल में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टर्स है, यू नो, तो उनका इंटरप्ले एक दूसरे के साथ है. हाँ, ये हो सकता है इस एपिसोड में आप चार एक्टर्स को देखते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसमें से दो कोई और दो के साथ है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर लाइफ टाइम में मिल रहे हैं, बट घुमा फिरा के या एक दो छोड़ के लाइव्स, देन वी आर अगेन कमिंग बैक इन टू प्ले. लेकिन जिनके साथ जितना अकाउंट होगा वी विल कम बैक इन टू प्ले विद देम. एब्सोल्युटली. नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक यू सेड अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि हाउ वुड वी नो. तो अगेन नोबडी टू जज राइट एंड रॉन्ग, लेकिन फिर भी उसको अगर बहुत इटर्नल बेसिस पर देखें, जैसे आत्मा की हमें पहचान मिली कि दैट इज द ट्रूथ, तो उस पहचान में रहकर जो हम कर्म करेंगे और उस पहचान की विस्मृति से जो हम कर्म करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाता है.
1: ओके, ये जानते हुए, अपने बेसिक्स को जानते हुए,
0: एक इमेज क्रिएट करके, यू नो, व्हेन आई एम द सोल, ये हम भूल गए, मैं शरीर हूं और मैं वो सारे लेबल्स हूं, पोजिशन हूं, उस भान में जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर जो भी कर्म करेंगे इट्स ईगो. ईगो है ना, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. तो बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान में रहकर जो भी कर्म होगा, इवन अ थॉट, वो नेगेटिव.
1: तो इसका मतलब अभी तक जो हम करते आए या मैं करती आई या अभी जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, सो दैट वाज रॉन्ग.
0: या बिकॉज सी व्हाई इट्स रॉन्ग, अगेन व्हाई इज इट रॉन्ग, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, आप एक इल्यूजन में चल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, आप एक भय में चल रहे हैं कि ये मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगी, आप इस भी भय में चल रहे हैं कि ये जो सब कुछ मेरा है ये खत्म ना हो जाए, तो आपके थॉट्स कैसे वाले क्रिएट हो रहे हैं,
1: सारे नेगेटिव है,
0: मेरे कुछ हो ना जाए, इनको कुछ ना हो जाए, ये मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, तो डर में चल रहे हैं. अब ये जो सारी जिन चीजों से मेरी डिपेंडेंसी जिन पर हो गई है, एडिक्शन भी हो जाती है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, एक सर्वाइवल का सारा दिन लगा हुआ है, और चाहिए और चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स, एक्शंस, इंप्रेशंस बन रहे हैं इन दिस प्रोसेस? नेगेटिव. अब एक फियर क्रिएट होता है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए. What kind of thought? Negative. तो फिर उस प्रोसेस में
1: और उनको बचाने के सारे और तरीके, you know, दाम, दाम, दाम,
0: अगर उनको किसी ने कुछ किया या मेरे उस इमेज को किसी ने कुछ कहा, इंसल्ट की, गुस्सा आएगा, विच थॉट एक्शन एंगर. तो ये एंगर ग्रीड जेलेसी इनके वश जो भी कर्म होगा, मतलब देह अभिमान के वश जो भी कर्म होगा वो नेगेटिव कर्म में जाएगा, जिनको हम कहेंगे सिनफुल एक्शंस. बट सिन क्या है, पाप क्या है, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं और उस स्वरूप में हम जो भी कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हमें रिजल्ट दे रहा है, और वो ही आज हमारा रिजल्ट हो गया. इतनी टेंशन, इतनी वरी, इतनी एंग्जाइटी. तो बॉडी कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म नेगेटिव या जिसको हम विकर्म कहते हैं. दूसरा है न्यूट्रल एक्शन, अकर्म, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऑर्डिनरी एक्शन. मुझे ऑफिस जाना है, मुझे आज इनसे मिलना है, लेकिन ये ऑर्डिनरी एक्शन भी अगर हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किया इट विल गेट अकाउंटेड इनटू नेगेटिव. सो टू बी वेरी केयरफुल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अब हमें चांस मिला है करने का, पॉजिटिव एक्शन या जिसको कहते हैं सुकर्म, अपने सही स्वरूप को पहचान लिया. आई एम ब्यूटिफुल एनर्जी लाइक दैट फ्लावर. Once I come to know who I am, I'm just spreading my awareness. I don't need anything from anybody. My fragrance, my beauty is just for everything outside. मुझे कुछ चाहिए नहीं. तो भय
1: नहीं,
0: मृत्यु का भय खत्म हुआ, चीजें खोने का भय खत्म हुआ, अपने पोजिशन, अपने स्टेटस खोने का भय खत्म हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हुई. Thoughts are changing, actions are changing, result is changing just with one change of consciousness, just with getting the truth. And that's why itni sadiyon se hum sunte aaye ke who am I, jis din ye answer kar loge to sari problems
1: solve ho jayenge,
0: because that's really the truth. Kyunki us ek change of consciousness se सारा हो जाएगा.
1: लेकिन अब सवाल ये आता है कि विकर्म जो हम करते आए हैं सुप्त अवस्था पे, सुषुप्त अवस्था के बाद जो कहते हैं स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग वी कंटिन्यू डूइंग थिंग्स जो विकर्म हो गए, इट मीन्स उनका भी हमें कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट सेटल करना होगा.
0: सारा बन गया ना, एक स्टैक जमा हो गया.
1: तो अब वो जो हम ये सुकर्म कर रहे हैं क्या वो सेटल कर पाएगा,
0: राइट,
1: या वो सेटल होंगे कैसे? ये तो अपने ही कर जो इसी जन्म में हमने किए हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: जिनको हमें अब तो रियलिटी ये है कि इतने सालों से हम वो करते आ रहे हैं,
0: right.
1: जो कि विकर्म में ही शामिल हो रहा है, चाहे हमें अभी तक क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन right. आज अगर हमें क्लियर होता है तो वो एक कार्मिक डेप्ट है जो हमें क्लियर करना है, अकाउंट को क्लियर करना होगा. अनदर इज जो हम पिछला लेकर आ रहे हैं,
0: वो सारा स्टैक कच्चे ही है अभी यहाँ पे, यू नो. तो इसलिए जो कहते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट है वो काफी एंड उसका रिजल्ट हमें प्रत्यक्ष दुनिया में इस टाइम दिखाई दे रहा है. जो हम देख रहे हैं आजकल के डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोग उदास रहने लगे हैं. दिस इज एन साइन ऑफ अ वेरी डीप कार्मिक डेप्थ. क्योंकि जिसके ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा होता है वो खुश नहीं रह सकता, उसके ऊपर बहुत भार है तो वो खुश नहीं रह सकता. तो उसका साइन चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है. बच्चों को देखो, बच्चे हैं, दिस इज द यू नो टाइम व्हेन दे शुड बी एंजॉयिंग, लेकिन व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय? क्योंकि आत्मा तो अभी आई है ना. वो बच्चा तो शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है. इट्स जस्ट कैरी फॉरवर्ड अ वेरी डीप अकाउंट राइट नाउ. How will it be able to be happy here? Because it's so heavy already. और इसलिए बच्चों को भी स्ट्रेस. ये ज्यादा पहले नहीं था. जितना समय बीतता जा रहा है और हम उस अकाउंट को सेटल करने की बजाय
1: और उसमें घुसते जा रहे हैं,
0: तो जितना घुसते जा रहे हैं उतना ही कम एज से हमें वो हैवीनेस महसूस होने शुरू हो रही है. और मानसिक रीति से सबसे ज्यादा उदासी, परेशानी, चिंता, ये सबसे ज्यादा घेर लेती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भोगना होती है.
1: बिल्कुल, सोसाइटीज आज दुखी है, परेशान है,
0: भोगना है ना, क्योंकि हम पनिशमेंट जैसे कि भोग रहे हैं. तो ये जो भोगना है ये अभी हम भोग रहे हैं, और ये हम इसी तरह भोगते हैं, दुखी अशांत रह के भोगते हैं.
1: तो ये बात सामने आती है कि इसी जन्म में जो हम विकर्म करते आ रहे हैं, जो हम सोते हुए कर रहे थे, एक बात ये जानना चाहते हैं हम सुषमा शिवानी की, बहुत से दर्शकों के दिमाग में भी ये बात है कि 84 लाख योनिया है, हम जो जो कर्म करते हैं उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा. कभी हम पशु बन जाएंगे, या हम पशु थे पिछले जन्म में और आगे आने वाले जन्म में जो जो हम कर रहे हैं वही तय करेगा कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ क्या हम कर सकते हैं. सो ये भी एक बहुत बड़ा एक भार लेके हम चल रहे हैं,
0: ये डर में भी चलते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि आज दिन तक हम ये सुनते आए थे कि बहुत सारी योनियों में क्रॉस करते हुए अपने सारे पाप को हम उस योनि में भोगते हुए फाइनली हमें
1: इंसान की योनि मिलती है,
0: इंसान की योनि मिलती है. तो फिर वो जो मनुष्य जीवन मिलेगा इतने योनि से गुजरते हुए, मतलब सारे पाप भोगते हुए, तो वो मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए?
1: सुंदर होना चाहिए.
0: बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर आज जो हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ये क्या वो सारे पाप भोगने के बाद जो पुण्य का जीवन मिला है वो ऐसा वाला जीवन है? अगर वो जीवन होता तो वो मनुष्य जीवन कितना वैल्यूएबल होना चाहिए? आज मनुष्य तो अपने जीवन से इतना परेशान है कि वो अपना ही आपघात करने का सोचता है.
1: सुसाइड्स का इतनी ज्यादा, इनफैक्ट देखा जाए तो इतना ज्यादा मनुष्य जीवन सबसे सस्ता जीवन माना जाने लगा.
0: एब्सोल्युटली. तो ये वो जीवन है जो इतनी योनियों में गुजरने के बाद आज ये मिला है. तो यही जो हमने कहा ना कहीं ज्ञान तो है लेकिन उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन. तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा और पशु आत्मा वो भी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में वेरिएशन है. वो बीज अलग है, ये बीज अलग है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल? इंटेलेक्ट. वी आर अ हायर डेवलप्ड, और वी आर सपोज टू बी अ हायर डेवलप्ड इंटेलेक्ट. एंड एनिमल इंटेलेक्ट इज अ लोअर इंटेलेक्ट. अब अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, पहली बात तो हो नहीं सकता क्योंकि बीज क्या करेगा? एक पौधा है, वो बीज निकाल कर कितनी बार भी आप बोएंगे, चीकू का बीज है, वो ही वाला फल निकलेगा. हम कहें हम ये वाला बीज बो रहे हैं अब इसके अंदर से दूसरा फल निकलना चाहिए, नहीं. उसके अंदर जो नॉलेज है, उसके अंदर जो संस्कार है वो उसी के है. तो ये मनुष्य आत्मा है, बीज है, इसके अंदर वही मन बुद्धि संस्कार है. ये अगर दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले किसी पशु का तो इंटेलेक्ट कैसे होगी? वो जाके चेंज तो नहीं हो सकती. या वो आत्मा अगर यहाँ आ जाए तो वो इंटेलेक्ट कैसे होगी? तो दोनों अलग अलग है बीज, इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता है. वो बीज अलग, वो हमेशा उसी योनि में जाएगी. और मनुष्य आत्मा ही, मतलब आत्मा वो है, उसको मनुष्य शरीर ही बार बार मिलेगा, लेकिन कर्मों अनुसार वो जीवन कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, वायुमंडल कैसा होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग जीवन और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में जाएंगे, लेकिन योनि इंटरचेंज हो जाएगी वो नहीं होगा. आज मनुष्य योनि ही सबसे भोगना की योनि है. सबसे ज्यादा दुख शायद मनुष्य योनि को है. पशु योनि को इतने दुख नहीं है, ना इतनी फिजिकल बीमारियां हैं, ना इतनी मेंटल बीमारियां हैं, ना सुसाइड है. तो कहें कि सबसे ज्यादा जो भोगना की योनि है इस टाइम ये हमारी योनि है. तो इतने पाप करने के बाद, अगर हम कह रहे हैं इतने भोगने के बाद ये पुण्य का जीवन मिला, तो ये जीवन फिर कैसा होना
1: लेकिन
0: चाहिए?
1: लेकिन एक बात और कही जाती है, आई जस्ट वॉन्ट दैट क्लैरिफिकेशन, कि अगर श्राप मिल जाए तो आप फिर पशु योनि में चले जाते हैं, ऐसा भी कुछ है? श्राप भी क्या है? क्या है श्राप और क्या?
0: श्राप और वरदान हम खुद ही तो अपने आप को देते हैं. अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये किसी ने आकर ऊपर से श्राप नहीं दिया. जैसे कहते हैं कि हिंसा अगर आप करते हैं किसी की तो आप हिंसक योनि में चले जाएंगे, ये श्राप मिलेगा. हिंसक योनि, लेट्स से अ टाइगर, आप हिंसक योनि में चले गए. अब अगर आप एक शेर बन जाते हैं तो उसको कोई भोगना नहीं होने वाली है कि मैं हिंसा. भोगना क्या है? हमने एक पाप किया, उसकी भोगना मतलब मुझे पश्चाताप होगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. उस पश्चाताप से मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा. लेकिन अगर मैं एक हिंसा की योनि में चले जाऊं, उसके लिए हिंसा करना तो नेचुरल है,
1: सहज है, वो तो उसका जीवन है.
0: इट्स नेचुरल संस्कार ऑफ अ टाइगर. वायलेंस इज अ नेचुरल संस्कार, उसको कोई भोगना नहीं होगी. तो भोगना अगर मुझे भोगनी है अपने ही पाप कर्म की, तो वो मुझे इसी मनुष्य तन में ही भोगना होगा,
1: क्योंकि मैं अपना जो नेचुरल मेरा जो संस्कार है उससे परे जा रहा हूँ.
0: उससे परे हम नहीं जा सकते. तो उसी मनुष्य तन में आकर, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, मेरे साथ क्या क्या होता है, एनर्जी किस तरह की मिलती है, तो उसमें मेरा पाप और पुण्य का खाता सेटल होता है. तो जो मुझे भोगना है अच्छा या बुरा, वो मनुष्य योनि में ही आकर होता है.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे थे जीवन की सिचुएशंस के बारे में। जब देखा हमने कि परिस्थितियां हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में तो ऐसा और दिखता जा रहा है। ग्लोबली अगर हम देखें या पर्सनल लाइफ में भी देखें कि सिचुएशंस आती जाएंगी और मुश्किलें, मुसीबतें, और अभी तक हम ये भी बातें करते आ रहे थे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन रियल सेंस में जब हमने देखना शुरू किया, हमें पता चला कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली एक परिवर्तन, एक चेंज है। और उसको हैंडल करने के लिए या उसको कैसे उससे गुजरना है, उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास, हम दो तरीके अभी तक कर रहे थे। या तो हम उससे भिड़ जाते थे उस सिचुएशन से, या फिर हम अपने आप को गिव इन करके उसके साथ बह जाते थे। लेकिन अगर हम जहां हम खड़े हैं वहीं खड़े रहें और उस सिचुएशन को गुजर जाने थे, दैट इज वेयर यू नो द राइट सेंस हमारे पास आती है। ऐसे में अगर देखें तो पिछली कड़ी में ही हमने बात की थी कि सही सोच हमारी बहुत मदद करती है, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने यही कहा था कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ थॉट हमारी डेस्टिनी तय करता है। आप जैसे हम एक जर्नी हमने की थी आपके साथ,
1: आपको सब जर्नी याद है पूरे?
0: मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक सोच मेरी, एक थॉट मेरा फीलिंग को क्रिएट करता है, और जब बार बार वो फीलिंग आती है, जब मुसीबत ये ना समझकर परिवर्तन समझे, चैलेंज समझे। अब परिवर्तन तो होता ही है, हर पल परिवर्तित हो रही है जिंदगी, हम सब बिलीव करते आ रहे हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन में गुडनेस कैसे देखनी है, उस परिवर्तन को रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा, उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये मैं खुद तय कर सकता हूँ, मैं खुद सक्षम हो सकता हूँ। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बार फिर से हम सिस्टर शिवानी उस बात को लेते हैं कि जो जिंदगी में हो रहा है, आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भी, वो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आधा वक्त भय में गुजर रहा है मेरा, आधा वक्त उससे जूझने में गुजर रहा है, आधा वक्त और एनर्जी, और आधा वक्त उसे एक्सेप्ट करने में ही, आधे से ज्यादा वक्त कि ये मेरे साथ हो गया। चाहे वो डिवोर्स केस की बात की थी, चाहे हमने ये देखा था कि बच्चा मेरा जो है वो, अच्छा इनफैक्ट हमने डेथ की भी बात की थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी सिचुएशन, बच्चा मेरी जिंदगी से कहीं और जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा घट गया है जो मेरे लिए स्वीकार नहीं हो पा रहा। तो इन सब में जो मेरा वक्त जा रहा है, एक थॉट जो है वो उसे चेंज कर सकते हैं।
1: तो वही जो आपने कहा ना, जूझना, जूझना भी रिस्पॉन्स है। परिस्थिति तो आ गई, अब हम ट्राई करेंगे कि अब हम परिस्थिति को एक तरफ रखते हैं, अब हम रिस्पॉन्स पर चलते हैं, क्योंकि यस वी हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी बिग, बट नाउ स्टिल व्हाट डू आई हैव टू डू, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, नाउ लुक, लेट मी लुक एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड द अदर साइड ऑफ द टेबल आई एम स्टैंडिंग। यू नो सिचुएशन वहां है, दिस साइड आई एम स्टैंडिंग, यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, इज दिस इन माई कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पहले अपने फोकस को हम शिफ्ट करें कि परिस्थिति है, मान लिया, अब एक साइड पर उसको रखते, बट एनी सिचुएशन, एनी चैलेंज, फर्स्ट थिंग डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। परिस्थिति आएगी तो रिस्पॉन्स होना ही है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोई भी परिस्थिति आपके बिना रिस्पॉन्स के नहीं आगे जाती है, लेकिन अब रिस्पॉन्स क्या और कैसा, दैट्स इन माई हैंड।
0: और तो उसमें एक मुझे जो दिख रहा है, मुझे समझ में आई एक बात कि जैसे ही परिस्थिति आती है, पहली चीज होती है जो रिस्पॉन्स की बात करती है, पेन। पेन हिट्स अस, और कितनी बार
1: pain
0: लोग बोलते हैं,
1: पेन हिट्स अस नाउ, पेन हिट्स अस, सी सच अ कॉमन सेंटेंस, लॉट ऑफ ऑप्शन, वो दर्द मेरी तरफ आ गया, या दैट पेन हिट मी। नाउ व्हेन आई से पेन हिट्स अस, दैट मींस आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। पेन हिट्स अस मतलब, तो जैसे कि किसी ने मुझे मारा आकर, तो पेन हिट्स अस मींस द पेन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमने अभी देखा कि परिस्थिति बाहर से आएगी, एंड जैसे ही परिस्थिति आएगी, आई हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया। अब रिस्पॉन्स क्रिएट करना मतलब क्या? क्रिएट करना
0: थॉट, क्रिएट
1: थॉट, क्रिएट करना। इमीडिएट परिस्थिति थॉट, परिस्थिति थॉट, दिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. अब परिस्थिति आई कितनी भी बड़ी, थॉट किसने क्रिएट किया?
0: एक्चुअली मुझे तो पता नहीं चलता ना कि मैंने क्रिएट किया.
1: बट नाउ द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि फोकस, यस सिचुएशन वेरी बिग, नाउ रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स मतलब क्या कि फर्स्ट चीज मैंने क्या क्रिएट की, जैसे आपने कहा एक थॉट क्रिएट की, थॉट क्रिएट की, फीलिंग्स क्रिएट हुई, एक्शन में आ गया. अब एक्शन किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. दर्द क्रिएट किया किसने? क्रिएट किया
0: मैंने, क्रिएट किया,
1: क्योंकि दर्द इज द रिस्पॉन्स ना, और फिर वो एक्शन में आया. अब जैसे ही एक्शन में आएगा उसका रिजल्ट फिर सिचुएशन के रूप में फिर मेरे सामने आएगा. लेकिन फिर जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी फिर क्या क्रिएट किया? अगेन आई क्रिएटेड अ थॉट. नाउ बिकॉज इट्स लाइक टू पीपल आर हियर, सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा सारा टाइम इसको देखने में जा रहा है सिचुएशन को, तो मेरा ध्यान इस तरफ तो जा ही नहीं रहा कि आपका रोल क्या है इसमें प्ले करने में. तो इसलिए हमने समझा कि रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटेड है,
0: नेचुरल रिएक्शन है. नेचुरल रिएक्शन, सो मेनी टाइम्स वी से दैट कि इट्स अ नेचुरल रिएक्शन.
1: नेचुरल रिएक्शन क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट किया, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट किया. यू नो, एक जैसे हमारे पास ईमेल्स आते हैं, एक है कि उस ईमेल को पढ़ के उसके ऊपर बैठकर सोचकर एक आंसर हम लिखेंगे, और एक है कि एक ऑटोमेटेड रिस्पांस क्रिएट कर दिया है,
0: मुझे आता है.
1: यस, सो एवरी ईमेल व्हाटएवर वी सेंड टुडे आउट इनटू द वर्ल्ड, आपको इमीडिएट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है ना, आपकी वहां पहुंची नहीं होगी, अभी आपने सेंड बटन दबाया होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहां से जवाब आया. सोचा समझा हुआ जवाब नहीं था, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स था. तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मतलब जो एक मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत पहले से फिक्स करके रखी हुई है सिस्टम के अंदर, उसने क्वेश्चन को समझा भी नहीं, उसने परिस्थिति को देखा भी नहीं, लेकिन उसके पास उसका रिस्पॉन्स फिक्स्ड है, एंड दैट इज दैट रिस्पॉन्स, वेदर इट्स ऑफ पेन और फियर और व्हाटएवर, बट इट्स एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट टेक आउट टाइम internally to look at whether I have a choice to create a response, whether I need to sit and think what has to be my response. I just said natural response. Gussa, natural response. Dard, natural response. Stress, natural response. तो उसको फिर हम reaction कहते हैं. जैसे दो words है हम बार बार use कर रहे हैं, reaction, response. तो reaction है
0: ऑटोमेटेड. हम बार बार ये भी देखते हैं शिवानी कि दूसरा कोई होता तो वो क्या करता. हम ये भी कहते हैं ऐसे ही तो रिस्पॉन्ड करता, ऐसे ही तो उसका रिएक्शन.
1: क्योंकि ज्यादातर फिर हम किसको देख रहे हैं? मेजोरिटी अराउंड अस आर लिविंग विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, और क्योंकि फिर मेरे आसपास मेजोरिटी लोग ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चल रहे हैं, तो फिर मैंने एक और बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया कि दिस इज द राइट वे टू लिव, कि अगर एक कुछ गलत करेगा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है कि गुस्सा तो आएगा ही. मैंने अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया बीच में कि डू आई हैव अ चॉइस, कितना गुस्सा करना है, कब तक करना है, किस पर करना है, कितने समय तक उसको पकड़ कर रखना है, ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है.
0: नहीं, इनफैक्ट यस, बट मेरे ऊपर है, आई कैन मेक इट आउट. बट एक्चुअली अगर मैं देखूं तो अभी तक जिंदगी में यही हो रहा था कि इट जस्ट टेक्स ओवर,
1: टेक्स ओवर, बिकॉज आपने इस पर अटेंशन ही नहीं दिया ना. आप यहाँ जिसकी एनर्जी, जहां अटेंशन जाएगी एनर्जी फ्लोज. वी हैव वर्कड विद दिस लॉ थ्रू आउट, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तो जहां आप ध्यान देंगे, जिस साइड पर आप अटेंशन डालेंगे, आपकी सारी शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके पास, वो उस साइड पर जाएगी. अब ये दो साइड ऑफ द टेबल है, सिचुएशन, माई स्टेट ऑफ माइंड विच इज रिस्पॉन्स. इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है
0: पूरा. हाँ,
1: इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कह दिया कि ये तो ऑटोमेटिक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि हमने सोचा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो गुस्सा तो आना ही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में मुझे लगा कि वो है, वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है. तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, मैंने अपना सारा ध्यान किस तरफ लगाना शुरू कर दिया? उस तरफ कि मैं इस सिचुएशन को किसी तरह चेंज कर दूं. और सिचुएशन को चेंज करना मतलब सामने वाले लोगों को चेंज करना,
0: और वो टेंशन में ही मैं सब कुछ कर. ओह यस,
1: सो नाउ राजयोगा मीन्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स शिफ्ट फोकस दिस साइड. Situation, yes, not in my control. हर सिचुएशन में, भले उस टाइम नहीं भी याद रहे लेकिन बाद में भी बैठकर, क्योंकि जो बाद में बैठकर आप इंट्रोस्पेक्ट करके स्टडी करोगे वो आपको नेक्स्ट सिचुएशन में हेल्प करेंगे। कई बार ठीक है ये सिचुएशन आई, मैंने नहीं ठीक से हैंडल किया, आई वेंट थ्रू पेन, लेकिन इफ आई सिट बैक एंड आई थिंक ओवर इट, आई विल बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट सिचुएशन एंड दैट इज वॉट इज इन माई कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी फैल गई, लेट्स से अभी ये जो स्वाइन फ्लू फैल गया, फैल गया, यू ट्राई टू स्टॉप दैट, यू कैन स्टॉप दैट, तो वट आर बी ट्राइंग टू डू, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो आप लोगों को देखेंगे वो लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लोग हर जगह टेम्परेचर, वट एवर मेजर्स दे आर टेकिंग, वो फ्लू को तो नहीं रोक सकते ना, वो किसको बचा सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं। सो दिस इज इंटेलिजेंस ना। अगर आप सोचे आप वायरस को ढूंढ के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट हैपनिंग। तो एवरी कंट्री, एवरी नेशन, व्हाट हैव दे डन, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है जिससे हम अपने को बचा सकें ताकि ये एपिडेमिक फैले नहीं। अब जिस समय एंगर और स्ट्रेस और ये डिप्रेशन हिट कर रहा था, हमने सारा ध्यान किस पर दिया,
0: सिचुएशन,
1: वायरस, वो सारा वायरस का, मैं उसको वायरस को ही रोक दूं तो मुझे दर्द नहीं होगा। अगर हमने ध्यान अपने ऊपर उसी समय से देना शुरू कर दिया तो बीमारी कैच ही नहीं होगी ना, बीमारी भी पकड़ ली और उसके बाद भी बीमारी को ना ध्यान देते हुए परिस्थिति को ही देते गए, तो परिस्थिति तो क्योंकि मेरे कंट्रोल में थी नहीं तो वो आई नहीं, लेकिन बीमारी मेरी दिन ब दिन
0: बढ़ती
1: गई। वी स्टार्टेड 20 years बैक विद अ वर्ड कॉल्ड टेंशन, चिंता, स्ट्रेस वर्ड नहीं था 20 साल पहले। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन स्कूल देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे लिए सिर्फ साइंस में आता था कि मेटल का स्ट्रेस कितना होता है, पर्सनल का स्ट्रेस ऐसा कोई शब्द नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन द वोकैबुलरी। इस 8-10 साल के अंदर स्कूल के बच्चे बच्चे को ये शब्द मालूम है स्ट्रेस, आज स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन मालूम है, एंड नॉट जस्ट एज अ वर्ड, एज एन एक्सपीरियंस, दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। क्यों? क्योंकि जब वो बीमारी स्ट्रेस के लेवल पर थी, रोका नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिलेबस को क्या करे, कॉम्पिटिशन को क्या करे, बाहर बैग्स को हल्का कर दो, विच इज ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बट बीमारी कहाँ है, फेस किसको करना है उस सिलेबस को, उसकी ताकत को बढ़ाए, नो वन वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग सोच रहे थे वो भी तो खुद भी तो
0: depleted.
1: अपने ही दर्द में है। तो वो वर्ड स्ट्रेस से बढ़कर आज डिप्रेशन पर आ गया है। टुडे डिप्रेशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ वेरी, यू नो, जैसे कि एक आम बुखार की तरह है, किसी को भी हो रहा है।
0: शिवानी, बहुत लोग ये बोलने वाले हैं, मतलब मेरे, मैं भी अगर सोचूं कि जब सिचुएशन आ रही है तो उसको ग्रैपल करने का कोशिश करूं, उसको सेव करने की कोशिश करूं, या अपने ऊपर काम, मतलब अपने ऊपर देखने लग जाऊं, यू नो, दिस इज लाइक, उस वक्त मेरा पूरा फोकस इस कि मेरे को सिचुएशन को उस पर कैसे सेव करना है।
1: सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं, दैट्स द फर्स्ट बॉटम लाइन। यस, हमें करना है कि व्हाट विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मुझे दोनों में से फर्स्ट चूज करना पड़ेगा, विच वन इन माई कंट्रोल, विच वन आउट ऑफ माई कंट्रोल। अभी क्या हो रहा है, दो साइड्स है, सिचुएशन रिस्पॉन्स, हो क्या रहा है, चैलेंजेस जैसे आपने कहा दिन ब दिन बहुत फास्ट स्पीड से, चेंज की भी जो गति है ना, चेंज की भी एक स्पीड होती है, चेंज तो यस है, लेकिन चेंज जो अब हो रहा है इट इज एट अ वेरी फास्ट रेट। अब ये भी तो हो सकता है इससे आगे आने वाली परिस्थितियां और कुछ लेकर आएंगे। हमें लग, इट्स नॉट टू गेट स्केयर्ड, अगेन दिस इज नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी स्पीड पर जा सकता है, मेरे कंट्रोल में ये, लेकिन अब क्या हुआ, ये फास्ट बढ़ता गया, ये फास्ट घटता गया, तो जो गैप है उसके बीच में, चेंज और रिस्पॉन्स के बीच में, वो गैप बहुत बढ़ता गया। और क्योंकि ये गैप बढ़ता गया, क्या फीलिंग आई, मेरे अंदर शक्ति नहीं है टू फेस दिस,
0: गिव अप, देन यू नो लाइक, यस,
1: अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, यू नो, शक्तिहीन, कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे से ये दैट्स व्हेन वी हैव दोस काइंड ऑफ थॉट्स के मेरे से नहीं फेस होगा, मेरे जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं, इतनी एकदम नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कि मेरे जीवन का कोई फिर लक्ष्य नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, क्यों, क्योंकि वो गैप वॉज टू मच टू फेस। उसकी वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जब मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, तो जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट, एंड देन कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज आई कैन डू इट, आई स्टार्ट ब्लेमिंग यू, कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए आप आप आप आप और पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है।
0: भगवान तो आते
1: हाँ, वो तो जब व्हेन आई डोंट गेट एनीवन टू ब्लेम, तो आई से ये उसकी वजह से हो रहा है, ये भगवान कर रहा है। तो ये तीन बहुत डीप चीजें सेट हो जाती हैं, फीलिंग ऑफ पावरलेस, शक्तिहीन, दूसरा नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, एंड तीसरा ब्लेम। क्योंकि जैसे ही हम ब्लेम मोड में चले जाते हैं, औरों की तरफ उंगली उठाना शुरू करते हैं, तो फिर मेरा अपने पर काम करने वाला प्रोसेस तो बंद हो जाता है, आई स्टॉप इमिजिएटली। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, जितनी भी परिस्थितियां हमने देखी, जो आज हम जिसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं है लेकिन जो एक बहुत कॉमन हो गया है, जो हमारी थॉट क्रिएट होती है, फर्स्ट थॉट उस सिचुएशन को लेकर, वो ज्यादातर आज नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज वी सॉ कि आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, रिस्पॉन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट। एक थॉट क्रिएट करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स, और कुछ भी नहीं करना, और वो थॉट फिर एक्शन में आ जाएगी और वो एक्शन फिर आपका अनुभव बन जाएगा। लेकिन वो थॉट की क्वालिटी वो बहुत नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे कि अपने लिए हम किस तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो सकता है, ये दूसरे लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए फिर उन्हें मेरा काम भी पसंद नहीं आता है, मैं ही सिर्फ क्यों बदलूं,
0: अब क्या होगा,
1: अब क्या होगा मेरे साथ,
0: यू नो, ओह माय गॉड, इट्स द एंड, यू नो, ऐसे ऐसे जो थॉट्स, एक्चुअली आई कैन मेक इट आउट नाउ, द मोमेंट देयर इज अ सिचुएशन, सपोज हमें कुछ भी पता चलता है, पहला जो वो है कि इट्स लाइक व्हाट टू डू नाउ,
1: ट्रू, सो दैट्स दैट नेगेटिव थॉट। एक है सेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स फॉर माई सेल्फ, अपने प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये लोग मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, मैं तो हूं ही ऐसे, मेरे से सब, मैं जो करना शुरू करती हूँ मेरे से गलत हो जाता है। सो अपने लिए एक नेगेटिव थॉट, अपने से स्टार्ट हुआ, उसके बाद औरों के लिए नेगेटिव थॉट, ये कोई काम करने का तरीका है, ऐसे थोड़ी करना होता है, ये इनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था मेरे साथ, यू नो, अगेन I'm going to look at everyone around.
0: In fact, यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात होती है कि मैं जब भी कोई काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे परिवार का साथ नहीं मिलता। There is nobody understands me.
1: Nobody understands
0: मैं कितना काम करना चाहती हूँ, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिलता। परिवार का ही सपोर्ट नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा?
1: Now see the whole series of thoughts. किस क्वालिटी के हैं ये? अब अगर थॉट, क्योंकि बिकॉज वो बीज है आपका, बाकी आगे जो भी आपके साइकिल में होने वाला है, लेकिन बीज इस क्वालिटी का बो देंगे, फिर औरों के प्रति भी, विश्व के प्रति, टुडे द वर्ल्ड इज इन अ मेस, दैट इज वन कॉमन थॉट, माय कंट्री इट सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इस देश का कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा, और वो जो दुनिया में हो रहा है वही तो मुझे मिल रहा है,
1: वो तो फिर साइकिल आ गया ना, क्योंकि मेरी तो गलती वैसे भी नहीं थी, इट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। अच्छा, दुनिया में इतना सब हो रहा है, एक मैंने अगर चेंज कर भी लिया अपने आप को, उससे क्या फायदा होगा? सो ये इस क्वालिटी की जब थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है, एंड इट इज सच अ विशियस साइकिल, कि ये एक बार थिंकिंग का एक जो मैकेनिज्म बैठ के अंदर, तो एक से अगली थॉट फिर नेगेटिव ही होनी है, उसके बाद नेगेटिव ही होनी है, एंड आफ्टर सम टाइम नाउ वी आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल। पॉजिटिव थिंकिंग इतना कॉमन शब्द हो गया है आज, एवरीवन इज सेइंग पॉजिटिव थिंकिंग। किताबें देखो तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर है आज मार्केट में? पॉजिटिव थिंकिंग। दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ वेरी डीप डिजायर कि मुझे अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को बदलना है, लेकिन किताब पढ़ते समय या सपोज ये सेशन देख रहे हैं, ये देखते समय ठीक लगेगा, लेकिन वो बदलेगा कौन? आई विल हैव टू कॉन्शियसली सिट डाउन, एंड व्हेन आई क्रिएट द नेगेटिव थॉट, इवन इफ उस समय नहीं हुआ मेरे से, चलो वो स्टेज को क्रॉस करे, बाद में बैठकर कौन करेगा? थिंकिंग अपने आप तो नहीं चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, इट हैज गॉट इन टू अ वेरी डीप साइकिल, क्योंकि थॉट नेगेटिव होगी तो फीलिंग भी
0: नेगेटिव होगी कंप्लीट।
1: लेट्स से अ सिंपल चीज जो आपने बोला कि मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, जहां मुझे काम करना है आई डोंट लाइक माय बॉस, वन थॉट आई डोंट लाइक माय बॉस, अब या तो जॉब चेंज करो, वो तो आज करना

0: की हालत में नहीं है, अब आप उसी जॉब में हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन थॉट कौन सी शुरू हो गई है साइकिल में, आई डोंट लाइक माई बॉस, आई कांट स्टैंड माई बॉस, यू नो द वे पीपल विल से आई जस्ट कांट स्टैंड दैट पर्सन, तो आई डोंट लाइक माई बॉस, फीलिंग कैसी वाली क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली,
1: रिपेल, रिपेल, आई कैन नॉट बी,
0: क्योंकि मेरी थॉट ही आई कांट स्टैंड यू, ये सेंटेंस इतना कॉमन है, आई कांट स्टैंड यू, तो फीलिंग कौन सी आएगी, एंगर,
1: हेट्रेड,
0: रिजेंटमेंट, यही आएगा. तो जो मेरा आपके साथ व्यवहार होगा जब वो ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स पर बेस्ड होगा, तो वो व्यवहार कैसा होगा, नॉट कोऑपरेटिव, देयर विल ऑलवेज बी दैट, यू नो, टेंशन.
1: एंड इनफैक्ट वो जेन्युइन भी मुझे कुछ कहेंगे करने को, माय आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, आई फील कि वो ही इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन.
0: नाउ द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, व्हाट विल हैपन टू यू, आप काम तो उसी ऑफिस में कर रहे हैं ना, आपके साथ आपका सीनियर तो वही है, लेकिन क्योंकि ये थॉट और ये फीलिंग के साथ काम चल रहा है, एक थॉट सिर्फ, आई डोंट लाइक माय बॉस, यू सी हाउ इट विल कम आउट इनटू द रिजल्ट, और आपके करियर पर इसका इम्पैक्ट आना ही आना है, क्योंकि यू आर वर्किंग देयर विद दिस थॉट, आप वहां काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बीज आप रोज बो रहे हैं, हर घंटे हर पल जो आप बीज बो रहे हैं, जो आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, I don't like this person. I don't like this person. I don't like this person. ये जो energy,
1: और मजबूरी का जो पूरा एहसास है, बिल्कुल.
0: और इसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे नहीं आएगा, आएगा. वो किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया. But I don't see that it started from my thought. I think all this is happening
1: because you are bad. Because I'm not able to like you. Yes. But then there are people who say, I am being genuine. You know. To myself, at least मैं अपने आप से सच तो बोल रहा हूँ.
0: भले वो ठीक है, लेकिन फिर अगर आपका genuine negative होने वाला है, you see, क्योंकि हर एक में plus and minus, understandable, वो तो अभी हमें समझ में आया कि everyone will have their share of weaknesses and strengths, and so do I, just share of my weaknesses and strengths. But if my situation demands कि मुझे उस व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र में कार्य करना है, next is what is the choice, the thought. I can't change my boss. Again, कौन सी चीजें कंट्रोल में हैं, कौन सी चीजें कंट्रोल में नहीं हैं? Job, I can't change. Boss, I can't change. Who can I only change?
1: Myself.
0: Only if I want to cross this whole thing without pain. दर्द के साथ जीना है? दर्द में जीना है?
1: Compromise, मजबूरी, ये सब कुछ
0: suffocation अंदर, and फिर सिर्फ वो अंदर की बात नहीं रहेगी. We saw that the result will come out on the performance. फिर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो परफॉर्मेंस पे आपके हिट करेगा और वो रिजल्ट आपको वापस आएगा, बी रेडी टू टेल योरसेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस वाज ऑल माय क्रिएशन. लेकिन वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेने क्योंकि वो डाल दिया आपके ऊपर. तो अगर हम ये देखेंगे ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मेरे कंट्रोल में है, माई थॉट. Is it possible that I work on myself, look at my negative thoughts and try to convert? देखो हम negative thought को positive word में convert करते हैं. आप सारा दिन में देखो हम ये बहुत काम करते हैं. अंदर भले मैं आपके बारे में अच्छा नहीं भी सोच रही हूँ, ठीक है, पर भी मैं आपसे बात तो बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ. तो हमने क्या किया, convert किया ना, क्योंकि वो नेगेटिव आपको नहीं सुनाई देना चाहिए तो उसको अंदर ही रखा. लेकिन आपसे बात कैसे की,
1: तो अपने आप से तो मैं सच्ची रही ना, ये मैं कहती हूँ.
0: यस, लेकिन अगर कन्वर्ट करना ही है जेन्युइनली, तो कन्वर्ट वर्ड लेवल पर करने के बजाय क्यों ना थॉट लेवल पर कर दिया जाए, क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट होकर आप तक पहुंचने वाली है, इट्स नॉट ऑफ द वर्ड्स. कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, इधर ही काम करना पड़ेगा. अगेन दैट्स पेन. I have a choice, and the choice is start seeing the other side of the person. Start changing myself. आप उनको नहीं change कर सकते.
1: That's what I'm saying ना, कि मुझे उन्हें like करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मुझे उनकी positivity देखनी पड़ेगी.
0: लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने दर्द से निकलना पड़ता है. जब मैं दर्द में हूँ, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे? आप क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि मैंने ये समझा कि मेरे दर्द का कारण आप हैं, तो फिर आप कैसे अच्छे लग सकते हैं मेरे को उसके बाद? जब तक मेरा वो दर्द हील नहीं होता ना, तो आप मुझे अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि यू आर द वन हु कॉज्ड मी पेन. यू नो, ये जो मैं जिस चीज से आज गुजर रही हूँ ना, सारी इसका सारा
1: आप हैं जिम्मेदार.
0: तो देन हाउ कैन आई लाइक यू? व्हेन व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड वाज द कॉज इज मी. आप वहां हैं, आप अभी भी उस कुर्सी पर हैं, आप यहाँ नहीं हैं. और दर्द जो सारा क्रिएट हो रहा था वो

0: Stop, ask yourself, who's creating the pain? I. Kab tak?
1: I can stop it now.
0: Whenever. आप जब रोकना चाहे, आपको एक साल बाद दर्द खत्म करना, आपको छह महीने बाद खत्म करना.
1: No, I want to do it now.
0: Finish it then,
1: yes,
0: right
1: finish.
0: Now. That's what it is. जब फोकस यहाँ आएगा तब तो फिनिश होगा ना. That's why we always rubbing this in focus self, self, self. क्योंकि सिर्फ वही है जहाँ बिंदी लगा सकते हो. आपको नहीं बिंदी लगा सकती मैं. अगर आपने मेरे से रूडली बात करनी है तो करनी है, मैं बिंदी नहीं लगा सकती आपको. बिंदी जहाँ लग सकती है.
1: Very true, actually. It's so clear now. In fact, हमारे पास वक्त नहीं रहा है, लेकिन अब ये बहुत बिंदी लगानी कैसे है. How to finish, actually, you know, what to really do. पर पहली बात तो यही समझने की थी कि ये जो सब कुछ है, जहां तक सिचुएशन है वो वहां है, लेकिन जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा क्रिएट किया हुआ है. These are the two parameters which we need to work on. Thank you so much. Shanti. और इस पर हम आगे आने वाली कड़ियों में जरूर बात करते रहेंगे. अब आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, बार बार यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस प्रोग्राम में कह रहे होते हैं वो सिर्फ हम बात कर लें अच्छा लगता है. बिल्कुल जैसा सुशी शिवानी ने कहा, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन अगर हम रियल में अपनी लाइफ में देखें, हम सबके सामने सिचुएशंस आती हैं, हम सबके सामने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा अनुभव क्या है, मैं कितना दर्द में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ, कितना मैं उसके कारण अपने आप को बंधा हुआ या जो भी वो इमोशंस हैं वो मैं फील करता हूँ, वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ. इट मींस सिचुएशन और फीलिंग्स एक्चुअली अलग अलग हो गई.
0: है ही अलग.
1: आपके पास कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो इस कड़ी से जुड़ी हुई है या पूरा जो ज्ञान आपके साथ है इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारी कोशिश है ये प्रोग्राम आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जो हमारा सफर है उसमें हर कदम पर आपके साथ हो. तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-999-744-555, 0999-999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं खुद की. वैसे तो हर बार हमारा प्रयत्न रहता है, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि फोकस इज ऑन सेल्फ, खुद पर. हम ज्यादा सेल्फिश लोग नहीं हो सकते कि बार बार हम ये कहते हैं कि फोकस हम पर होना जरूरी है, लेकिन बाहरी के बावजूद जो अंदर मैं हूं, जो बहुत कुछ काम करता है, जो सोचता है, जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उस पर फोकस करना जरूरी है. आगे हम बहुत सी और बातें करेंगे सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. हम शांति.

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। खुद को पहचान कर जब परमात्मा से रिश्ता जोड़ा तो एक नए अंदाज, एक नए परिपेक्ष में अपने आसपास हम देख पाए, और जब हमने देखना शुरू किया तब परेशानियां भी नजर आने लगी, और अवेयरनेस के साथ हमने जाना कि कई ऐसी बातें, कई ऐसी हैबिट्स, कई ऐसी आदतें हमारी मजबूरी बनती जाती हैं, और हम खुद ही जान नहीं पाते कि क्या वजह होती है कि वो आदत मजबूरी के रूप में हमारे सामने आ जाए, और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए और आगे बढ़े तो समाज के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह की तरह सामने आती है। अध्यात्म में या फिर अपनी थॉट पावर से, अपने संकल्पों से, क्या हम इन आदतों को, इन व्यसनों को, इन एडिक्शंस को दूर कर सकते हैं? कौन सा ऐसा वक्त होता है जब मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज फिर इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हैं, और हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, हम अब कई बातें कर चुके हैं कि आदतें जो पड़ जाती हैं, जो हमारी मजबूरी बन जाती हैं, और कई बार जो ये व्यसन है ये फिर आगे चलकर और मुश्किलें क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हम उस मूल बात पर जाएं कि वजह क्या बनती है, क्या ऐसा होता है कि हम जो इन आदतों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्या कारण रहते हैं?
1: सबसे मूल या तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो तनाव है, कन्फ्यूजन है कि आज लोग मुंझे हुए हैं, तनाव के कारण फिर सोचते हैं कि भी कहीं रास्ता मिल जाए, और व्यसन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट है कि थोड़ी सी शराब ले लो, हाँ सिगरेट पी लो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मूल रूप से इसी के कारण तनाव को कम करने के लिए लोग तुरंत व्यसन लेने लगते हैं।
0: उस वक्त तो कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं जैसे शिवानी, स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट हो जाता है, कहाँ हमारी क्या चीज वीक होने लगती है?
2: हम कुछ इस तरह के मेजर को लेते हैं ताकि कुछ समय के लिए एटलीस्ट हमारा माइंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए और हम एक अलग ही दुनिया अपने लिए क्रिएट करके उसमें जीने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर वापस आना होगा, और फिर वो रियलिटी को फेस करना शायद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन तो जितनी चैलेंजिंग थी अभी भी उतनी चैलेंजिंग है, लेकिन अंदर जो मेरे पास पावर थी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए वो और भी कम हो चुकी है। अभी मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही टूट गया, तो अब हम उस सिचुएशन को कैसे फेस कर पाएंगे, इट बिकम्स ऑल द मोर चैलेंजिंग नाउ।
1: यहीं पर जो बात है ना कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया, आंतरिक परिस्थितियां है परंतु उसको नियंत्रण करने के लिए आपको आंतरिक ही कोई चीज अपनानी चाहिए कि जिससे सदा के लिए उस परिस्थिति से आप मुक्त होंगे, परंतु आप बाह्य चीजों को ढूंढते हैं कि जो एक सही सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
0: डॉक्टर साहब, उस सिचुएशन पे आते हैं कि सोशल प्रेशर में या पीयर प्रेशर में आके हमने स्मोक शुरू कर दिया, स्मोक किया, एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग हुई कि बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं, या लोगों ने भी बहुत कहा, शुरू किया था एक पीयर प्रेशर में, एक लोगों के सामने एक अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे देखा यह है कि जैसे ही कोई सिचुएशन है, जैसा कि सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि हम रियलिटी से भागने लगते हैं, तो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सिगरेट चाहिए, पहले मैं एक सिगरेट पी लूं फिर बात करते हैं, पहले मैं एक सिगरेट पी लूं फिर मैं सोच समझ के करूंगा, तो यहां शुरुआत जो थी वो तो सोशल प्रेशर से हुई, तो फिर ये क्यों अल्टीमेटली हम इसको इससे क्यों लिंक कर देते हैं कि जहां पे भी सिचुएशन आएगी, तनाव आएगा, मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी?
1: क्योंकि वही उससे वह बात याद आती है कि पिछली बार जब मैंने पिया था तब थोड़ा सा मैं उसे फेस कर पाया था, मेरे में हिम्मत आ गई थी या तो तनाव कम हुआ था, तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भाषा में कहे कि कंडीशनिंग हो जाती है
0: या वो एक इंप्रेशन बना हुआ है।
1: हाँ, इंप्रेशन बना हुआ है, वो भी ठीक है। हाँ, और वह सोचता है कि ये मेरी कोपिंग स्किल्स है, जो कुछ भी हम करते हैं ना, हमने अलग अलग हमारी कोपिंग स्किल्स को अपनाया है। दूसरा एक मनोविज्ञान का यह शब्द है जिसको कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, कि जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे मैनेज नहीं कर पाते, तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते, ईगो को डिफेंस करने की मैकेनिज्म हो जाती है। तो व्यसन लेना भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आगे चल के होता है, सिगरेट पीना या तो व्यसन लेना वह ऐसी मैकेनिज्म हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेजर जो रीजन है वो तनाव से मुक्ति है, ये वो व्यसन की हम बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाह्य है और हम उसे नेगेटिव माना जाता है, सोशली हम जानते हुए भी, मेंटली अगर हम जानते भी हैं कि ये गलत है, हम इसको ले लेते हैं और एक हिस्सा बना लेते हैं। हमने उन आदतों की भी बात की थी जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाते कि ये हमारी मजबूरी बनते जा रहे हैं, उनके क्या कारण होते हैं?
1: एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वह है कि भी हम बड़ों से सीखते हैं। घर में अगर बड़े भी ले रहे हैं तो हम भी उनसे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। और एक बहुत जो बड़ी बात है वह हमें लगता है कि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। जैसे कहीं आज है सिगरेट्स पीते हैं, स्पेशली मॉडल्स में मैंने देखा है, ये वह समझते हैं कि इससे हमारा वेट कंट्रोल में रहता है।
0: पर एक्चुअली ये मैं इन्हीं बातों पे भी आना चाहती हूँ, आध्यात्मिक के लिए भी जानेंगे, लेकिन ये कि होता क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी टेंशन रिलीव हो रही है, मेरा वेट कंट्रोल हो रहा है, क्या एग्जैक्टली ये सब कुछ होता है, क्या रियल में ये हो रहा होता है हमारे साथ जब हम इन सब व्यसनों में शामिल होते हैं?
1: काफी हद तक तो साइकोलॉजिकल है, प्रैक्टिकल ऐसी कोई बात नहीं। कुछ चीजों में होता भी है, जैसे कि जो साइकेट्रिक दवाइयां हैं उनकी भी आदत हो सकती है। तो क्योंकि शुरू में व्यक्ति अपने आप भी साइकेट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, फिर भी वह लेने लगता है, तो क्योंकि उसे नींद आने लगती है, समझो नींद की गोलियां है, तो उसे नींद आने लगी तो वह सोचता है कि ये गोली मैं लेता मुझे नींद आती है। कई ऐसी भी दवाइयां हैं कि जो आपकी एंग्जाइटी को कम करती है, जो घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, तो उसे कम करने वाली कुछ दवाइयां हैं। जब आप लेते हैं तो कुछ समय तो अच्छा लगता है, परंतु जब लेते रहते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। जब एक दिन भी आपने नहीं ली और तब जो समस्या होती है, तब जागते हैं कि अरे एक डोज मेरा छूट गया, इतनी बड़ी समस्या हुई, तो शायद मैं व्यसन ही बन गया।
0: डेफिनेटली अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा लगने लगता है, क्या हो रहा होता है हमारे अंदर, कहाँ वो संकल्पों का और विलपार का और संस्कारों का कौन सा ऐसा तालमेल बैठ रहा होता है कि हम उसे अच्छा फील करने लगते हैं?
2: क्योंकि थॉट्स का जो सोर्स है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम, और ये तीनों चीजें अभी हमारे ऊपर हावी हो रही है। जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि एक दो बार चॉकलेट खाई थी पहले और तब ऐसा लगा कि अच्छा फील हो रहा है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको अगली बार फिर वो थॉट क्रिएट करेगा। इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने फ्रेंड्स से या पीयर प्रेशर से मिलती है, और बिलीफ सिस्टम कि एक बार दो बार वो किया तो वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बैठना शुरू कर देता है कि विदाउट स्मोकिंग मेरा एनर्जी लेवल वो आएगा ही नहीं, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ जैसे स्टेज आर्टिस्ट या परफॉर्म जिन्होंने करना है वो उसके बिना आ नहीं पाते हैं, वो करते ही नहीं है, उल्टा उनको बस बैक स्टेज वो करके और फिर तुरंत से स्टेज पर आना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम बन गया होगा या वो लो फील करना शुरू भी कर देते हैं तो वो एक बिलीफ सिस्टम साइकोलॉजिकल जैसे का कि वो बन गया कि इसके बिना तो हम वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे ही नहीं पाएंगे, तो वो थॉट्स में हमारे आ जाता है और वो हमारी डेस्टिनी फॉर बनता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिलीफ सिस्टम को एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ ही तो कट करना पड़ेगा कि दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल अब्यूज जो मैं यूज कर रहा हूँ एंड ये मेरे एनर्जी लेवल को टेम्पररी तो शायद एक किक दे रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे कितना डी एनर्जाइज कर रही है। तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा शुरू में कि नए बिलीफ सिस्टम को ले तो नया थॉट क्रिएट होगा, लेकिन अगर अपने लिए you want to do the best for yourself, again yatra jo hai hamari, so you will be able to change it. But kahin na kahin jo most powerful belief system is pe work kar raha hai, happiness is outside. To hum in sabhi cheezon ko isiliye kar rahe hain kyunki kahin na kahin hame khushi chahiye, khushi ko hi to sare dhoond rahe hain aur andar kahin pata nahi chal raha ki kaise usko create karna hai, to sambandhon mein dhoonda wahan bhi nahi mili, to fir in external cheezon ki dependency ho gayi ki kam se kam ye to mere control mein hai na,
0: ye meri marzi hai, jabki hame ye nahi pata ki hum kitne inke control mein
2: hain. Absolutely, to wo hamare control mein nahi hai, hum uske slave ban chuke hain, ek choti si you know tukde ka hum gulam ban chuke hain, to ye happiness kahan se create hogi?
1: ये छोटी सी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भले वो शॉर्ट टर्म मुझे फायदा दे रही है, जो मेरी आवश्यकता है उसको पूरी कर रही है, परंतु लॉन्ग टर्म इससे बहुत बड़े नुकसान, समझो 1% है वो 99% नहीं, 99% मुझे हानियां है, बस 1% दोनों को अगर हम बैलेंस करें, वो बैलेंस शीट निकाले तो पक्का हो जाएगा कि भी 1% बेनिफिट नहीं हो कोई बात नहीं, मैं और कोई रास्ता ढूंढूंगा।
0: डॉक्टर गिरीश पटेल, हम कारणों की बात कर रहे हैं कि आपने कहा तनाव जो है एक मेजर कारण हो जाता है और उसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे कि श्री शिवानी ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया कि मुझे सोल्यूशन बाहर मिलेगा, तो हमने इन स्टिमुलेंस का इस्तेमाल किया. एक और देखा गया है कि जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जब आप फेलियर हो जाता है, या रिश्तों में भी देखें या किसी में, तब भी आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ मुड़ते हैं हम. वो भी क्या, वो कारण क्या बनता?
1: वो इम्पोर्टेंट कारण है. उससे पहले मैं एक बात, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, वह बात अधूरी रह गई. मैं सोचता हूँ वह क्लैरिफाई करे कि सिगरेट पीने से ये सोचते हैं कि भी वेट कंट्रोल में आए, परंतु वो सचमुच वेट कंट्रोल नहीं होता है. वह भी भले शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो जो चर्बी का डिपोजिशन है वो रुकता है, बॉडी के अंदर फैट डिपोजिट नहीं हो पाती है, इसके कारण आपका वेट बढ़ता नहीं, या तो 1-2 किलो कम भी होता होगा. परंतु उसकी जो और हानियां हैं, जो मॉडल्स की हमने बात की कि बेस हेल्थ की बात को लेके ले रहे, परंतु स्किन पर बहुत बुरा प्रभाव है. चेहरे पर इतना बुरा प्रभाव होगा कि वह जो आपको बेनिफिट हुआ वो खत्म हो जाए, पर साथ साथ में आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स होने लगते हैं. तो इन सभी बातों का अगर विचार किया जाए तो छोटे से बेनिफिट्स के लिए कभी भी सिगरेट को टच नहीं करना चाहिए. दूसरा, जो आपने फ्रस्ट्रेशन की बात अभी कही, ये वो भी ठीक है कि भी फ्रस्ट्रेशन को 1 सेकंड में शायद व्यक्ति भूल जाता है, और उसका कारण है कि उससे एसोसिएटेड जो दर्द है वो शायद कम होता है. ये जो ट्रंक्विलाइजर्स है उन्हें वो टेम्पररी बेनिफिट्स देते हैं. वो भले टेम्पररी बेनिफिट्स अच्छे भी है अगर प्रॉपरली डॉक्टर्स की राय के अनुसार थोड़े समय के लिए लिया जाए, फिर उसे सही रूप में छोड़ा भी जाए. आम व्यक्ति क्या करता है कि भी उसे जब जब स्ट्रेस होगी तभी वो सोचेगा कि एल्ट्रेक्स की गोली ले लूं, वेलियम की गोली ले लूं. वो ठीक नहीं है. वह टेम्पररी एक्चुअल रिलीफ भी नहीं देता.
0: आई थिंक 90% आज की जनरेशन जो वर्किंग क्लास है वो यही करती है कि नींद नहीं आ रही है तो एल्प्रेक्स ले लिया जाए. एल्प्रेक्स तो बहुत हल्की है, कोई परेशानी का कारण नहीं है. लेकिन जैसे आपने कहा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ड्यूरिंग एडिक्शन, मैं एडिक्ट भी हूँ एल्प्रेक्स की, क्या मेडिटेशन में कर सकती हूँ, और क्या वो मुझे जो एल्प्रेक्स का असर मुझ पर पड़ रहा था उससे ज्यादा असर दे सकती?
2: एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक उससे पहले हमें रूट को ढूंढना पड़ेगा कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है. यू नो, कोई ना कोई बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं. तो सिर्फ बाहर से उसके सिम्टम को नहीं देखें, लेकिन वो रूट प्रॉब्लम क्या है. और स्पिरिचुअलिटी हमें वो रूट को एड्रेस करने की कोशिश करेगी कि अगर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन है या करियर में कोई, मतलब एनी सिचुएशन आउटसाइड, तो उसको फेस करने की पावर देगी. अभी हम एडिक्शन से तो ठीक है, हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट एड्रेस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो प्रॉब्लम फिर ट्रिगर होगी तो वी विल अगेन गो बैक टू दैट, क्योंकि हमने वो तरीका नहीं ढूंढा कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. हमने वो चीज का सेवन किया और अपनी प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए भूल गए. लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसको फेस करना, उसकी पावर तो किसी भी मेडिकेशन से नहीं आएगी, किसी भी ड्रग से, या इवन मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग से भी वो पावर तो नहीं आ सकती कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कैसे ढूंढे.
0: तो
2: दैट विल गिव दैट
1: परमानेंट सोल्यूशन.
2: It's a permanent, you know, de-addiction.
0: तो relapsing की जो बात करते हैं कि relapse हो जाते हैं. डॉक्टर गिरीश पटेल, अगर हम देखें तो एक और जो कारण नजर आता है कई बार वो ये कि ट्राई करना चाहते हैं, जो खासकर इस जो जिस उम्र की हमने पहले भी बात की थी, यूथ की, वो जो एक एक्सपेरिमेंटिंग मोड है, पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो एक काफी पावरफुल फैक्टर है. एक बार कर लेने से कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करके देख लेने देता हूँ, एक कष्ट लगा लेते हैं, या एक बार एक प्याला पी के देखने में क्या हर्ज है, एक वो कितना इफेक्ट हो जाता है एक बार का पिया भी.
1: क्योंकि मेजोरिटी एक बार के बाद तुरंत छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन वो होता नहीं. एक बार आपको उससे थोड़ा भी बेनिफिट हुआ, आप चाहते दोबारा भी मैं लो, दोबारा जब टेंशन होगा, या तो फिर सेकंड टाइम तो थोड़े प्रेशर में भी आप ले लेंगे, क्योंकि एक बार तो मैंने लिया है.
0: तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे आदत नहीं पड़ी थी,
1: या तो इवन सेल्फ कंट्रोल भी था ना. एक भी बार जब तक व्यक्ति ने नहीं लिया है, उसके ऊपर वो एक इमेज है कि मैंने एक बार भी सिगरेट नहीं पी, वो एक जिसको सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं, आपकी एक इंटरनल स्टेट होती है. जब एक बार पी ली फिर तो इजी है, चलो अभी दूसरी बार भी ठीक है, नेक्स्ट वेरी इजी नाउ. नो, उस समय जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है.
2: कोई भी बात आप एक बार कर लेते हैं, चाहे वो गलत चाहे वो अच्छी बात, दूसरी बार करना बहुत इजी हो जाता है ना। तो अभी तक है कि मैंने कभी नहीं किया, तो जब तक आप अपने आप को वहां पे रख सकते हैं कि मैंने कभी नहीं किया,
0: वो मेरे लिए प्राइड का एक्चुअली मोमेंट होता है
2: एंड आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होती है। लेकिन और इंटरनल एक आपने अपने लिए बैरियर भी तो रखा है ना कि मुझे ये नहीं करना है, लेट्स से मैं नहीं करूंगा ये। लेकिन जिस दिन हमने वो बैरियर को तोड़ दिया, अपने लिए ही क्रिएट किया जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल को तोड़ दिया, तो पहली बार तो शायद ट्राई करने के लिए किया तो वो सेल्फ कंट्रोल था, थोड़ा सा किया रुक गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम शायद कोई प्रॉब्लम आने पर करेंगे। उस टाइम शायद उतनी पावर ही नहीं है कि वो सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करे,
0: क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, सिचुएशन ऐसी है, मेंटली हम इतने
2: और वर्तमान समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चैलेंजेस तो जीवन में आते ही रहेंगे, तो मुझे वो सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आई हैव टू क्रॉस ऑल दीज चैलेंजेस बिना इन चीजों का सेवन किए, तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
0: अगेन अगर मेल फीमेल रेशो की बात करते हैं, खासकर अगर हम व्यसनों की ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन के साथ भी आज ये हो रहा है कि स्मोक और ड्रिंक जो है वो एक पार्ट ऑफ सोशल कल्चर की जो बात है, ये भी बात कही जाती है कि वुमेन की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैज टेक प्लेस विद हर बॉडी, तो उस उनकी बॉडी पे क्या डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, ये भी एक मिथ है जिसके बारे में हम आपसे चाहेंगे कि खुलासा कर लें।
1: मोर ऑर लेस इफेक्ट तो सेम है, परंतु बॉडी सिस्टम डिफरेंट है, नो इट्स डेलिकेट, लाइक नो स्किन इज डेलिकेट, पर उस पर ज्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट होगी, तो इसे नहीं, और सिस्टम्स पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी। हार्मोनल सिस्टम डिफरेंट है, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हार्मोन्स दैट इफेक्ट इज लिटिल डिफरेंट, तो वही जो इफेक्ट मेल को होती है वो फीमेल को भी सारी इफेक्ट्स होनी ही होनी,
0: और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिव सिस्टम है।
1: और दूसरा बहुत बड़ा कारण कि टोबेको का यूज जो इतना बड़ा है वो लोग फिल्मों से सीखे, फिल्म में शाहरुख खान प्रॉब्लम में है, बस वो एक सिगरेट पीता है उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया, और लोग उसे
0: और एडवर्टाइजिंग, जिस तरह की एडवर्टाइजिंग जिस तरह की आ रही है, ऐसा लगता ही है कि अब मिल बैठेंगे यार, तो मतलब ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
1: एडवर्टाइज तो फिर भी ठीक है कि हम सोचते हैं कि भी ये कंपनी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए की है, पर तो फिल्म में ये बात नहीं होती,
0: वो रियलिटी दिखा रहा है।
1: फिल्म में तो ये है कि भाई नहीं, थोड़ी धुआं निकालो और तुम्हारा गम खत्म हो जाएगा, गम को तुम भूल जाओगे, और वो तो पहले से ही एसोसिएट कर रहा है फिल्म के साथ देखने वाला कि जो हो रहा है वो मेरे जीवन के साथ है, और जब वहां हो जाता है तो यूथ इमीजिएटली उसे लेने
0: लगते, बिल्कुल पिकअप कर लेते हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल, एक और जो बात सचिवानी सामने मतलब जो दिख रही है, दिखती है, वो ये कि एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं मेरा बेटा अगर स्मोक कर रहा है, मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैं क्या कर सकती हूँ, ओके कर रहा है तो अब ये है ही, आज का दौर यही है कि करेगा ही करेगा, या मेरा बेटा ड्रिंक्स में चला गया है, या मेरी बेटी भी स्मोक कर रही है, तो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ या समाज के साथ, जो यूथ को एक्सेप्ट करना हमने बहुत आसान कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन माई हैंड एट ऑल, दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर, मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या हम रोक नहीं सकते, क्या हमारे हाथ में नहीं है एज अ पेरेंट?
1: बिल्कुल, इसमें दो बातें कि भी एक तो आप कहते हो बिल्कुल सही है कि भी आज माता पिता उसको एक्सेप्ट करने लगे, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसे प्रिवेंट करना बहुत पॉसिबल था, कि अगर पहले से थोड़ा से कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते तो उसे वो प्रिवेंट कर पाते। और सेकेंड, अब एक्सेप्ट तो नहीं करो वो बिल्कुल ठीक है, परंतु डांटो भी नहीं,
0: लेकिन बात तो करो,
1: बात नहीं हो तो उसको तो ओवरकम करना ही है।
0: नहीं, वो तो बड़ी मजेदार बात ये है कि वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ हमसे छुप के पीता है, हमें नहीं पता चलने देता, हमारे सामने नहीं पीता, तो ये हमारी कम से कम इज्जत करता है, तो ये
1: कल तो पीने लगेगा आपके सामने भी,
0: नहीं पीता आपके सामने लेकिन पी तो रहा है, तो ये हमारा माइंडसेट को क्या आप क्या कहेंगे?
2: आई थिंक हमें इतना प्यार देना पड़ेगा उसमें। अभी नॉर्मली क्या होता है, अगर पता चल जाता है तो वी स्टार्ट लुकिंग डाउन, यू नो, एंड हम बार बार वो रब इन करते हैं, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और क्रिमिनल जैसा उसको फील करने। अब उसने वो एडिक्शन शुरू की बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, इधर लोनलीनेस और यू नो टेंशन, और अब जब उसको ये नेगेटिव एनर्जी पेरेंट्स से मिलती है तो वो एडिक्शन से बाहर निकलने के बजाय और भी उसकी तरफ चला जाते हैं। तो हमें पहले तो बहुत प्यार देकर उसको, जो आपने कहा एक्सेप्ट, उस सेंस में नहीं एक्सेप्ट, लेकिन बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसको ढूंढना पड़ेगा,
0: उसकी लत को, उसकी एडिक्शन को एक्सेप्ट ना करें,
2: एडिक्शन को नहीं। अभी हम ज्यादातर क्या करते हैं, उनकी जो बात है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको समझने की बजाय अगेन द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज एक्सेप्ट कर ले कि ये तो आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, तो कहां किस बात को एक्सेप्ट करना और उसको गाइड करना, rather than you know trying to make him sound ki you're doing something wrong, yes wrong but in what way, and again find the solution to the root problem ki kyun inhone ye karne shuru ki, agar peer pressure, agar media, to wo bhi aap ghar mein baith kar you know have a dialogue, and I think parents do it but it's with negative energy ki wo karte hain lekin wo us tarah se nahi, galat kar rahe ho galat, to wo ek negative energy jo transmit hoti hai wo parivartan nahi karne dete,
0: aur fir wo kahin na kahin ki aapne hamara trust break kiya,
2: wo sab jo factors aa jate hain, to bhale hum kar rahe hain, hum unhe rokna bhi chahte hain in baaton se, lekin vidhi ko theek apnana padega ki pehli baat solution root pe nikalna padega ki kya unke koi relationships mein problem hai, kahin college school mein koi problem hai, kahin parents ke sath hi to nahi bonding ho rahi hai, कहीं स्टडी में कुछ प्रॉब्लम, वो बातों को जरूर देखना पड़ेगा, रादर देन नहीं बस आप इसको छोड़ दो, वो तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन जब आप सोल्यूशन ढूंढेंगे रूट पे, ये बात तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। एंड ओवरऑल आपने अपना घर में कल्चर कैसे बनाकर रखा है, किस तरह से बनाकर रखा है, वो ऑटोमेटिकली बच्चों को इन बातों की तरफ जाने से।
0: इनफैक्ट अगर गिरीश पटेल जी देखें कि बहुत से फादर्स को मैं से जानती हूँ कि हाँ मेरा बेटा जो ड्रिंक्स शुरू करेगा वो मेरे साथ बैठ के ही शुरू करेगा,
2: तो कल्चर है,
0: ही विल हैव हिज फर्स्ट फैग विद मी, वेयर आर वी हिटिंग, हाउ रॉन्ग इट इज, आई वुड लाइक यू टू टेल इट हाउ रॉन्ग इट,
1: नो नो इट्स डेफिनेटली नो, एक एक्सट्रीम नेगेटिव है कि भी आप टोटल उनको सोच रहे भी मेरे साथ पी के सीखेगा, उल्टा आपको तो एग्जाम्पल बनना है कि भी मैं छोड़ दूं ताकि मेरा बेटा भी उसे कभी छुएगा तक नहीं। और शिवानी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि भी हमारा डायलॉग है ही नहीं, उन्होंने तो कहा कि डायलॉग है परंतु नेगेटिव है, परंतु बहुत सारे ऐसे में परिवारों को जानता हूं कि जो पैसा दे देंगे, हाँ उनको एटीएम कार्ड दे दिया, जब चाहे जितने पैसे निकाल लो बैंक से, परंतु समय नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात है उनको समय देने की, उनके साथ डायलॉग
2: भी नहीं चलता कि वो ले रहे हैं ऐसे कोई चीज, नहीं ले रहे हैं क्योंकि उतना टाइम स्पेंड नहीं कर।
0: और मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी आसानी से हम उसे एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, हम एफर्ट क्यों नहीं करना चाहते कि हम बदल सकते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स का यही देखा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? पहले मैं ये चाहूंगी, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो इस टाइम पे देख रहे हैं, जिनके या तो बच्चे या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स एडिक्शन में है स्मोकिंग के या ड्रिंक के, आप ये बताइए क्या पेरेंट्स, चाहे वो बच्चा एडिक्ट हो गया है, मतलब जिसको स्मोकिंग को हमने इतना नेचुरल मान लिया है या ड्रिंकिंग को,

0: क्या उन्हें वापस ला सकते हैं?
1: डेफिनेटली ला सकते हैं और लाना ही चाहिए. जितना जल्दी आप कदम उठाएंगे वो इजियर होगा, नहीं जितनी आप देर करेंगे वह हैबिट स्ट्रांग होगी और आगे चल के दिक्कत हो सकती है. और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये बच्चे को वापस, वो एक समझो लैप्स हो गया परंतु उससे मुझे अब वापस लाना है और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. पर बिजनेस थोड़ा कम हो कोई बात नहीं है, और कहीं सोशल बातें मैं ना भी कर पाऊं, परंतु बच्चे के लिए समय देना है, है ना. उसको कैसे अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना है, कुछ उसे टेक्निक सिखानी है कि जिसके द्वारा वो कंप्लीटली वापस आ जाए.
0: शिवानी, एक्सेप्टेंस, जैसा आपने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट द सिचुएशन बट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद के जो कदम होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया. अब क्योंकि पीयर प्रेशर में भी है, लोग भी अपने दोस्तों को तो वो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ऐसे पेरेंट कर सकते हैं कि उन्हें वापस लाया जाए?
2: उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करके, अप्रिशिएट करके उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं. और यही चीज अगर बचपन से उनको रियलाइज करवाई जाए कि आपकी अप्रिसिएशन उस चीज में जो आपके अंदर है, बजाय कि जो आप बाहर करते हैं. वी डोंट अप्रिशिएट, मतलब वी डोंट वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू ओनली फॉर वॉट यू अचीव, बट वी अप्रिशिएट यू फॉर वॉट यू आर एज अ पर्सन. तो अगर हमने बचपन में ये नहीं किया, वील हैव टू डू इट नाउ. एंड उसके इमोशनली भी उसकी चीजों को देखा जाए कि इन तरफ जाने से आपका फ्यूचर क्या है, या हम क्यों इस तरफ जा रहे हैं जब आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतने स्किल्स हैं. तो यू डोंट नीड टू बी अ विक्टिम टू यू नो दीज स्मॉल थिंग्स. और वो प्यार से, स्नेह से, और कहीं ना कहीं परिवार में ये चीज रॉन्ग है, जो हमने कहा था फैमिली की राइट्स एंड रॉन्ग्स हमें फिक्स करने, इस चीज को रॉन्ग है अगर हम रॉन्ग मानते हैं, तो इसको बचपन से हमें इंस्टिल करना पड़ेगा. और अगर फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो पेरेंट्स का तो शायद उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है. इफ दे टेक इट इन द राइट डायरेक्शन देन पेरेंट्स की बात ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट करेगी.
0: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा जो आज की बातचीत रही, क्योंकि कई कारण सामने आए. जब कारण एक बार पता चल जाए तो हम सॉल्यूशंस की तरफ तो चल ही सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, लत पड़ने की, व्यसन की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं, तो कितने सारे कारण सामने आते हैं. जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था तनाव से मुक्ति, उसके बाद पीयर प्रेशर है, या फिर मैं कुछ कर दिखाने की बात करता हूँ, या लगता है कि मैं एक हमारे सामने रोल मॉडल है वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ. कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब भी उस फेलियर को दूर करने के लिए. और सबसे बड़ी बात जो बच्चों में, जो युवा शक्ति में नजर आई, वो ये बात कि अगर हमारा बच्चा इस तरफ बढ़ रहा है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है. आज बहुत आसान लगने लग गया है कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन खुद अपने मन में हम ये विश्वास रखें कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने बच्चे को वापस लौटा कर लाएंगे, तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें खत लिख सकते हैं, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर फोन भी कर सकते हैं.
3: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.
0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी और हमारी ये मुलाकात यूं ही चलती रहेगी. आगे कुछ और बातें करेंगे कि किस तरह से जो आदतें हमारे लिए मजबूरी बन जाती हैं उन्हें हम दूर भी कर सकते हैं. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती.

अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणे

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रिय श्रोताओं, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है, संस्कार परिवर्तन। श्रोताओं, संस्कार व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं। परिवार, समाज और शिक्षा से मिले संस्कार ही हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों को आकार देते हैं। इन्हीं संस्कारों से हम सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को सीखते हैं। कहा जाता है कि अच्छे संस्कार व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन समय के साथ समाज बदलता है और इसी बदलाव के साथ संस्कारों में भी परिवर्तन आता है। आज का युग विज्ञान, तकनीक और सोशल मीडिया का युग है। वैश्वीकरण ने हमें नई सोच और नई दिशा दी है, नई संस्कृतियों से जोड़ा है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है और तेज जीवन शैली ने हमारे सोचने के ढंग को भी बदल दिया है। श्रोताओं, संस्कार परिवर्तन के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। आज की पीढ़ी अधिक जागरूक है, तर्कशील है, अंधविश्वास से बाहर निकल रही है, समानता, महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा मिल रहा है। यह समाज के लिए एक शुभ संकेत है। परंतु दूसरी ओर कुछ चिंताजनक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पारिवारिक मूल्यों में कमी, धैर्य और अनुशासन का अभाव तथा बढ़ता हुआ स्वार्थ हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहा है। आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम संस्कारों में ऐसा परिवर्तन करें जो हमें आगे बढ़ाए, ना कि हमें हमारी पहचान से दूर करे। आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना ही समय की मांग है। परिवार और शिक्षा का दायित्व तो है कि वे बच्चों में नैतिक और मानवीय संस्कारों को जीवित रखें। श्रोताओं, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि संस्कार परिवर्तन अनिवार्य है लेकिन मूल्यहीन परिवर्तन नहीं। जब आधुनिकता संस्कारों के साथ कदम मिलाकर चलेगी तभी एक सशक्त, संवेदनशील और सभ्य समाज का निर्माण होगा। इस संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए। आप सुन रहे थे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस। पांच आत्माएं, ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक, स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो, और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आसपास और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
1: थैंक यू सो मच
0: सिस्टर। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम माय लैपटॉप। मैं अक्सर आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूँ, लेकिन पहले आज कुछ सुनाना चाहूंगा। ही सेज यू नीड टू लर्न हाउ टू सिलेक्ट योर थॉट्स, जो आप पिछली बार कह रही थी ना। यू नीड टू लर्न हाउ टू सिलेक्ट योर थॉट्स जस्ट द सेम वे यू सिलेक्ट योर क्लोथ्स एवरी डे।
1: हाउ स्वीट।
0: देखा, ये भी एक होमवर्क है ना।
1: दिस
0: इज अ पावर यू कैन कल्टिवेट। मैं आपसे पूछ रहा था ना कि कभी ऐसे होता है, कभी वैसे होता है, करना कैसे, कभी लड़ता हूं, कभी झगड़ता हूं मन से, फिर मन को हमने बच्चा बनाया है, बहुत मेहनत की। तो यहाँ कल्टिवेट, दिस इज अ पावर यू कैन कल्टिवेट इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ सो बैड। वर्क ऑन द माइंड। यू नीड टू लर्न हाउ टू सिलेक्ट योर थॉट्स जस्ट द सेम वे यू सिलेक्ट योर क्लोथ्स एवरी डे। दिस इज अ पावर यू कैन कल्टिवेट इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ सो बैड। वर्क ऑन द माइंड। दैट्स द ओनली थिंग यू शुड बी ट्राइंग टू कंट्रोल।
1: Beautiful. Now underline the last line. That's the only thing you should be trying to control. That's the line which has to be underlined. And control means not in the negative way. You know, kai baar hum kehte hain, man ko control karna hai, man ko dabana hai. Nahi. Control means that's the only thing jis par aap attention do. ये किस दिशा में जा रहा है, इसको क्या करना है, क्या सोचना है, जो हमने इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रख दिया था। और जब हमने फिर वो, आपने बहुत सुंदर बात शेयर की कि मन को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे, ये लाइन वो ही बता रही है। एंड इतनी सुंदर फर्स्ट लाइन थी कि जैसे आप रोज सुबह सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या पहनना है, उसी तरह आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। देखो, व्हेन वी चूज आवर ड्रेस टू वेयर इन द मॉर्निंग, या यू चूज योर परफ्यूम दैट यू विल यूज इन द मॉर्निंग, हम क्या क्या सोचते हैं, ये ड्रेस, कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी, कौन सी ड्रेस पहनकर नाई गो आउट इन टू, अच्छा कौन से इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस राइट है वो भी देखते हैं, फिर कौन सी ड्रेस लोग वहां पर अप्रिशिएट करेंगे, ये सारी चीजें सोचकर फिर वो ड्रेस चूज करेंगे। नाउ कौन सी थॉट मेरे लिए राइट है, कौन सी थॉट मुझ पर अच्छी लगेगी।
0: वैसे जैसे सुबह सुबह अलग कपड़े पहनते हैं, नाइट डिनर हो तो अलग पहनते हैं, वैसे ही सुबह सुबह की थॉट्स एकदम प्योर, अच्छी, पवित्र से शुरू करें। तो
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझ पर अच्छी लगनी चाहिए वो थॉट। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। वी विल नेवर ड्रेस शैबिली ना, जो चीज हम पर सूट नहीं, कहते ना ये आप पर सूट नहीं कर रही चीज। हम अपने थॉट्स को चेक करें ना, कौन सी थॉट मुझ पर सूट करती है, कौन सी थॉट मुझ पर नहीं सूट करती है। प्योरिटी, पावर, रॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, ब्लिस, ये मुझ पर सूट करती
0: है। कब से ब्लिस ब्लिस कह रही हैं, तो ब्लिस हमारा मतलब, ब्लिस का क्या, हैप्पीनेस ही मतलब हो ना।
1: हैप्पीनेस से भी एक स्टेप ऊपर,
0: ब्लिस कनेक्टेड विद गॉड जैसे।
1: हर शब्द का एक जैसे ऑपोजिट होता है, हैप्पी अनहैप्पी, राइट। हर एक का एक होता है, सुख दुख, शांति अशांति, ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं है। ये अपने आप में एक, इसको हिंदी में हम कहते हैं आनंद, यू नो, एक अलग ही मन की स्थिति। कई बार जैसे कहते हैं, नहीं तो अपनी ही स्थिति, मस्त है ये एकदम,
0: कहते हैं आनंद आ गया।
1: दिस इज ब्लिस। नाउ व्हेन वी से बीइंग ब्लिस मींस दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुडे, बी एन एम्बोडीमेंट, अ पर्सनालिटी ऑफ ब्लिस। कहेंगे आपके ऊपर ये सूट करता है, पर्सनालिटी ऑफ ब्लिस। ये पर्सनालिटी सारा दिन में जहां जाएगी तो कैसी खुशबू फैलाएगी, इसको जो देखेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे। तो इसीलिए जो कहा कि आप जो ड्रेस कैसे चूज करते हैं, ये सब सोच के चूज करते हैं ना, इवेंट कौन सा मुझ पर कैसी अच्छी लगेगी और लोगों को क्या पसंद आएगी। सिमिलरली बीइंग ब्लिस मींस इफ मेरी स्थिति वो ब्लिस में है, छोटी छोटी बातों में उलझती नहीं है, छोटी छोटी बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर देती है, सहज है, सरल है, यहाँ ज्यादा पकड़ के नहीं रखी है चीजें, इजी यहाँ, तो खुशबू जो मुझसे फैलेगी, वाइब्रेशन जो मुझसे रेडिएट होगी, बिकॉज द थॉट्स दैट वी क्रिएट इज लाइक आवर परफ्यूम। एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है हमारे चारों तरफ. इसीलिए कोई कमरे में एंटर करे तो उसकी एनर्जी फील्ड उसके साथ एंटर करती है. जैसे आप जो परफ्यूम लगाएंगे, अब लगाई तो आपने है सिर्फ, लेकिन आप जहां भी जाएंगे वो खुशबू हर एक को मिलने वाली है, बिकॉज दैट्स द परफ्यूम यू चोज टू वेयर दिस मॉर्निंग. तो जब वो परफ्यूम आप लगा रहे हैं, यू विल टेक केयर दैट यू स्मेल गुड, बिकॉज एवरी वे यू गोइंग टू कैरी दैट स्मेल द होल डे. सिमिलरली जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी एनर्जी फील्ड है. हम जहां जाए हमारी एनर्जी फील्ड हमारे साथ जा रही है. बी केयरफुल.
0: जैसे बच्चे सुबह मुझसे मिलने आते हैं कमरे में, तो वो पहचान जाते हैं कि डैडी ने अभी पूजा खत्म की.
1: यस, क्योंकि एनर्जी फील्ड,
0: नहीं धुआं, उसकी खुशबू, उसकी अगरबत्ती,
1: राइट,
0: एटमोस्फियर. और जैसे
1: नॉट ओनली दैट, उस समय क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट पूजा खत्म की है, आपकी अपनी सोच, तो वो वाइब्रेशन बन गई ना कमरे की पूरे. तो उस समय पर जो आएगा उस रूम में, उसको फील कैसे आएगी.
0: मैं यही कहना चाहता, जैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे यू नो, अगर वही कोई और चीज होती तो ये बात, बच्चे जो एंटर करता है वो ये लाइन नहीं कहेगा कितना अच्छा कह रहा है, लगेगा यार कुछ गड़बड़ है, मैं बाद में मिलता हूँ.
1: तो एनर्जी फील्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, 50,000 से 60,000 विचार एक दिन के अंदर, 50,000 to 60,000 थॉट्स पर डे. एम आई टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी आई क्रिएट द होल डे. बातें तो आएंगी, मतलब परिस्थितियां आएंगी. अभी हम जर्नी पर हैं, तो हम अभी रिएक्ट करेंगे, हर्ट होंगे, अपसेट होंगे. अब एक प्रैक्टिस कितना लंबा खींचेंगे. नाउ दिस प्रैक्टिस, ओके, वी कैन नॉट मूव फ्रॉम येस आई यूज टू गेट हर्ट एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग हर्ट एट ऑल, या आई यूज टू गेट एंग्री नाउ आई एम नॉट गेटिंग एंग्री एट ऑल. इट वोंट बी ब्लैक एंड व्हाइट. राइट,
0: हर्ट को कितने घंटे खींचेंगे.
1: यस, क्योंकि उतनी
0: देर, कितने दिन खींचेंगे, कितने साल खींचेंगे.
1: हाँ, अभी दिन और साल नहीं, अभी घंटे भी नहीं, अभी उसको छोटा छोटा करना होगा. दिस इज एटलीस्ट व्हाट वी कैन स्टार्ट डूइंग. कि बात आई, बुरा लगा, सोचना शुरू किया उस डायरेक्शन में, सोचते ही जा रहे हैं. नाउ ओके, इनफ, इससे ज्यादा नुकसान नहीं. सोच लिया, बीत गए 10 मिनट, बीत गया आधा घंटा, मेरी एनर्जी
0: फील्ड. मुझे तो मेरे भाई के बच्चे की शादी में नहीं बुलाया गया, तो 10 साल से याद आता है अभी तक, तो आप कैसे बोलेंगे.
1: नो प्रॉब्लम, याद आता है ना, अभी याद आता है, क्योंकि वो यहाँ पे है, रिकॉर्डिंग अभी भी है. बात उस टाइम जब हुई थी तो दर्द हुआ था, जिस दिन वो बात हुई, कोई बात हुई, दर्द हुआ.
0: अभी भी तो दर्द वापस आता है, वो थोड़ा
1: दर्द वापस नहीं आता, वो दर्द है ही. इसीलिए बात वापस आती है, माइंड में थॉट आती है, क्योंकि वो जो बात उस टाइम हुई थी उसको हमने आंसर नहीं दिया. इसीलिए अपने इश्यूज को रोज रात को सोने से पहले रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है.
0: क्या दूं मैं इसको आंसर, लंबा नहीं खींचने के लिए.
1: लंबा नहीं खींचने के लिए, सपोज मुझे किसी ने नहीं बुलाया ना शादी पे, नहीं
0: आपको मैंने बुलाया. हाँ, अपने बच्चे की शादी में.
1: हाँ.
0: आप मुझे अपने बच्चे की शादी में, दूसरे बच्चे की, तीसरे में भी नहीं बुलाएंगे.
1: नहीं बुलाया, ओके. सिचुएशन जो आई, मुझे नहीं बुलाया. अब अपने मन को आंसर दे दें सारे, कि शायद मेरा इस समय उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया. वो किसी बात से मुझसे हर्ट है, जो मैं शायद उनसे पूछ के क्लैरिफाई भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया. कोई बात उनको तकलीफ दे रही है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, और तो कोई रीजन हो नहीं सकता. ये सब क्लियर करके, बट हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे बुलाया नहीं, देखो बुलाया नहीं, मैंने उनको हमेशा बुलाया, उन्होंने बुलाया नहीं, क्या समझते हैं वो, मैंने उनके लिए इतना किया. दिस विल क्रिएट हर्ट. हर्ट इज नॉट द सिचुएशन कि बुलाया नहीं, लेकिन नहीं बुलाने पर मैंने क्या क्या सोच करके यहाँ पकड़ लिया. इससे अच्छा 5 मिनट निकाल के उनसे ही बात कर ले. अगर बात खत्म अंदर नहीं कर पा रहे, तो बाहर बात करके आंसर पूछ ले. और कुछ भी नहीं है तो उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे हैव अ चॉइस.
0: मुझे अगर नहीं बुलाए तो मैं जाके भीख मांगूंगा उनसे कि
1: आप
0: मुझे बता दो कि
1: उन्होंने मुझे,
0: पहले आपने मुझे भीख के कटोरे में कुछ नहीं दिया, फिर और मांगू, प्लीज ये बता दो क्यों नहीं दिया.
1: अगर वो बात मुझे परेशान कर रही है, और जितनी देर परेशान कर रही है, मतलब एक थॉट चल रही है जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो जितनी देर हम सोचेंगे तो भी तो उन तक वाइब्रेशन जा रहे हैं.
0: यही थॉट होता है, ये हुआ क्या मुझसे, कौन सी गलती होगी.
1: तो वो गेस करने से अच्छा पूछ ले सामने वाले से.
0: बंदा बात ही नहीं करता है, बुलाता नहीं है, तो आपको उसको पूछने के लिए फोन करेंगे.
1: इतनी देर पकड़ के रखना See, this is ego which will block na. कि मैं क्यों पूछू. If it is important, important नहीं है तो बिना पूछे ही बातों को साइड पे. मेन चीज है उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का.
0: एंड उनकी कोई मजबूरी होगी,
1: रीजन ना, कोई भी रीजन, फैमिली
0: का मन नहीं होगा, उनकी बीवी नहीं बोली होगी, उनकी माँ नहीं बोली होगी, उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, बच्चे खुद नहीं बोले होंगे कि उनको नहीं बुलाना.
1: Perfect.
0: कुछ
1: Answer.
0: कितना कुछ तो होगा.
1: कितने ऑप्शंस हैं?
0: अब उसको बेचारे को खोरे देंगे.
1: Yeah.
0: और मैं पूछूंगा और वो मजबूर है.
1: हाँ.
0: तो उसको और तकलीफ दूं पूछ के. वो कैसे बोलेगा कि यार मेरी वाइफ ने बोला या मेरा बच्चा नहीं चाहता था. वो कैसे बताएगा?
1: आपने कुछ एपिसोड पहले कहा था, देन इफ वी आर हर्ट वी शुड गो एंड टेल देम दैट वी आर हर्ट. एंड अभी आपने कहा कि क्या जरूरत है उनको जाकर.
0: और हर्ट हो जाएगा ना.
1: हाँ.
0: और उसको झूठ बोलने पे मजबूर करूं.
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेजोरिटी टाइम इश्यूज बाहर रिजोल्व हो नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव से राइट होता है. उस स्थिति ऑफ हर्ट में हम अपने अपने दृष्टिकोण से इतने अटैच्ड होते हैं कि हम दूसरे के दृष्टिकोण को सही है वो समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को सिर्फ अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं. एंड कई बार उसमें इतनी बातें और निकल आती हैं, बहुत सारी पास्ट की बातें और निकल आती हैं कि पहले चोट इतनी थी
0: और बढ़ जाएगी,
1: चोट और बढ़ जाती है. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्लैरिफिकेशन हो सकती है. विल आई गेट अ राइट एक्सप्लेनेशन विच विल बी कन्विंसिंग, या एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर मुझे ही अपने आप को कन्विंस करना है पहले ही कर लेते हैं. रिजोल्व द इशू, आंसर द क्वेश्चन, पुट इट असाइड. पकड़ के रखेंगे तो 10 साल भी पकड़ के रख सकते हैं.
0: वो आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा सूट किया भाई, उनका मन नहीं किया. या उनकी कोई मजबूरी होगी.
1: हम भी कई लोगों को नहीं बुलाते हैं, सबको नहीं बुला सकते. और कई बार हम किसी बात से परेशान है, हमारा नहीं मन है किसी से बात करने का. आई हैव अ चॉइस. यू माइट नॉट लाइक इट बट आई हैव अ चॉइस. अब आपको बुरा लगा कि मैंने नहीं बुलाया, बट मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है. और अब आप वो करें जिससे आपका मन ठीक हो जाए. अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल मी. सो रिजोल्व योर इशू. अब सपोज बात रिजोल्व नहीं हुई, पुरानी कोई बात है, अब 10 साल पहले सपोज ये बात हुई थी और ये अभी भी थॉट सडनली आ जाती है, या तो अब रिजोल्व कर दें आंसर दे के. अच्छा, रिजोल्व नहीं भी कर पाते हैं, वो थॉट्स चलने शुरू हो गई. जैसे ही वो थॉट्स चलने शुरू हो गई, मूड चेंज हो जाएगा, फीलिंग पर इफेक्ट आने लगेगा. एट दैट टाइम एटलीस्ट टेल योरसेल्फ कितनी देर ये सोचना है. और फिर सोचते सोचते अगर औरों से भी बात करनी शुरू कर दी, वो दिस इज अनदर वेरी क्रिटिकल थिंग. अगर औरों से भी वो एक कॉन्वर्सेशन में आ गई बात, तो वो एनर्जी फील्ड मैग्निफाई हो जाएगी. जैसे हमने उस दिन देखा, गुस्सा बीइंग लेवल पे है, डूइंग लेवल पर आ गया, मैग्निफाई हो जाएगा. तो इसीलिए हर्ट है, वो बात है, उसको अंदर रिजोल्व करें. जितना डिस्कशन में आ गई, और अगर डिस्कशन में भी सभी ने उसी डायरेक्शन में इनपुट दे दिया, रीइन्फोर्स हो जाएगा. वो नहीं करना. तो बात आ रही है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टॉप इट फास्टर. अगर पहले मैं आधा घंटा मूड अपसेट होता था, बिकॉज नाउ अवेयरनेस है, पहले अवेयरनेस नहीं था. करना तो है, इजी है.
0: वो आपका बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, कब तक खींचेंगे, कितना खींचेंगे, कितना.
1: Yes.
0: उसका एक लिमिट बना दो भाई.
1: कितना टाइम उदास रहना है आपको इस तरह से?
0: चलो एक घंटा रहना है, दो घंटे रहना है.
1: गो अहेड.
0: मतलब वैसे जैसे आपने कहा, मन को बच्चा बच्चे से पूछेंगे.
1: Yes.
0: भाई कब तक अभी तुम करने वाले.
1: इट्स लाइक बीइंग विद अनदर पर्सन. जैसे दो लोग बैठे हैं और एक का चेहरा उदास है, तो हम सामने वाला ऐसे ही तो नहीं बैठ जाएगा ना, कहेगा क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या आपको परेशान कर रहा है. फिर वो आपको आपकी बात बताएगा, फिर आप उसकी बात को हल्का करेंगे, छोड़ो ना, क्या हुआ, इतनी सी बात, छोड़ो, मूड ठीक करो अपना. मूड ठीक हो जाता है, हम औरों का मूड ठीक कर लेते हैं, दूसरे लोग हमारा मूड ठीक कर लेते हैं. हम सबको मूड ठीक करना तो आता है ना, लेकिन सिर्फ क्या है, हम एक दूसरे का मूड ठीक करते हैं. क्या करके, सोच को एक अलग दिशा में लेकर जाते हैं. बट वी कांट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. इसी तरह अपने आप से भी तो बात कर सकते हैं. दिस इज सेल्फ काउंसलिंग.
0: मन बच्चा.
1: अब क्या हुआ, चल रहा है, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कब तक इस बारे में सोचना है, कब तक इस बारे में सोचना है, ये दर्द हो रहा है, फैल रही है, एनर्जी फील्ड खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, उन तक भी वो वाइब्रेशन पहुंच रही है, बी केयरफुल. अब क्योंकि अवेयरनेस है, वी विल ऑल एक्सपीरियंस दिस. कम से कम नहीं, अगर पहले आधा घंटा था, आज आप 20 मिनट पे रुक जाएंगे. आप रुक जाएंगे क्योंकि अब आपको अवेयरनेस है. और फिर 20 मिनट से और कम और कम और कम ये होता जाएगा. वी नीड टू टेक केयर, क्योंकि अदरवाइज जितना ज्यादा खींचा, जितनी ज्यादा देर खींची, वो नलका बहता जा रहा है. सो आई नीड, ये हम कर सकते हैं. थॉट्स का अगर हम सारा दिन में देखें, जैसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो नेक्स्ट चीज इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है वो है फीलिंग. यू नो समटाइम्स वी नॉट एबल टू चेक एट द लेवल ऑफ थॉट्स. वी से आई एम नॉट फीलिंग नाइस टूडे, आज अच्छा नहीं लग रहा, मूड अच्छा नहीं है, मन उदास है. फीलिंग लेवल पर हम चेक करते हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग गुड. तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपनी फीलिंग को ठीक कैसे करें. हाउ डू आई फील बेटर नाउ? फीलिंग लेवल पर ठीक नहीं होगा, आपको सूक्ष्म रूप से चेक करना पड़ेगा क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे थे मैं काफी देर से. फीलिंग मैनिफेस्ट हो गई है उससे. फीलिंग को चेंज करें, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, लेट मी फील बेटर, मैं क्या करूं फीलिंग को चेंज करने के लिए. फीलिंग नहीं चेंज हो सकती है. गो बैक, सिट एंड चेक, क्या सोच रहे थे मैं पिछले एक घंटे में, किसके बारे में सोचा, कौन सी बात सोची जिस वजह से ये फीलिंग क्रिएट हुई है. थॉट, नेक्स्ट स्टेज इमीडिएटली फीलिंग. अब जो फीलिंग मैं आपके बारे में कई बार क्रिएट कर दूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर फील लाइक दैट, इट डेवलप्स माय ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन कि ये ऐसी बात है. दुनिया के प्रति भी मेरी जो वृत्ति है, पहले सोच फिर फीलिंग, एटीट्यूड वृत्ति बन जाती है. अब जैसी एटीट्यूड होगी वैसा मेरा व्यवहार होगा. जो मैंने आपके बारे में बहुत समय से सोचा होगा वो मेरा एटीट्यूड बनेगा. एटीट्यूड के अनुसार ही मैं बात करूंगी, व्यवहार करूंगी, कर्म में आ जाऊंगी. आज बहुत सारी बातें हो रही है हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एटीट्यूड पे वर्क नहीं होगा, थॉट क्या क्रिएट किए थे जिससे ये एटीट्यूड बना. अब जो एटीट्यूड कर्म में आ गया, एक्शन में आ गया, नाउ एनी एक्शन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हैबिट स्टार्ट हो गई थॉट से. अब ऑल माय हैबिट्स पुट टुगेदर पर्सनालिटी. आज हम पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हैं, कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसा सोचना है, वो तो नहीं मुझे किसी ने सिखाया. तो प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं. प्रोडक्ट की फर्स्ट स्टेज क्या थी, बचपन से कैसा बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे लिखना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या सोचना है.
0: मैंने झगड़ा करते हुए लोगों को देखा, वो कहता है तुमने ऐसा सोचा ही क्यों, तुमने ऐसा सोचा ही कैसे, सोच कैसे लिया. बाप बेटे का झगड़ा चल, लेकिन बाप ने कभी ये नहीं सिखाया. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सोचना क्या है, कैसा सोचना है और सोच को कैसे बदलना है. बस उस पे सोचा भी कैसे, इतनी घटिया सोच आपके अंदर,
1: यू नो. लेकिन वो सीखा ही नहीं ना कभी भी, किसी ने नहीं सिखा.
0: उसकी कोई स्कूल में भी क्लास नहीं है,
1: हाँ, नहीं,
0: माँ बाप भी नहीं देते,
1: नहीं देते,
0: दोस्त भी नहीं देते, तो क्या करें.
1: जब यही नहीं सिखाया कि सोच हमारी क्रिएशन है, थॉट्स आर माय क्रिएशन, यही नहीं पता था.
0: अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ. जब जब आप कहती है ना हमने ये क्रिएट किया थॉट, ये क्रिएट, मैंने कहा बार बार ही बोलते हैं क्रिएट किया, मैं कहाँ झगड़ा करने जाऊँ, मेरे पास मेरी तो थॉट आप ही आती है.
1: ये सारा दिन में देखना है, अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी इसकी अवेयरनेस की. अच्छा, जो अपने आप भी आती है आपने कहा, तो कहाँ से आती है?
0: मेरे अंदर से.
1: तो अंदर भी किसने जमा करके रखी थी जहाँ से आई?
0: मैंने.
1: तो कभी क्रिएट की होगी, रखी होगी, अब अपने आप आ रही है.
0: मतलब आपका ये सिंपल भाषा में, मैंने डस्टबिन में कचरे में आम वाम खा के घोटली सब रख दिया और उसकी बास आती जा रही,
1: वही
0: से होते जा रहा है.
1: जो होगा ही नहीं अंदर,
0: तो मैंने ही फेंका.
1: यस, मैंने कभी ना कभी क्रिएट करके वो रखा है. जैसे आपने कहा उन्होंने शादी पे नहीं बुलाया, वो बात मैंने पकड़ के रखी है, तो अब आ रही है ना. वो बीच में कभी भी आ जाती है, वो फिर से याद आते हैं तो आ जाती है. कहीं और वो किसी और फंक्शन पे अब बुला लेते हैं तो वो बात याद आती है, तब तो नहीं बुलाया था.
0: आपने मुझे अभी कहा था कुछ के हम दिन में हजारों पता नहीं कितनी थॉट सोचते हैं, कुछ देर पहले या कुछ एपिसोड्स पहले आपने एक बार ये भी कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन ऑन द बॉडी. तो हर बार मैं सोच रहा था बीच में जैसे आप बात कर रही थी, बेचारी बॉडी अभी ये सोचे, अभी वो सोचो, अभी ये सोचो, मतलब कितना फ्लक्चुएट करो.
1: See, it is basically the quality of the thought.
0: हाँ, तो हर थॉट की आपने कहा था ना कि रिएक्शन होता है,
1: इफेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बॉडी,
0: एवरी ईच एंड एवरी सेल. हाँ, ये पॉइंट भूल गया था मैं. ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी के ऊपर हमारी थॉट का रिएक्शन जब होता है. तो मैं इतनी थॉट सोचूं और इतना गंद सोचूं, इतना दुखी रहूं, तो मेरे सेल्स का क्या हाल होता होगा?
1: वो सिर्फ आपकी बॉडी पर नहीं इफेक्ट होता है, ईच एंड एवरी थॉट का पहले आपके मूड पर इफेक्ट होता है. सी, जैसा थॉट वैसी फीलिंग. तो इसका मतलब ईच एंड एवरी थॉट से हमारी फीलिंग डेवलप हो रही है. तो मतलब मेरा मूड, जिसको हम कहेंगे, ईच एंड एवरी थॉट से मेरा एटीट्यूड, एक्शन, पर्सनालिटी, फिर ईच एंड एवरी थॉट से मेरा शरीर, फिर मेरी ईच एंड एवरी थॉट वातावरण में जा रही है, वाइब्रेशन, फिर मेरी

0: पर्सनालिटी सारा दिन सब कुछ कर रही है, राइट? और जैसा ये व्यवहार करती है, जो ये कर्म करती है, वो हमें पता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा, वो फल हमें मिलेगा. तो पर्सनालिटी क्रिएट्स डेस्टिनी. तो माय ईच एंड एवरी थॉट इज राइटिंग माय डेस्टिनी. हाउ कैन आई अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? How can I afford to create a wrong thought? And then after creating all the wrong thoughts, we are going to other people and asking them, how do I change my destiny? मैं अपना भाग्य कैसे बदलू? मेरा भाग्य यहाँ, इसीलिए तो देखो भाग्य यहाँ बोलते हैं ना. यहाँ क्यों बोलते हैं? मेरा भाग्य ही ऐसा है. यहाँ क्यों? यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ मेरा भाग्य खोटा है. यहाँ क्यों है भाग्य? क्योंकि यहाँ सोच है और हर सोच मेरा भाग्य लिखते हैं. तो भाग्य में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, सोच को बदलते हैं.
1: किसी ने ये कहा, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते.
0: ब्यूटीफुल. या
1: जिसके हाथ ही नहीं है.
0: yes.
1: तो फिर आपका पॉइंट ये करेक्ट हो गया,
0: राइट?
1: लिखी तो यहाँ जाती है.
0: आप देखो हाथ की लकीरें,
1: और जिनके हाथ नहीं होते तकदीर.
0: हाथ की लकीरें कैसे बनती है? चेहरा कैसे बनता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. मन को बदलते जाए चेहरा बदलता जाएगा. मन को बदलते जाएं हाथ की लकीरें बदलती जाएंगी. मन को बदलते जाएं स्किन का टेक्सचर बदलता जाएगा. ये तो आउटवर्डली, एवरी सेल ऑफ द बॉडी. अंदर तो बहुत कुछ हो रहा होगा. ये जो चीजें दिखती हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है मन की सोच से. ये तो विजिबल चेंजेस इन द बॉडी है. हाथ की लकीरें बदल जाती है. तो इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन माई डेस्टिनी जब हमें समझ.
1: 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स करके जो लोग आते हैं, अरे कितना बदल गए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप. या छुट्टी पे जाके आते हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, हॉलीडे मनाया, शिमला घूमा, इधर घूमा, बच्चों के साथ घूमा, सडनली चेहरे पे.
0: क्योंकि वो सारा जो कचरा था उसको निकाला ना.
1: चाहे वो मेडिटेशन आया, फिर वापस शुरू हो गया
0: बाद में ना. बट वो थोड़े दिन का भी देखो प्रभाव, इट शुड बी अ प्रूफ फॉर मी ना, कि थोड़े दिन भी जो मैंने किया, चाहे मैं मेडिटेशन रिट्रीट किया, वो भी नहीं, आप सिर्फ आधा घंटा सत्संग में जाओ, पूजा करो, जहां आप इंटरनली कर रहे हो कुछ, नॉट के सिर्फ मुख सत्संग कर रहा है या पूजा कर रहा है, जहां आप सच में सोच के ऊपर अंदर वर्क कर रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, कर रहे हो, जिससे आपकी सोच बदल रही है. वो भी नहीं, आप सिर्फ बैठो और म्यूजिक सुनो एंड अंदर को आए और आपका चेहरा देखे. उस समय कुछ नहीं हुआ ना, अभी बहुत टेंशन में थे, अभी बैठ गए म्यूजिक सुनने के लिए. अंदर अगर आपने अपनी थॉट्स को वो म्यूजिक सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते, थॉट्स को चेंज किया अगर, चेहरे पे दिखाई देगा. चेहरा तो इज इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड. इमीडिएट, इट्स लाइक योर चेहरा देख के पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है. मालूम पड़ेगा कि अंदर कितना शांत है या अशांत है. चेहरा देख के पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका क्या हाल चाल है. वो तो चेहरे और चलन में दिखाई देता है. सो लेट्स टेक केयर ऑफ द थॉट्स. आज जो इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी, मेकअप, इतना सब कुछ जो किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए किया जा रहा है, कि कहीं ये सारी चीजें जो दिख रही है, इसको कैसे छुपाया जाए. कैसे छुपाएंगे? चेहरा भी छुपा देंगे तो खुशबू को कैसे छुपाएंगे, अपनी वाइब्रेशन को? व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस एफर्ट, जैसे आप हमेशा कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, इधर क्यों नहीं मेहनत कर लेते?
1: सच में
0: कितनी मेहनत करने के लिए रेडी है? अपनी सोच को चेंज करने की मेहनत. हम अपनी सारी थॉट्स को ब्रॉडली आज चेक करेंगे. 4 टाइप ऑफ थॉट्स में क्लासिफाई हो जाएगा. पॉजिटिव, जो हम सारा दिन सुनते हैं, प्योर क्लीन राइट थॉट. राइट थॉट, अच्छी थॉट, प्यार, कंपैशन, मर्सी, कोऑपरेशन, लव, ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो हमने एक रेयर चीज बना दी है. श्रेष्ठ चिंतन, एकदम श्रेष्ठ चिंतन. और उसका सिंपल चेकिंग है, साफ है, सही है, एंड चेकिंग कंफर्टेबल है, अच्छा फील हो रहा है उसका. क्योंकि राइट थॉट का सेकेंड प्रोडक्ट होना चाहिए अच्छी फीलिंग. आई एम फीलिंग नाइस. तो पॉजिटिव. नेगेटिव ऑपोजिट, ईगो, एंगर, क्रिटिसिज्म, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, रिजेक्शन, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव, एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड. फिर एक बीच की, न्यूट्रल.

0: ना कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं ना गलत सोच रहे हैं, सिर्फ कर्म के बारे में सोच रहे हैं, अभी ये करना है, अभी इधर जाना है, अभी ऐसे करना है, वो न्यूट्रल। एंड एक कैटेगरी वेस्ट, वेस्ट थॉट्स है, नेगेटिव नहीं है लेकिन वेस्ट है, जिसका कोई यूज नहीं होने वाला है लेकिन सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, विच इज जनरली थिंकिंग टू मच अबाउट जो बीत चुका, पास्ट का चिंतन क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, या आने वाले समय का चिंतन, भविष्य या जो बीत चुका उसके बारे में सोचना, दोनों चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, बहुत सारे थॉट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो आज बीच बीच में रुक रुक के, बीच में जस्ट स्टॉप, चेक कैसी वाली थॉट चल रही है, एंड कैन आई शिफ्ट फ्रॉम वन क्वालिटी टू अनदर। 60,000 अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी है तो उस 60,000 जो मेरी प्रोडक्शन है, कितना पॉजिटिव, कितना न्यूट्रल, कितना वेस्ट, कितना नेगेटिव। आई द चेयरमैन, मन का मालिक को अपनी इंडस्ट्री को बीच बीच में रुककर इवैल्यूएट करने की जरूरत है।
1: बच्चे खेलते हैं ना बिजनेस का गेम, ये इतने रुपए का कार्ड ले लेते, अभी ये बनाएंगे, अभी ये खरीदेंगे, ये भी बहुत सुंदर गेम आपने बताया और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सिस्टर थैंक यू सो मच,
0: ओम शांति।
1: नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू सो मच।
2: लाइक वी चूज द क्लोथ्स वी वेयर, लेट अस चूज द थॉट्स वी क्रिएट। द थॉट्स विच सूट आवर पर्सनैलिटी, which are comfortable for us and which will be appreciated by others. We create 50 to 60,000 thoughts in a day. Our thoughts become our energy field. Our energy field moves with us and radiates to everyone like the perfume we use. Even if we create hurt, resolve the issue and reduce the time for which we will remain in pain. Else, we can carry it for months and years. Answer the mind and close the topic, heal the pain. Our every thought is followed by a feeling. Feelings over a period of time develop our attitude. Attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates habits.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हाँ, और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर संग। साथियों, आज एक विचार मेरे मन में आया कि आज के इंसान में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्यों न उसे कम करने के लिए कुछ काम किया जाए। क्या कहते हैं आप? आपके भी यहाँ है तो चलो बात करते हैं इसी विषय पर। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में एक रिया, जो स्वयं को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी, ये मैसेज देता है। क्योंकि हम हर बार ये सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें खुद में वैसे बदलाव लाना चाहिए। क्या मैं खुद बदलूं तो दुनिया नहीं बदलेगी? जी हाँ, जरूर बदलेगी।
1: लेटर्स ए बी बी वाई, क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? कैसा होगा मेरा फ्यूचर ये सोच के हैरान है? तो आज लाया हूँ कुछ यूजफुल तथ्य, जिंदगी के कुछ कटु सत्य। जिंदगी अपने आप नहीं संभलेगी जब तक तुम नहीं संभलोगे। जिंदगी अपने आप नहीं संभलेगी जब तक तुम नहीं संभलोगे। अब कुछ नहीं बदलेगा यार जब तक तुम नहीं बदलोगे। कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक तुम खुद अच्छा नहीं करोगे। मेरे बस की नहीं है, इस गलतफहमी में रह के कब तक डरोगे? सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस्मत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो वो उस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। खुशियों का फूल सबकी जिंदगी में खिलता है, खुशियों का फूल सबकी जिंदगी में खिलता है। हम सबको जिंदगी में एक न एक बार मौका मिलता है। सर्द हवा भी कभी ना कभी जरूर चलती है। जिंदगी में परेशानियां सबको मिलती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन सिचुएशंस में क्या एक्शंस लेते हो। अगर आप खुद पे आई परेशानियों को झेल गए तो समझ लेना सही खेल गए। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि देश बदल जाएगा, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपकी जिंदगी की सिचुएशंस बदल जाएंगी, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपके मार्क्स बदल जाएंगे, अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपकी सैलरी बदल जाएगी, और अगर आप इंतजार कर रहे हो कि आपके खराब रिलेशंस बदल जाएंगे, तो भाई खत्म हो जाओगे अगर अब भी नहीं संभलोगे। खत्म हो जाओगे अगर अब भी नहीं संभलोगे। अगर कुछ नहीं बदलेगा यार जब तक खुद नहीं बदलोगे। अगर तुम्हें बेटर लाइफ चाहिए तो पहले खुद बेटर बनो ना यार। अगर आप खुद को बदलोगे तो इस दुनिया में हर चीज आपके लिए खुद ब खुद बदल जाएगी। अपना बिहेवियर अच्छा बनाओ, लोगों का बिहेवियर अपने आप अच्छा बन जाएगा। अपने काम में बेस्ट दो, आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। आप जो कर रहे हो उस काम की क्वालिटी को बेहतर बनाओ, आपके इनकम के डिजिट्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छा चाहिए तो पहले आप खुद अच्छे बनो, और जब आप अच्छे बन जाओगे तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी।
0: थोड़ा सा झलक मैंने रैप का सुनाया, शायद आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये हकीकत बयान करता है, हमें खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। आज के समय में नकारात्मक सोच जीवन को घेरे हुए है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये जीवन प्रगति में बाधा भी करती है। मनुष्य ईर्ष्या द्वेष के जाल में फंसता जा रहा है। ये सभी भाव मनुष्य की प्रगति में बाधक तो है ही है। और मनुष्य निरंतर इस तरह की सोच में अपने आप ही जीवन के स्वर्णिम पलों को खत्म कर रहा है। अगर आप खुद ऐसे नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, या आपके दोस्त अथवा रिश्तेदार में आपको इस तरह के भाव दिख रहे हैं, तो आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। लेकिन पहले ये समझना होगा हमें कि नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच है। सबसे पहले हम इस विचार को समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव को समझे, नकारात्मक है क्या, तो आप किस भाव से ग्रसित है और इसे स्वीकारने में हिचके नहीं। ये तुलना अपने तक भी आप सीमित रहकर कर सकते हैं। आपको नकारात्मक भाव से दूर होने के लिए स्वयं के अलावा किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की कमी को निकालने के लिए मुझे ही होना है, मुझे ही अपनी कमी को स्वीकार करना है, तब जाके मैं अपने आप पे काम कर सकता। तब कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे कुछ ही देर में एक खूबसूरत गजल के बाद, जो गजल जगजीत सिंह ने गाया है। और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें हम सभी को एहसास भी होगा, यानी ये गजल भी शुरू होता है अक्षर आ से। तो आइए ये खूबसूरत गजल अभी आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM, और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो और खुशियां बांटो।

जिंदगी में हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। ख्वाबों का सफर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ साथियों, अभी जो गजल आपने सुना एक प्रेमी का पॉजिटिव शक्ति को दिखाया गया है। आज फिर मैंने सौदा किया का मतलब है मैंने एडजस्टमेंट किया लाइफ में, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। हमें पॉजिटिव एनर्जी जीना सिखाता है हर एक सिचुएशन में, रिवेंज नहीं लड़ाई नहीं प्यार से आगे बढ़ना सिखाता है, हर सिचुएशन को समझना सिखाता है। तो आइए हम बात कर रहे थे पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। हम पहले नेगेटिव को समझे, तो पहली बात ये है कि हर नेगेटिव व्यक्ति क्या सोचता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हो सकता है कि आप भी इसी तरह की सोच रखते हो, लेकिन आज अपने तक सोच समझ के उसे खत्म करना है। आप अपने ऊपर जो भी बीत रही है या जिस तरह की सोच आप कर रहे हो उसे अब इन बातों के साथ तालमेल जरूर कीजिए। अगर कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर है, आप फील करते हैं हाँ ये ऐसा ही है मेरे साथ में, तो इसे निकाल दीजिए। पहली बात, अपने आप को हमेशा दूसरों की तुलना में कम अथवा अधिक आंकना। नेगेटिव व्यक्ति ये जरूर इस तरह की तुलना करेगा। दूसरी बात, दूसरों में हमेशा कमी निकालना। अपने आप को हमेशा अपमानित समझना, जैसे घर में कार्यक्रम के वक्त किसी ने आपसे खाना खाने के बारे में पूछा नहीं, या इस तरह के कई भाव जब आपको लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, या फिर हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है लेकिन उसे दिल और दिमाग में बिठाकर अपने आप को हीन दृष्टि से देखना भी नकारात्मक भाव है। असंतुष्ट रहना अर्थात अपने जीवन अपने काम से लगाव न होना और सदैव इस सोच में रहना। एक और बात, छोटी सी बात में दुखी होना और अपने आप को और दूसरों को कष्ट देना। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक पहलू को देखने से पहले नकारात्मक पहलू को देखना। सामने आई कोई भी वस्तु जैसे भोजन अथवा वस्त्र आदि में बुराई ढूंढना। तो ये सारे लिस्ट है नेगेटिव एनर्जी की। ये सारी बातें हमें नेगेटिव व्यक्ति बनाते हैं, तो समझे आप ऐसा कुछ है तो चेक एंड चेंज। जब आप ऐसा करेंगे तो एक नया रास्ता एक नया जीवन का अनुभव आप करेंगे। जैसे ये गीत भी आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देगा जो अभी मैं सुना रहा हूँ, जहाँ जीने और मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है तब ही कोई ऐसा कर सकता है। जी हाँ, जो व्यक्ति सकारात्मक होता है जीने और मरने में फर्क नहीं होता, उसकी जिंदगी ऊर्जा के साथ चलती है, एक मस्ती एक खुशी एक आनंद। तो आइए सुनते हैं लता जी का ये खूबसूरत गाना जो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। बहुत दिल से सुनिए, आज फिर मरने का इरादा है। आप सुन रहे हैं रेडियो पूरी री आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपका हमसफर सनी। लता जी की आवाज में गाइड फिल्म का ये खूबसूरत गाना, सचिन देव साहब का संगीत, 1965 का ये फिल्म और ये गाना जो लिखा था शैलेंद्र जी ने, बहुत ही पॉपुलर उस समय रहा और आज भी इस गाने को सुनकर उतनी ही ताजगी आप महसूस करते हो क्योंकि इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा है। और साथियों, सकारात्मक सोच ऐसा कोई वरदान नहीं है जो सिर्फ उन गुरुओं के पास होता हो या कुछ खास लोगों के पास होता हो जो जीने का तरीका सिखाते हैं। ये हर एक के द्वारा अपनाया जा सकता है। आजकल लोगों में निराशावादी विचारधारा का बीज आसानी से पनप जाने से सकारात्मक सोच एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का काम लगता है जिसका आप सहारा ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा शायद जिसके फलस्वरूप आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन सकते हैं। एक सुझाव मैं अभी देना चाहूंगा, अपने रवैये पर नियंत्रण रखें। कई बार आपका ये प्रण करना कि आप कुछ नकारात्मक नहीं सोचेंगे और अपने आसपास फैली नकारात्मकता पर विजय होंगे, जिंदगी को देखने के आपके नजरिया को एक नई दिशा देता है। लोग हमेशा दूसरों को अपनी जिंदगी चलाने का मौका देकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको हर हालत में ऐसा करने से बचना चाहिए और आप अपने जीवन से जुड़े सारे विशेष महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने चाहिए, तभी आप खुश रह सकेंगे। जी हाँ, और तभी आपके दिल से ये गीत बजने लगेगा।

जी हाँ, कहते हैं अच्छे लोगों की एक खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वे याद रह जाते हैं। मैं हूँ आपका हमसफर सनी। जी हाँ, आशा भोसले का आवाज, रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, ये रास्ते हैं प्यार के, फिल्म से आप अभी सुन रहे। 1963 का ये बहुत ही खूबसूरत गाना था जिसके लिरिक्स इस तरह के थे, राहों में मेरे फूल है, तारे है निगाहों में। बहुत खूबसूरत ये गीत के शब्द है, इस गीत के बोल थे, यही है सकारात्मक ऊर्जा। आइए आगे दूसरा टेक्निक के बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। दूसरा टेक्निक ये है कि ध्यान कर। वैज्ञानिक ये आज मानते हैं कि ध्यान के वक्त जब दिमाग किसी विशेष विचार की ओर केंद्रित रहता है तो ऊर्जा बिखेरती है। ये ऊर्जा इंसान के अंदर मजबूती लाती है जिससे वो आम जीवन में मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला करने में सक्षम होता है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश जरूर करें। किसी अंधेरे कमरे का चुनाव करें जहां बाधाएं ना हो और आंखें बंद कर गहरी सांस लें। अपने दिमाग से ये सारे विचार निकाल दें। शुरुआत में ये प्रक्रिया मुश्किल लगेगी जरूर, पर जैसे ही प्रैक्टिस होती जाएगी ये काफी आसान हो जाएगा और आप बिल्कुल ध्यान मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। और ऐसा करने से धीरे धीरे आपके सारे नेगेटिव भाव खत्म हो जाएंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। आइए आगे एक और सुपर डुपर हिट गाना जो अक्षर आ से शुरू होता है, जिसे लिखा है शैलेंद्र जी ने और रफी साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत, 1956 का।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। इंतजार कभी गम देता है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा हो तो गम और खुशी दोनों में समान भाव आपके अंदर रहेंगे और समान भाव रखने में हमें मदद मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा बैलेंस करता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, चाहे वो पल खुशी का हो या गम का हो, लेकिन आप मस्त मौला बने रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और टेक्निक, तीसरा टेक्निक के बारे में जानते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से मिले। इस जगत में हर एक इंसान के पास किसी भी विषय को लेकर अपनी एक विचारधारा होती है। सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति से मिलने से आपकी सोच और उद्देश्य भी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगी। जब नकारात्मक सोच रखने वाले लोग आपकी जिंदगी में सकारात्मकता को निकाल देते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक वाइब्रेशन देते हो। आपको अपने आप में परिवर्तन जरूर महसूस होगा। वैसे कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए एक और खूबसूरत गीत 1957 का 9-2-11 फिल्म का, जिसे देवानंद और कल्पना कार्तिक पर फिल्माया गया था। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और आशा भोसले और रफी जी ने आवाज दिया था। संगीत शंकर जयकिशन का। आशा करता हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर देगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। इसीलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आशा करता हूँ आप इस गाने को सुनकर सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। सकारात्मकता का मतलब है कैसी भी बात हो लेकिन आपकी खुशी बनी रहे। तो आइए अब चौथी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। अपने लक्ष्य पर टिके रहें, अपना लक्ष्य अपनी दिली अभिलाषा के अनुसार ही चुने, उस पर हमेशा टिके रहें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उन पर विश्वास करना और उनको पाने के लिए मेहनत करना सीखे। दुनिया को आपको देने के लिए कई नई दृष्टिकोण हैं और इनको अगर आप खुले दिमाग और आशावादी सोच रखते हुए अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। एक बार आपने इसे पा लिया तो आप नए जोखिम उठाने की चुनौती ले पाएंगे। हर छोटे या बड़े लक्ष्य को पाने के बाद आप में अपनी क्षमता को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आइए एक और गीत 1957 जो 9/2/11 फिल्म का ही है, जिसे देवानंद और कल्पना कार्तिक पर फिल्माया गया था। गीतकार बजरू सुल्तानपुरी और आशा भोसले व किशोर कुमार की आवाज में सचिन देव बर्मन का संगीत का ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपके अंदर फिर से नए सकारात्मक ऊर्जा को भर देगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। इसलिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। प्यार हो, मस्ती हो, लेकिन उसके साथ एक सात्विकता हो, एक सत्व प्रधानता हो, वो हर किसी को अच्छा लगता है। नफरत गुस्सा का अंश ना हो तो उसे ही सकारात्मक ऊर्जा कहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं पांचवी टेक्निक के बारे में। जी हाँ, अपनी मानसिक रचना में बदलाव लाए। किसी भी सिचुएशन में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, ये आपके सोचने की शक्ति में अंतर ला सकता है। किसी विशेष मुश्किल सिचुएशन में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना उस सिचुएशन को आसान बना देता है और आप आसानी से उससे उभर भी पाते हैं, जबकि नकारात्मक विचारधारा से मुश्किल जरूरत से ज्यादा बड़ी दिखती है। आपके सोचने के तरीके में बदलाव से आप दुनिया को नए नजरिया से देख पाएंगे और आप देख पाएंगे कि दुनिया कितनी सुंदर है, जिसकी आज तक आपने कल्पना भी नहीं की थी। समझे बंधु, हम कभी कभी सोच लेते हैं कि मैंने जीवन को अच्छी तरह समझ लिया है। नहीं बंधु, अभी समझना है। जब तक आपके अंदर से ये डस्ट जैसे नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या या आवेश, कोई भी नेगेटिव है, तो अपने जीवन को अभी तक नहीं समझा। तो आइए इसे एक गीत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉन फिल्मी गाना जो लता जी का गाया हुआ है, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत से सजा ये गीत, जो आपको जीने का नया अंदाज सिखाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप दिल से इस गाने को सीखिए, देखिए एक सकारात्मक ऊर्जा और कुछ करने की क्षमता आपके अंदर आई जाएगी। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।

इंसान की समझ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सकारात्मक ऊर्जा की। शायद लता जी का ये बढ़िया गीत सुनकर अभी तो आप सकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल रसमय यानी भरपूर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो SMS जरूर करें। तो आइए अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 6 आखिरी इस एपिसोड का। देखिए, अपने स्वभाव पर सवाल उठाइए। किसी भी बदलाव का प्रतिरोध करना इंसान की फितरत में शामिल होता है, पर जब आप अपने आप पर सवाल उठाएंगे कि आखिर इस प्रतिरोध का मकसद क्या है, आपको अपने आप मुश्किल इतनी बड़ी नहीं दिखेगी जितना आपने सोच रखा था। इसलिए अपने मकसद पर सवाल उठाना आपके रक्षात्मक स्वभाव को कम करेगा और आपको संभावनाओं को देखने की शक्ति देगा ताकि आपका अनुभव बढ़ सके। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सकारात्मक सोच सकारात्मकता लाती है, जबकि प्रतिकूल सोच रखने वाले नकारात्मकता को अपने पास बुलाते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच कर आप अपने आप को नई संभावनाओं के लिए खुला रख रहे हैं और अपनी जिंदगी जीने योग्य बना रहे हैं। आपने आसान नहीं लेकिन सही रास्ता चुना है। तो मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और ओल्ड इज गोल्ड मेलोडीज के साथ। तब तक याद रखिएगा दुआओं में शब खैर, सलाम, नमस्ते।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर है, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मोहब्बत करके जो

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा।

0: इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी. ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे. देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: बच्चों कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: लग रहा है सैंडी की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज।
2: हाँ
1: मुझे भी लग रहा।
0: क्या हुआ सैंडी?
2: कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही है।
0: कभी कभी गर्मियों के दिन में तबीयत खराब हो जाती है।
2: हाँ ये बात तो है।
0: तो रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओ।
1: ज्यादातर ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है।
0: ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है, ये तो है।
2: और आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसीलिए।
0: ट्रैवल अगर गर्मियों में किया जाए तो फिर तो बॉडी का सारा पानी सूख जाता है। बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और आराम की।
2: हाँ दीदी
0: है ना। अच्छा चलो, आज तुम ट्रैवल करके आए हो तो चलो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
1: ओके
2: ओके।
0: तो तुम लोग की फेवरेट जगह, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है?
1: दिल्ली, मेरी माउंट आबू।
0: माउंट आबू?
1: हाँ।
0: और भुवना?
3: मेरी तो कूर्ग।
0: कूर्ग, ये कहाँ पे है?
3: कर्नाटका।
0: कर्नाटका में? क्या वो आपके घर के पास है?
3: नहीं।
0: आप कूर्ग घूमने कब गए थे?
3: लास्ट समर हॉलीडेज गई, 2015
0: में। अच्छा, कितने टाइम के लिए और किसके साथ गए थे?
3: मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और अंकल के साथ गई।
0: अरे वाह। और वहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
3: मुझे वहाँ सबसे अच्छा वो क्लब लगा जहाँ हम रुके थे, क्योंकि वह स्विमिंग पूल इतना अच्छा था कि हम दिन भर वही थे। और नेक्स्ट डे हमने एक तलकावेरी, एक प्लेस है जहाँ कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, वहाँ गई। वहाँ का फॉग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मोमेंट थी वो जब हम महसूस करते हैं। वो बहुत कूल था वह जगह, हिल स्टेशन है ना इसलिए।
0: अच्छा वो एक हिल स्टेशन है।
3: हाँ
0: इसीलिए वहाँ पे ठंडी होगी।
3: और
0: आपने इतने सारे दिनों में वहाँ पे क्या क्या देखा?
3: कॉफी एस्टेट्स, फिर बहुत सारे टेम्पल्स देखा मैंने, और एक रिवर के पास गई जहाँ हम खेल रहे थे पानी के साथ में और मेरे भैया।
0: अच्छा तो सबसे पहले आपने क्या बोला?
3: कॉफी एस्टेट।
0: कॉफी स्टेट्स, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा?
3: मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज और कॉफी प्लांट्स देखी मैंने। कॉफी के पत्ते जैसे निकालते वो स्मेल बहुत अच्छी।
0: क्या आपने वहाँ कॉफी पी?
3: नहीं, वो सीजन नहीं था ना।
0: अच्छा, मतलब सिर्फ कॉफी को बनते हुए देखा और बहुत सारे टेम्पल्स देखे।
3: हाँ।
0: अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, घूमने का मन कर रहा है ना सैंडी?
2: हाँ दीदी,
1: सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी वहाँ घूमा है।
2: चले।
0: हाँ यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो रही है, ठंडी जगह जाने में तो मजा आता है। और सैंडी तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली।
0: दिल्ली? दिल्ली तुम कब गए थे?
2: इसी वेकेशन में।
0: इसी वेकेशन में गए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा?
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल? हाँ लोटस टेम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोटस की शेप का नजर आता है दूर से देख के।
2: हाँ।
0: और बताओ दिल्ली में कौन कौन सी जगह तुमने देखी?
2: कुतुब मीनार, फिर इंडिया गेट और अक्षरधाम, कालका मंदिर, बहुत सारी जगह घूम लोग हमने।
0: मतलब बहुत सारे मंदिर तुमने घूमे। और उसमें से सबसे फेवरेट जगह
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल लगी।
2: और कुतुब मीनार।
0: और कुतुब मीनार लगी। हाँ।
1: कुतुब मीनार तो कभी भूल ही नहीं सकता।
2: नहीं।
0: अच्छा कुछ स्पेशल अलग रहा है कुतुब मीनार के साथ?
2: हाँ।
0: क्या
2: वहाँ पे काफी एंजॉय किया मैंने और पंकज ने।
1: वहाँ हमें एक नए फ्रेंड भी मिले जो फॉरेन के थे।
0: अच्छा वहाँ आप लोग नए फ्रेंड्स मिले इसीलिए वो जगह स्पेशल। हाँ। हो गए। और दिल्ली में बस इतनी जगह गए? रेड फोर्ट नहीं गए?
1: रेड फोर्ट
2: गए थे ना, फिर क्लब भी गए, फिर मॉल भी गए, बहुत सारे
0: मॉल गए।
2: हाँ वर्ल्ड स्क्वायर, एमएक्स मॉल, बहुत सारे मॉल घूमे।
0: दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं। और मेट्रो में ट्रैवल किया कि नहीं?
2: खूब
1: मेट्रो में तो
2: पूरे दिन मेट्रो में, मेट्रो कार्ड बनवाया, पूरे दिन मेट्रो में घूमे।
0: मेट्रो में घूमने में मजा आता था
2: बहुत। पंकज तो बोले यही रुक जाते हैं,
1: हमें तो ऐसा लगता था कि मेट्रो में ही अपना घर बना ले।
0: इतना अच्छा लगता था मेट्रो में। और इंडिया गेट कैसा लगा?
2: इंडिया गेट तो अच्छा ही था, वहाँ से तो अपन थोड़ा घूम भी गए थे ना।
1: वहाँ खो गए थे।
0: खो गए थे। अलग हो गए थे दोनों?
2: नहीं साथ थे,
1: रास्ता खो गए थे।
0: अच्छा वहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता खो गए थे?
1: नहीं टैक्सी स्टैंड का।
0: टैक्सी स्टैंड का। और अमर जवान ज्योति देखी कि नहीं?
1: देखी, बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा लगा?
1: हाँ, वो ज्योति हमेशा जलती रहती नहीं है।
2: और वहाँ पे इंडिया गेट में खास बात और देखी, उस पे जो जो लोग शहीद हुए हैं सबका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर।
0: और वो ज्योति हमेशा जलती रहती है।
1: दीदी वो ज्योति क्यों जलती है?
0: क्योंकि वो उन शहीदों की याद में जलाई जाती है और उनको हम हमेशा सल्यूट करते हैं।
1: हाँ।
0: हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जवानों के जो शहीद हुए उनके लिए वो ज्योति हम हमेशा जलाए रखते हैं। वो एक सिंबल की तरह है, उसको कंटिन्यू जलाया जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। और जब स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो वहाँ परेड होती है, और खूब सारी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए।
2: हाँ, ऐसे टीवी में देखा।
0: टीवी में देखा है।
2: हाँ।
0: और दिल्ली कितने दिनों के लिए गए थे आप लोग?
1: 10 दिन।
0: आप लोग अकेले गए कि मम्मी पापा के साथ?
1: हम दोनों फ्रेंड्स गए थे, दीदी के साथ।
2: दीदी के साथ।
0: दीदी के साथ गए थे। अच्छा, अरे वाह। चलो, आप लोग देश की राजधानी को देख के आए।
1: हाँ।
0: बहुत अच्छी बात।
1: हमने राजस्थान की राजधानी भी देखी,
2: जयपुर।
0: अच्छा, मतलब दिल्ली के बाद जयपुर का टर्न था।
2: हाँ।
0: तो पंकज, तुम बताओ, जयपुर में तुम्हारा फेवरेट क्या था?
1: जयपुर में मेरा फेवरेट था WTP मॉल।
0: WTP मॉल? मॉल अच्छा क्यों लगा सबसे ज्यादा?
1: वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, और उसके बाहर जो लाइट्स लगी हुई है वो बहुत स्पेशल लाइट्स है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को।
0: मतलब कुछ कलरफुल लाइट्स?
1: कलरफुल लाइट्स है, बहुत अच्छी।
0: अच्छा, तब तो देखना पड़ेगा। और जयपुर में क्या क्या देखा?
1: और जयपुर में तो कुछ खास नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया।
0: हवा महल नहीं देखा?
1: नहीं।
0: अच्छा, जयपुर में हवा महल है। और जयपुर को पता क्या कहते हैं?
2: पिंक सिटी।
0: और पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को?
2: वहाँ की सारी दीवारें गुलाबी गुलाबी नजर आती
0: है। हाँ। और पुराना जयपुर देखा आप लोगों ने?
1: हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा।
0: मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय किया।
2: हाँ।

0: और भुवना, मैंने सुना है आपने बहुत सारी जगह घूमी है।
1: हाँ।
0: क्या आप कभी कंट्री के बाहर भी गए हो?
1: हाँ, मैंने यूकेजी में मस्कट गई।
0: मस्कट गए हो, तो आपको कुछ याद है मस्कट का?
1: मुझे लूलू मॉल याद है।
0: मॉल याद है, और वहाँ पे तो आप बच्चे होगे तो आपने खूब एंजॉय किया होगा।
1: हाँ,
0: है ना? और इंडिया में आप कहाँ कहाँ गए हो?
1: मैं भी राजस्थान गई, मेहरानगढ़ जोधपुर में, हवा महल, कुंभलगढ़, गुरु शिखर।
0: इतनी सारी जगह?
1: मैंने वो अरावली माउंटेन्स गई वहाँ, और मैंने जब ऊपर की इतना हवा रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जे बहुत प्लेजेंट था, और मैंने एक राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी।
0: अरे वाह, राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी, कलरफुल कलरफुल।
1: हाँ,
0: वहाँ पे आप शाम को गए होगे, सनसेट देखा कि सनराइज देखा?
1: सनसेट।
0: सनसेट देखा, कैसा लगा सनसेट देखने में?
1: बहुत अच्छा।
0: और कौन सी जगह? जोधपुर गए आप? जोधपुर कैसा लगा?
1: वो तो बहुत ब्लू सिटी है, तो इसलिए बहुत कूल रहा।
0: कूल रहा। वहाँ पे क्या क्या देखा?
1: मेहरानगढ़।
0: मेहरानगढ़, और वो क्या है?
1: वो एक महल है।
0: अच्छा, महल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
1: जब हम छत में गए, वहाँ सब ब्लू सिटी दिख रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: मतलब महल की छत से पूरी सिटी ब्लू नजर आ रही थी?
1: हाँ।
0: अरे वाह, फिर तो व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और राजस्थान में आप कहाँ गए?
1: मैंने
0: कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
1: हाँ,
0: है ना? उनका जन्म स्थान आप देख के आए?
1: हाँ।
0: और वहाँ तो बहुत ऊपर चल के जाना पड़ता है ना?
1: हाँ।
0: तो थके नहीं?
1: नहीं, मैंने एक वंडर भी देखा, राजस्थान का बादल महल।
0: अच्छा, और वो वंडर क्या है?
1: जहाँ हम, वो बहुत ऊपर है, हमें बहुत तेज चढ़ना पड़ेगा, और जब हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ हम बादल को छू सकते हैं।
0: वहाँ से सिर्फ बादल नजर आते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा था ना? बादल महल तो मैंने भी देखा। और बताओ, कहाँ कहाँ घूमे हो पंकज?
2: और हम दिल्ली में अक्षरधाम घूमे।
0: अच्छा, हाँ, अक्षरधाम को हम कैसे मिस कर सकते हैं?
2: बहुत स्पेशल जगह है वो भी।
0: स्पेशल जगह है,
3: खास करके वाटर सुनाइट का।
0: आप लोगों ने वो देखा?
2: हाँ, हाँ। बहुत अच्छा।
0: क्या क्या देखा उसमें, हमें बताओ तो।
2: वाटर शो ऐसा है कि जब वहाँ फवारे से वाटर निकलता है, और ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक चल रही है और उस पे वो वाटर डांस कर रहे हैं।
0: अच्छा।
3: हाँ जी।
0: और क्या उसके पहले उसमें कोई थीम भी होती है? लाइट एंड साउंड शो देखा आप लोगों ने?
2: हाँ, वही लाइट एंड साउंड शो कहते हैं उसको।
0: उसमें एक बार तो दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का पूरा शो भी दिखाया गया था। मेरे ख्याल से अलग अलग थीम पे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है।
2: हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था।
0: हाँ, और वाटर और म्यूजिक के थ्रू वो थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
3: काफी इंटरेस्टिंग था।
0: काफी इंटरेस्टिंग था ना, मजा आया
3: बहुत।
0: और वहाँ पे वो जो बड़ी सी जगह है जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, खुला खुला आसमान के नीचे इतने सारे लोगों के साथ भी कितना मजा आता है ना।
2: बहुत अच्छा था। और वो खास करके टेम्पल जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है।
3: वहाँ की कैंटीन भी अच्छी।
2: इसे तो हमेशा खाने का ही।
0: नहीं, अच्छी बात है, अगर जगह अच्छी और खाना भी अच्छा हो तो फिर डबल डबल अच्छा हो गया ना।
3: मैं पहला कैंटीन नहीं था कहीं भी।
0: और कहाँ घूमे हो? दिल्ली के अलावा कहीं घूमने गए हो?
3: कोटा।
0: कोटा, कोटा में क्या देखा?
3: मैंने कोटा में वहाँ पे एक परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना अपने, जो लाइटें आती पूरे राजस्थान में, वो देखा है।
0: अच्छा, उसको कैसे बनाते हैं आपने?
3: हाँ,
0: देखा?
3: हाँ, वहाँ पे अंदर गए थे हम, स्कूल से गए थे जब घूमने गए थे, तब स्कूल से कुछ प्रोग्राम था हमारे जिम्नास्टिक होता है, तो उसमें हमारी टीम गई थी। तब सर में 6 लोग थे, तब सर हमको घुमाने ले गए, तो वहाँ पे काफी अच्छा है, कुछ चंबल करके कोटा में है, उस पानी से लाइट बनता है वहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग है।
0: पानी से लाइट बनती है? अरे वाह।
3: अपनी जात राजस्थान में सब जगह लाइट वहीं से आता है, परमाणु ऊर्जा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज देख के आए आप। और कोटा में तो कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना?
3: हाँ, बहुत।
0: मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं?
3: स्टूडेंट। और कोटा में खास बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा है कि घर को भी स्कूल बना सकते हैं।
0: घर को भी स्कूल बना सकते हैं?
3: हाँ।
0: वो कैसे?
3: क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी, बहुत पढ़ाई काफी अच्छी है कोटा की।
0: पढ़ाई अच्छी है,
3: नॉलेज बहुत काफी है कोटा में।
0: लेकिन घर को स्कूल कैसे बना सकते हैं?
3: जैसे ना कि मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा है
2: मतलब अगर किसी घर में कोई एजुकेटेड व्यक्ति है तो खुद का क्लास खोल सकता
0: है। हाँ। उसे अलग से परमिशन की जरूरत नहीं,
3: नहीं गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा वहाँ पे। ये हमने बहुत जब जहाँ रुके थे पास में कोचिंग सेंटर था, इतनी भीड़ हम तस्वीर से बस वही देखते थे।
0: वहाँ पे तो देश भर से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं ना। हाँ। दूर दूर से आते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके नहीं है?
3: नहीं,
2: हम तो बस देखने गए थे।
3: हम तो बस खेलने के लिए गए थे। हमारा वहाँ पे उमेश सिंह स्टेडियम था, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा शो, मतलब जिन मास्टर का शो था हमारा, तो सुबह जाना होता शो करने के लिए और शाम को।
0: अच्छा।
3: क्योंकि मैं जिन मास्टर में रह चुका हूँ ना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खेलने के बहाने आपको घूमने को मिल गया। हाँ,
3: पांचवा रैंक आया था हमारा, हमारी टीम का।
0: अरे वाह, इस पे हम लोग तालियां बजाते
3: हैं। थैंक यू।
0: तो ये पता है बच्चों, ये भी अच्छी बात है, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी आपको घूमने की कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है।
3: हाँ।
0: है ना। और पंकज, आप और कहाँ घूमने गए हो? जब आप छोटे थे क्या तब कहीं घूम के आए?
2: जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ घूमने गया था।
0: इतने छोटे भी नहीं,
2: ऐसी कोई मोमेंट याद नहीं है।
0: अच्छा, अपने आप का जो घर है, आप लोग आप रोड में रहते हो, ये भी तो टूरिस्ट प्लेस है, माउंट में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।
3: हाँ दीदी।
0: तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ, यहाँ तो आप लोग बहुत घूमे होंगे।
2: यहाँ तो हमने हर जगह घूम रखा है।
0: तो यहाँ की जगह के बारे में कुछ बताओ।
2: यहाँ मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था।
0: और वहाँ पे क्या है?
2: वहाँ पे बस एक मंदिर है, बहुत बड़ा है और फेमस मंदिर है।
0: फेमस है, बहुत पुराना है।
2: और वहाँ एक सैंड की हिल है।
0: सैंड की हिल है। अच्छा,
3: पूरा रेती रेत।
0: अच्छा,
2: इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
0: और भुवना, तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है?
1: चार मीनार।
0: चार मीनार। पहले हम सबको बताओ आपका घर कहाँ है?
1: मेरा घर तो थोड़ा दूर है चार मीनार से, मारेटपल्ली में।
0: अच्छा, और वहाँ कौन कौन सी जगह है जो आपने घूमी है?
1: मैंने चार मीनार घूमा, फिर गोलकंडा।
0: गोलकंडा क्या है?
1: वो एक महल है जहाँ राजा रहते थे, वो एक कैपिटल होता था हैदराबाद का पहले।
0: हैदराबाद का कैपिटल। ओके, और वहाँ क्या क्या चीजें हैं?
1: वो एक्चुअली रुइंड हो गई, हाफ तो रुइंड हो गई, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं देखा, फिर देख के आ गई बस
0: देख के आ गई। और आपके घर में कौन कौन सी घूमने की जगह है?
1: जब मैं छोटी थी मैं चेन्नई गई, वहाँ क्वींसलैंड गई मैं।
0: क्वींसलैंड?
1: बहुत छोटी थी।
0: वो जगह आपको याद है?
1: हाँ, फोटोज में गई। और मैंने जू गए।
0: जू गए? जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं।
1: हाँ।
0: आपका फेवरेट कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट रैबिट।
0: रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं। और पंकज सैंडी, अपने शहर के बारे में हमें और नहीं बताओगे?
3: माउंट आबू हमारा काफी अच्छा है।
2: हमारा शहर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है,
0: क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन।
3: हाँ, माउंट आबू। तो माउंट आबू को उन्हें राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं।
0: राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। हाँ। अरे वाह। और कौन कौन सी घूमने की जगह है? अगर कोई आपके शहर घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ लेके जाओगे?
3: दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
0: दिलवाड़ा का जैन मंदिर,
3: जिसे इतिहास में पढ़ा भी जाता है।
0: वहाँ की खासियत क्या है सैंडी?
3: खासियत है वहाँ की महावीर भगवान की मंदिर है, 880 किलो सोने की है।
0: अच्छा। और वहाँ की जो कारीगरी
3: सुपर,
0: वो तो देखने लायक
3: है। उन्हें लोग बुक्स में पढ़ते हैं और देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं।
0: वहाँ की एक एक दीवार में अलग अलग नक्काशी और कारीगरी है।
2: इस मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ
3: कारीगरी नहीं की गई।
0: और कितना सुंदर और बड़ा मंदिर है।
3: हाँ दीदी, बहुत।
0: दिलवाड़ा मंदिर तो सच में बहुत।
3: और कहा जाता है कि दूसरे देश के लोगों ने शायद उसे वार करने की कोशिश करी, इस मंदिरों पे तोड़ने की कोशिश करी, पर उस मंदिर में कुछ भी खरोच भी नहीं आई।
0: पर एक खरोच भी नहीं आई,
3: ऐसा मेरे पापा से सुना मैंने।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सी कहानियाँ हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं।
3: हाँ।
0: और कौन कौन सी जगह है?
3: अचलगढ़, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग।
0: अच्छा, अचलगढ़ आप लोग गए हो?
3: हाँ, मैं एक बार गया था फैमिली के साथ। हाँ।
0: माउंट में तो वैसे कहीं भी घूमने चले जाओ अच्छा।
3: अचलगढ़ में पापा बता रहे थे कि वहाँ दो भैंस है जो वहाँ पे दूध दही की नदियों बहती थी।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: मतलब है कि दूध घी दही सब हाँ, कुछ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।
3: हाँ, और वो दो भैंस पी जाते हैं, तो उनको शायद किसी राजा ने गोली मार दिया था, तो वो पत्थर के बन गए थे, अभी भी वहाँ पर है।
0: अच्छा, ऐसी कहानी मशहूर है।
3: हाँ, और हम लोग देख के अभी भी वो भैंस है, दो भैंस वहाँ पर
0: जो पत्थर की भैंस है वो हाँ, वहाँ पे,
3: और अभी भी गोली मारी उसकी निशानी पे है।
0: अच्छा
3: हाँ,
0: ये तो देखना पड़ेगा,
2: मैं भी देखना चाहता हूँ।
3: ठीक है, चलो।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर में घूमने का मौका मिले, किसी एक जगह जाने का मौका मिले, देश में या विदेश में, तो वो जगह कौन सी होगी?
3: मेरी तो अमेरिका।
0: अमेरिका? और अमेरिका क्यों?
3: बस अमेरिका अच्छा लगता है, अमेरिका जाना।
2: टीवी में अच्छा लगता है।
3: टीवी अच्छा लगा।
0: टीवी में और फिल्मों में हम हाँ। अमेरिका देखते हैं, और अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए अमेरिका जाना है। और बाकी की चीजें तो अमेरिका जाके पता चलेगी
3: कैसा है।
0: तो सैंडी जब बहुत सारी पढ़ाई करके एक अकाउंटेंट बन जाएगा, फिर अमेरिका घूम के आएगा?
3: हाँ।
0: और हम सबको लेके नहीं जाओगे?
3: हाँ, अभी लेके जाऊंगा ना दीदी, बिल्कुल, पहले मैं जाके आऊंगा दीदी, अच्छा है तो ले जाऊंगा।
0: अच्छा, और पंकज?
2: मैं लंदन जाना चाहता हूँ।
0: लंदन जाना चाहते हो? लंदन क्यों जाना चाहते हो?
2: वो प्लेस मुझे नाम से ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ देखना है कि वहाँ क्या है जो इतना फेमस है वो।
0: अच्छा हाँ, लंदन का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, जब भी हम विदेश की बात करते हैं लंदन का नाम तो जरूर आता है।
2: हाँ दीदी, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ वहाँ ऐसा क्या है जो फेमस है।
0: वहाँ ऐसा क्या है जो वो इतना फेमस है, ये ढूंढने के लिए आप लंदन जाना चाहते हैं?
2: हाँ,
3: खोज करेगा पंकज।
0: ठीक है, आप दोनों साथ में जाके खोज करके आना।
3: ठीक है।
0: और भुवना, आप कहाँ जाना चाहते हो?
1: मैं पेरिस जाना चाहती हूँ।
0: आप पेरिस जाना चाहते हो? अच्छा, और पेरिस क्यों जाना चाहते हो?
1: क्योंकि मैं एक वंडर देखना चाहती हूँ इस वर्ल्ड का, ईफिल टावर।
0: अच्छा, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से एक वंडर आप देखना चाहते हो?
1: हाँ।
0: क्या किसी ने इंडिया का
1: ताजमहल
0: देखा है? देखा है? हाँ। मतलब आप आगरा गए हो?
3: हाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो गाँव जा रहे थे, बीच में आगरा ट्रेन लेट थी, तो फिर वहाँ से स्टेशन से पापा ले गए थे, 10-15 मिनट के लिए गए थे हम।
0: अच्छा, तो वहाँ पे क्या देख के अच्छा लगा?
3: सबसे मस्त वहाँ की नदी, जो पास से नदी निकल रही है, काफी इंटरेस्टिंग। वहाँ की आगरा की पूरी ताजमहल है, उसका पूरा परछाई वो नदी में दिखती है।
0: नदी में दिखती है। हाँ। और वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है। हाँ। है ना?
3: हाँ।
0: और इंडिया के वंडर की बात की, और वर्ल्ड का एक वंडर घूमना देखना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई मुश्किलें आती हैं?
3: ऐसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं।
0: जैसे?
2: जैसे कई बार खो जाते हैं रास्ता,
3: जैसे हम दिल्ली में खो गए थे।
0: दिल्ली में खो गए थे, फिर मिले कैसे?
3: हम साथ में खोए, मतलब बस रास्ता भूल गए।
0: रास्ता भूल गए?
3: तो
0: रास्ता भूल जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
3: हमने गूगल खोला।
0: गूगल खोला? हाँ, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है।
2: लेकिन
0: हाँ।
2: फिर भी मुझे एक मेन पॉइंट याद था जहाँ से हम वापस जा सकते थे।
0: इसीलिए जब आप घूमने जाएं तो
3: मैं थोड़ा डर गया।
0: आप थोड़े डर गए थे कि कहीं गलत ना चले जाए?
3: हाँ, जबकि पंकज सही आ रहा था।
0: होता है कभी कभी, जब हम डर जाते हैं तो सही भी हमें सही नजर नहीं आता।
3: हाँ, थोड़ा मैं जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ उस बात के लिए।
0: और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
3: कि पेशेंस रखना चाहिए।
0: हमें पेशेंस रखना चाहिए, और सही रास्ता खोजने के लिए इंतजार करना चाहिए। गूगल है, आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको विश्वास के पात्र लगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और कभी भी एक व्यक्ति के डायरेक्शन पर ना जाके 3-4 लोगों से वो डायरेक्शन कंफर्म करें, तभी आगे बढ़े।
3: ओके दीदी।
0: है ना?
2: हाँ दीदी।
0: उसे कहते हैं क्रॉस चेक करना। 3-4 लोग तो आपको एक साथ गलत नहीं बताएंगे।
3: हाँ।
0: है कि नहीं?
2: कुछ लोग मजाक भी करते हैं।
0: कुछ लोग मजाक कर सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोगों से आपने क्रॉस चेक किया तो मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच जाओगे। है ना?
3: हाँ दीदी।
0: और दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है कि फैमिली के साथ?
3: दोस्तों के साथ।
0: और पंकज?
2: फ्रेंड्स के साथ।
0: भुवना?
1: फैमिली के साथ।
0: भुवना को फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। फैमिली के साथ मजा नहीं आता पंकज और सैंडी को?
3: मजा आता है पर उतना नहीं,
0: क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती करते
3: हैं।
0: लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ वो टाइम हमें घर पे कभी कभी नहीं मिल पाता। सब लोग अपने अपने जॉब में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जब भी फैमिली को लेके जाओगे तभी भी और इन्जॉय करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करना।
3: ठीक है दीदी।
0: और सैंडी भी हमें कोई जगह के बारे में बताने वाले है क्या?
3: हाँ, अंबाजी मंदिर, जो कि हम पैदल गए थे घूमने के लिए।
0: पैदल कितनी दूर?
3: यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है। मैं और पंकज जब अंबाजी मंदिर में नवरात्रि चलते हैं तो काफी लोग पैदल जाते हैं, अच्छी मान्यता होती है, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम पैदल पैदल गए थे।
0: पैदल पैदल गए थे?
3: हाँ, फिर सुबह जाके वहाँ हालत खराब हो गई थी, हम लोगों की दर्शन तक ये नहीं सो गए,
0: मतलब इतना चले कि थक गए।
3: थक गए
2: हाँ, तो बहुत मजा आया।
3: मजा आया
0: हाँ। दोस्तों के साथ सफर में भी ज्यादा मजा आता है घूमने से ज्यादा।
3: फर्स्ट टाइम पैदल पैदल गए थे हम लोग कहीं।
0: पैदल पैदल
3: पता
0: नहीं लगा था आप लोग को पैदल चल के जाने में?
3: रात को 8 बजे निकले थे ना, फिर
2: 5 घंटे
0: पैदल चले थे
3: लगातार।
0: ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सी बातें की।
3: हाँ दीदी।
0: अभी तो तुम लोग छोटे छोटे हो और इतनी सारी जगह घूम के आए हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो और जगह जब घूमने जाओगे तो इंजॉय करने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश करना।
3: हाँ
2: दीदी, अभी तो सिर्फ इंडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
0: बाद में विदेशों की भी करेंगे।
3: हाँ।
0: और जहाँ भी जाएंगे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वो हमेशा हमारे और भी काम में आए। ओके, आज की ये बातचीत हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम लोग एक बैंक ऑफिसर की बात करने वाले हैं, कैसे आप एक बैंक ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बहुत ही सुंदर एक सफल बैंक अधिकारी की कहानी आपको सुनाते हैं। साथियों, रवि एक साधारण परिवार से था। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ जो है घर का काम संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन सपने बड़े थे। कॉलेज के दिनों में रवि ने तय कर लिया था कि वो बैंक अधिकारी बनेगा, ताकि परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सके और समाज के लिए कुछ कर सके। ग्रेजुएशन के बाद रवि ने बैंक की तैयारियां शुरू की। दिन में वो ट्यूशन पढ़कर घर का खर्च चलाता था और रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार सफलता असफलता मिली, परीक्षा में नंबर कम आए, लेकिन उन्होंने इस बात को गौर नहीं किया और हार नहीं मानी। पढ़ाई जारी रखी। हर असफलता के बाद प्रयास करते ही सफलता मिल जाती थी, और हर असफल प्रयास ने उसे और मजबूत बनाया। आखिरकार वो दिन भी आया जब रवि का चयन प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में हो गया। पहली पोस्टिंग एक ग्रामीण शाखा में हुई। वहां उसने देखा कि लोग बैंक से डरते हैं और कागजी काम को लेकर परेशान रहते हैं। रवि ने धैर्य रखा और मुस्कान के साथ सबकी मदद की। किसानों को सही प्राण जानकारी दी, लोन की जानकारी दी, महिलाओं को बचत योजनाओं से जोड़ा और बुजुर्गों को डिजिटल बैंकिंग सिखाई। बस फिर क्या था, धीरे धीरे बैंक लोगों का भरोसामंद स्थान बन गया। रवि को एहसास हुआ कि बैंक अधिकारी बनना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी है। उसकी सफलता आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है और गांव वालों के वो चहेता बन गए हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी देर में बैंक अधिकारी कैसे बने। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और ये आज हम लोग बात करने वाले हैं खास एक ऐसे ट्रेड के बारे में, बैंक ऑफिसर का। जी हाँ, करियर के रूप में बैंक अधिकारी कैसे बने, इस विषय को लेकर हम आपसे आज जुड़ रहे हैं। साथियों, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में जब युवा एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी करियर की तलाश में रहते हैं, तब बैंक अधिकारी, बैंक ऑफिसर का कार्य करने में, करियर बनाने में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक माना जाता है। बैंकिंग सेक्टर न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है साथियों, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, विकास के अवसर और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर भी देता है। भारत में बैंक अधिकारी बनने का सपना लाखों युवा देखते हैं, क्योंकि ये करियर सरकारी नौकरी जैसी सुरक्षा और निजी क्षेत्र जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों का संतुलन प्रदान करता है। साथियों, बात करते हैं बैंक अधिकारी कौन होता है ना। बैंक अधिकारी वो पेशेवर होता है जो बैंकों के संचालन, ग्राहक की सेवा, वित्तीय लेनदेन, प्राण वितरण, निवेश, जोखिम प्रबंधन और प्रशासनिक कार्य को संभालता है। बैंक अधिकारी बैंक की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, जो बैंक की नीतियों को जमीन पर लागू करते हैं। बैंक अधिकारी की भूमिका केवल काउंटर पर बैठकर काम करने तक सीमित नहीं होती साथियों, बल्कि इसमें निर्णय लेना, टीम का नेतृत्व करना, ग्राहकों को मार्गदर्शन देना और बैंक की विश्वसनीयता बनाए रखने जैसे जिम्मेवारियां शामिल होती है। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर विस्तार से। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, हम लोग बैंक ऑफिसर के रूप में आज कैसे काम कर सकते हैं इस पर बातें कर रहे हैं, इस करियर को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं इस पर बातें हो रही है। भारत में देखिए, बैंकिंग सेक्टर का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंक न केवल पैसे के लेन देन का माध्यम है, बल्कि वे उद्योगों को त्राण देकर विकास में योगदान करते हैं, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, रोजगार सृजन में मदद करते हैं, डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण बैंक अधिकारी का पद राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। साथियों, बैंक अधिकारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। और आज तो बैंक के वजह से इतने सारे जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आप देखते हैं, लोगों को भी घर खरीदना आसान हो गया है। फ्लैट्स वगैरह लेते हैं तो लोन पे लेते हैं, तो ये सारी चीजें बैंक के बिना हो नहीं सकता। बैंक के कारण लोगों को सुविधा मिल जाती है, लोन मिल जाता है और वो अपने सुख के साधन और रोटी कपड़ा और मकान का साधन अच्छे से जुटा पाते हैं। तो आइए बात करते हैं बैंक अधिकारी के प्रकार। बैंकों में बैंक अधिकारी विभिन्न अलग अलग पदों पर कार्य करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ, बैंक में अधिकारी स्तर की एंट्री पोस्ट। दूसरा है परीक्षण के बाद स्थायी नियुक्ति होती है। तीसरा आता है मैनेजमेंट और लीडरशिप की जिम्मेवारी। दूसरा एक बैंक ऑफिसर होते हैं क्लर्क से पदोन्नति अधिकारी। अनुभव के आधार पर अधिकारी बनते हैं, बैंकिंग प्रक्रिया की गहरी समझ। तीसरा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसओ जिसको कहते हैं, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर। फिर आता है चौथा शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर, पूरी शाखा की जिम्मेवारी, स्टाफ, बिजनेस और ग्राहक प्रबंधन। तो ये सारी चीजें एक बैंक ऑफिसर की होती है। तो अलग अलग चार सेक्टर है, उसमें अलग अलग पोजीशंस भी होते हैं। साथियों, ये थी बैंक में किस तरह से आप काम कर सकते हैं उसके बारे में थी, किस किस प्रकार के बैंक अधिकारी होते हैं उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी। आइए आगे हम बात करेंगे योग्यता के बारे में कि बैंक अधिकारी बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको पढ़ाई, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, स्नातक। दूसरा, विषय कोई भी हो सकता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। तीसरा आता है कुछ पदों के लिए विशेष डिग्री आवश्यक होती है, जैसे एसओ के लिए। आयु सीमा जो है सामान्यता 20 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिल जाती है। अन्य आवश्यकताएं हैं, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ, बैंकिंग और वित्त में रुचि। तो साथियों, ये सारी चीजें आवश्यक है एक बैंक अधिकारी बनने के लिए। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका। बैंकिंग सेक्टर में कैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस पर बातें हो रही हैं। करियर बनाने के लिए, एक बैंक ऑफिसर बनने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में बातें हो रही है। साथियों, आइए, पढ़ाई के बाद आपको कुछ परीक्षाओं का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, तो बैंक अधिकारी बनने के लिए परीक्षाएं अवश्य होती हैं। कई लोग काम करते हुए परीक्षाएं देते हैं और कई लोग पहले से परीक्षाएं देकर डायरेक्ट अधिकारी भी बन जाते हैं। तो बैंक अधिकारी बनने की जो परीक्षाएं हैं, सबसे पहला आता है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS PO या IBPS SO। दूसरा है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI PO या SBI SO। तीसरा आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI Grade B ऑफिसर, RBI असिस्टेंट ऑफिसर प्रमोशन। तो ये सारे एग्जाम्स होते हैं, जिसके बाद फिर चयन प्रक्रिया शुरू होती है, सिलेक्शन प्रोसेस। साथियों, शुरुआत में प्रारंभिक जो प्रीलिम्स होते हैं, शुरुआती परीक्षा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है। दूसरा है मुख्य परीक्षा मेन, जिसमें उन्नत गणित, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आता है जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एंड इकोनॉमी में, फिर आता है अंग्रेजी लेखन। साथ ही उसके बाद आता है साक्षात्कार इंटरव्यू, ये व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, बैंकिंग ज्ञान, करियर दृष्टि से किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। साथियों, बैंक अधिकारी के कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या होते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो, ग्राहकों के खातों का संचालन करना, प्रान स्वीकृति और निगरानी, निवेश योजनाओं की जानकारी देना, जोखिम और अनुपालन प्रबंधन करना, स्टाफ का मार्गदर्शन करना, बैंक की नीतियों का क्रियान्वयन करना, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। तो ये सारी एक बैंक अधिकारी के कार्य होते हैं, जिम्मेवारी होती है। तो आप सुनाए हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को। साथियों, बैंक अधिकारी के लिए आवश्यक जो स्किल्स है, चलिए पढ़ाई हो गई, परीक्षाएं पास की, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपको लंबे समय तक खुशहाल बैंकिंग ऑफिसर का आनंद लेना है तो ये स्किल्स आपके जीवन में होना जरूरी है। एक बैंक में काम करने वालों के अंदर संचार कौशल, ग्राहकों और स्टाफ से प्रभावी संवाद करना आना चाहिए। दूसरा है विश्लेषणात्मक सोच, प्राण, जोखिम और निवेश का आकलन। तीसरा, नेतृत्व क्षमता, टीम को प्रेरित करना। चौथा, निर्णय लेने की क्षमता, तेज और सही निर्णय। पांचवा, ईमानदारी और नैतिकता, बैंकिंग की आत्मा जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। बैंक अधिकारी का कार्य जीवन संतुलन। बैंक अधिकारी का जीवन अपेक्षाकृत अनुशासित होता है, कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, हालांकि लक्ष्य आधारित कार्यों में कभी कभी अतिरिक्त समय देना पड़ता है, फिर भी ये करियर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके टाइम होते हैं और इस टाइम पे लोग फिर निकल भी जाते घर पर, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। और आज के समय में आप देखेंगे पूरा दिन बैंक जो है सर्विस देती है, आप सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आपको पूरा सर्विस मिलता है। पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन अभी बैंक ने ये सेवाएं शुरू की है और कुछ जगह पे दोनों टाइम आपको सर्विस देना पड़ता है, सुबह 10 से 1 बजे तक या फिर शाम को 5 से 7 बजे तक, ऐसी भी सर्विसेस बैंकिंग देती है। तो आजकल डिपेंड करता है किस तरह का बैंक और वहां के लोगों की सुविधाएं क्या है, क्या कस्टमर रेगुलर आना पसंद करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं तो वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। बाकी आप गांव में हैं तो वहां पर टाइम टू टाइम खुलेगा और टाइम टू टाइम बंद होगा। चलिए बात करते हैं वेतन और सुविधाओं के बातें, सैलरी और पैकेजेस। शुरुआती वेतन की बात करें, एक बैंक अधिकारी को 50 से 70 हजार रुपये महीना मिलता है। उसके बाद अतिरिक्त जो लाभ मिलता है वो डीए, डेली अलाउंस, एचआरए, ये भी हाउस रूम रेंट अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन, एनपीएस, एलटीसी, लोन में रियायत, सरकारी आवास, ये सारी चीजें आपको अलाउंस के रूप में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफिसर के बारे में। साथियों, इस करियर में जैसे कि मैंने अतिरिक्त लाभ के बारे में बताया, पे स्केल के बारे में बताया, इसके साथ पदोन्नति और करियर ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में करियर ग्रोथ स्पष्ट और सुनिश्चित होती है। जैसे कि आप यो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, उसके बाद मैनेजर, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर आता है चीफ मैनेजर, फिर आता है एजीएम, डीजीएम और जीएम। मेहनत, ईमानदारी और सीखने की इच्छा आपको ऊंचाई तक ले जाती है। बैंक अधिकारी बनने के फायदे क्या क्या है साथियों, ये अगर आपको मैं बताऊं, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा, स्थायी नौकरी, राष्ट्र सेवा का अवसर, सीखने और आगे बढ़ने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा होती है। चुनौतियां भी कुछ इस प्रकार से होती हैं साथियों, कभी कभी कुछ बैंकों में टारगेट का दबाव बना रहता है। अगर सरकारी नहीं है तो प्राइवेट बैंकों में ये ज्यादातर देखा गया है। इसके बाद ट्रांसफराइजेशन बहुत होते हैं, स्थानांतरण होता है, तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल रखना पड़ता है। इन सब के बाद सही दृष्टिकोण से ये चुनौतियां आपको मजबूत भी बनाती हैं और आपको संबल भी बनाती हैं। साथियों, बैंक अधिकारी बनने की तैयारियां कैसे करें, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, नियमित पढ़ाई करते रहें, मॉक टेस्ट कराएं, करंट अफेयर्स पर पकड़ हो, समय प्रबंधन का काम जरूर आपके अंदर हो, सकारात्मक सोच रखिए, तो आप बैंक अधिकारी बनने के लिए इस तरह की तैयारी करके रखिए तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अच्छा, बैंक अधिकारी का करियर केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, एक पहचान और एक सेवा है। यदि आप स्थिरता, सम्मान और विकास की तलाश में हैं, तो बैंक अधिकारी बनना एक उत्कृष्ट विकल्प है। ये करियर आपको न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। साथियों, अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो बैंक अधिकारी बनने का सपना जरूर साकार होता है। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, एक नए करियर को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ खाबों का सफर, जहाँ आइए आज के इस खाबों का सफर को बनाते हैं यादगार और कुछ नई बातें, नए गाने, 50s एंड 60s की ओल्ड मेलोडीज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो साथियों, आप दिल थाप के बैठिए और पूरे दिल से बैठिए और कार्यक्रम को सुनिए। और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह विभा जी भी कनेक्ट हो गए हैं। और विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपको भी स्वागत है साथ देने के लिए।
1: जी जी, शुक्रिया। कहते हैं, जिसने दी है जिंदगी और चलना सिखाया है, माँ मेरी उस भगवान का साया है, वो माँ मेरी उस भगवान का साया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको ले चलता हूँ विभा जी। आज के इस एपिसोड में सबसे पहला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं, गाना या गजल?
2: सनी, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार कहूंगी
1: जी।
2: और थीम में आपके लिए एक गजल लेके आई हूँ। ये जो एपिसोड है इसमें गजल है, जुदाई का गीत है, देशभक्ति है और मिक्सचर गाने हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है ये सुनने के लिए। आप तैयार हो जाएं। पहली गजल है, सादगी सिंगार हो गई, आईनों की हार हो गई। बहुत प्यार, बहुत ही खूबसूरत गजल है और ये सादगी पर है और ब्यूटी पर गाई गई है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो ये गजल अपने आप में मुकम्मल गजल है। दोस्तों का कारवां तो है, दोस्ती गुबार हो गई।
1: जी विभा जी, बहुत ही प्यारी सी गजल आपने याद कराई है कार्यक्रम की शुरुआत में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। तो आइए, बेकल उत्साही का लिखा ये खूबसूरत गीत अहमद हुसैन साहब का गाया, मोहम्मद हुसैन साहब और अहमद हुसैन दोनों ने मिलकर इस गजल को गाया है। तो चलिए सीधे गजल की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और गीत गजल में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि गजल आपको जो है बांध के रखता है और गीत जो है आपको बहला देते हैं, नृत्य करा देते हैं, हंसना सिखा देते हैं। तो गजल जो है हमारी जिंदगी की कुछ मुद्दे पर जो है बात होती है उसमें, और वो कहीं ना कहीं एक जो है बात पर होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये गजल सुनकर कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी की कुछ बातें याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं अभिवादी से जोड़ना चाहूंगा। कहते हैं जिंदगी का सच, जिंदगी से परेशान होने पर कुछ बातें हमें याद आती हैं, लेकिन जैसे ही हम उस सच को समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: सनी, अगला गाना है ये जुदाई का गाना है। जैसे कि ये पहली गजल भी इस बड़ी आपके दिल को छूने वाली है, ये जुदाई का गाना भी ऐसे ही दिल को छूता है। साथ की गलियां छोड़ चले, दिल रोया आंसू बह ना सके। तो इसमें प्रेमिका प्रेमी के जुदाई में अपने हाले दिल बयान कर रही है। साजन से दूर जाती हुई सजनी ये कह रही है, लब कांपे आंखें भराई, कुछ कहना था और कह ना सके।
1: जी जी जी विभा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और ये जो गाना है साजन की गलियां छोड़ चले, कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ है, लता मंगेशकर का गाया हुआ है, श्याम सुंदर जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत है। एक फिल्म आई थी 1949 में बाजार नाम से, तो उस फिल्म का ये गाना आपने याद कराया है। और ये फिल्म जो है एक इंग्लिश फिल्म का कॉपीराइट है, यानी इंग्लिश फिल्म को हिंदी में बनाया था, रीमेक किया था हिंदी में। तो आइए इस फिल्म के कलाकार जैसे कि गोपी, श्याम, याकूब खान, सुल्ताना, इन पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए मैं सीधे गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत गाना बाजार इस एल्बम का आपने सुना। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। और कहते हैं जिसके होने से रिश्तों में अलग एक जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है, वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी, उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके शायरी का मजा लेती रहती हूँ साथ साथ में। आप बहुत ही अच्छे बीच में जो ये शायरी के लफ्ज़ बोलते हैं, वो तो उनमें भी
0: जी
1: मैं खो जाती हूँ कि उसका मतलब जोड़ते हुए अपने ये अगले गाने के साथ में जा रही हूँ।
0: जी
1: देशभक्ति का गाना है, देशभक्ति, और ये मेरा फेवरेट गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप भी टिक के नहीं बैठ पाएंगे, आप तो सारा हिंदुस्तान घुमा दे गया ये गाना, इतना प्यारा गाना है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये बहुत ही उत्साह भरा गाना है और इसकी महानता का गुणगान है, देश की महानता का गुणगान है इसमें, प्रेम की भावना है। और हम कहीं भी रहें, अपनी मिट्टी से हम जुड़े रहते हैं कहीं भी रहें,
0: सही बात है, सही
1: तो
0: बात।
1: वो जो एक मिट्टी की खुशबू है ना, तो वो हमें ऐसे बोल के साथ ऐसे जोड़ती है कि हमारे पैर भी थिरकने लगते हैं और देशभक्ति की भावना पैदा होती है। और इस गाने में जैसे प्रेम की भावना है और साथ में सीख भी है।
0: जी
1: मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
0: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है। और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये गीत बहुत बार सुना होगा, तो फिर से एक बार हम लोग उसी जज्बे, उसी भावनाओं को लेकर हम इस गाने को सुनेंगे। और ये जो गाना आपने बताया, ये भाई बहन एक एल्बम आई थी 1959 में शायद, और उस समय ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इसमें एक छोटी सी कहानी है भाई बहन की बताई गई है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक अमीर लड़की जो है एक गरीब परिवार के लड़के को अपना भाई मानती है और वो उसे अपने घर बुलाती है, तो लड़के के पिता जो है उसे घर से फिर भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, एक भाई बहन का जो प्यार है, उन चीजों को मजबूती से इसमें बताने की कोशिश की है डायरेक्टर साहब ने। जीपी सिप्पी के निर्देशन में बनी ये फिल्म भाई बहन 1959 का अगला गाना आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा है। आशा भोसले का गाया, एन दत्ता का संगीत से सजा, ये गाना आपने अभी सुना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी के इस सफर में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हम लोग अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और कई बार भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं, बुरा साया उनके रहते हमें छू तक नहीं सकता, दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती हैं, दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगले गाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि ये गाना जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि उसको दुनिया की परवाह नहीं होती, उसको बस अपना एक महबूब चाहिए अपने पास। तो इस गाने के बोल में आपको यही सुनने को मिलने वाला है। साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहां। इस गाने में शरारत है, प्यार है और प्यार हो जाने का इशारा है। दो प्रेमी हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं और गा रहे हैं, मेरे साज की आवाज तुम, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना।
1: वाह जी, आशा भोसले का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया, कांच की गुड़िया इस एल्बम से है। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। और हमारे हम सफर साथी हैं विभा जी, जिनसे बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस ओल्ड मेलोडीज हम सुन रहे हैं। और अभी जो गाना आपने सुना आशा भोसले का, कांच की गुड़िया इस एल्बम से था जो 1961 में रिलीज हुई थी। और एक मजेदार बात यह है कि कांच की गुड़िया इसके एपिसोड्स भी बने, टीवी सीरियल भी इस नाम से बना था जो आपने शायद देखा होगा। आशा भोसले मुकेश का गाया गीत जो है अभी आपने सुना, साथ हो तुम और रात जवा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि इस तरह के जो खूबसूरत गाने होते हैं कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं। और शैलेंद्र साहब के बहुत ही खूबसूरत कलम से लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, कांच की गुड़िया का। तो विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना अगेन मेरे पास एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म का गाना है नटखट का, साथी हाथ बढ़ाना जी, एक जी, अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठा। और उसमें मोटिवेट किया गया है मजदूर पुल बनाते हुए इसको गा और एक दूसरे का हाथ बढ़ा रहे हैं।
1: सही बात।
2: और गाने के बोल एक एक लाइन बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। आप तो इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों से रहें।
1: क्या बात, तो क्या बात जी विभा जी, बहुत ही अच्छा जो गीत है आपने याद कराया है। दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया नया दौर इस एल्बम का है। और बहुत ही एक मोटिवेशनल सॉन्ग है ये, और ओपी नैयर का बहुत ही खूबसूरत संगीत है इसमें, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है, सुनते सुनते मजा भी आता है। और ये हेल्पिंग नेचर के बारे में इसमें बताया गया है। आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब का गाया, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है। वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है। पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होती है। पिता का साथ ही परिवार का बुनियाद होता है। आप सुना है रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। कहीं ना कहीं ये गीत सुनकर आपके पैर थिरकने लगे होंगे और मन में एक शुद्ध पवित्र भावना भी आ गया होगा कि हम एक दूसरे को कैसे मदद करें। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप अगले गाने की तरफ, विभा जी कौन सा सुनाने वाले हैं आप?
1: जी सनी, जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यहाँ खुशी होती है, साथ साथ कुछ ना कुछ उदासी भी चलती है। अगला गाना मैं लेके आई हूँ, साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझको है दिल लेके कहाँ, लेके अकेला कहाँ। इस गाने में उदासी है, अकेलापन है और दुनिया से खूब सारी शिकायतें हैं, और भगवान से भी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं, नसीब को कोस रहे हैं और कह रहे हैं, पत्थर की आस ना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं कहां।
0: जी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी जो भावना है आपने व्यक्त किया है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना है, बम्बई का बाबू, जो 1960 में रिलीज हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी। दो दोस्तों की कहानी इसमें बताया गया है, एक नाम है बाबू और दूसरा है भगत, और दोनों का बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन भगत बीच में जो है भटक जाता है और किसी एक व्यक्ति का खून करा के उसे कहता है, बाबू को जबरदस्ती खून कराने लगा देता है। खून होने के बाद जो है तुझे बहुत माल मिलेगा, ऐसा वैसा करके एक बहुत बड़े आदमी शाहजी क्या वारिस आप बनेंगे, ऐसा करके उसको फंसा देता है। तो भगत ब्लैकमेल करता है बाबू को, और ब्लैकमेल करने के बाद होता है ऐसे कि जिस व्यक्ति के साथ इनकी जो उत्तराधिकारी के बारे में बात होती है, उनकी ही लड़की से बाबू का प्यार हो जाता है। तो राज खोसला साहब का ये निर्देशन में बनी फिल्म, उनके ही डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, बम्बई का बाबू, जो 1960 में रिलीज हुई थी। तो आइए इस खूबसूरत फिल्म का गीत सुनते हैं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। बॉम्बे का बाबू, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, देवानंद, सुचित्रा सेन, धुमाल और नाजिर हुसैन पर पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म का गीत आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: अगला गाना है मेरे पास, ये दो प्रेमी फिर मिल रहे हैं और डिफरेंट तरह के गाने गा रहे हैं। साजे दिल छेड़ दे क्या हंसी रात में, कुछ नहीं चाहिए तू अगर साथ है। हंसी रात में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ लिए अपने प्रेम में गुम है। ये आई थिंक मधुबाला है, इसमें प्रदीप कुमार है।
0: अच्छा।
1: और उनको सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कह रहे हैं तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए।
0: क्या बात,
1: क्या फिर?
0: क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आइए, पासपोर्ट इस एल्बम का ये गाना है, 1961 में रिलीज हुई थी। तो सीधे मैं गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: तो आशा करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं, अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो बहुत ही खूबसूरत गाना विवा जी आपने पासपोर्ट इस एल्बम से सुना है, साजे दिल छोड़ दे। क्या हंसी रात थी। मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर का गाया बहुत ही खूबसूरत गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये गीत आपने सुनाया, और मैं कहूंगा कि आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत गाने आपने सुनाए, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: थैंक यू सनी, मैंने बहुत एंजॉय किया इन गानों को, और जब चुन रही थी तो उसमें भी आप सबकी पसंद को नजर में रखते हुए तो इन गानों को चुना। इसमें देशभक्ति भी थी, मतवालापन भी था, मोटिवेशन था, तो मैंने खूब एंजॉय किया इस एपिसोड को, और आगे भी ऐसे ही आप सबके लिए चुन चुन के गाने लाने वाली हूँ। आप अपना तैयारी रखें और
0: धन्यवाद
1: आप सबको बहुत प्यार के साथ प्यार भरा नमस्कार और गुड बाय।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विभा जी। और चलिए श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

काली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार,

करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मुस्कान आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे थे जीवन की सिचुएशंस के बारे में। जब देखा हमने कि परिस्थितियां हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में तो ऐसा और दिखता जा रहा है। ग्लोबली अगर हम देखें या पर्सनल लाइफ में भी देखें कि सिचुएशंस आती जाएंगी और मुश्किलें, मुसीबतें, और अभी तक हम ये भी बातें करते आ रहे थे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन रियल सेंस में जब हमने देखना शुरू किया, हमें पता चला कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली एक परिवर्तन, एक चेंज है। और उसको हैंडल करने के लिए या उसको कैसे उससे गुजरना है, उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास हम दो तरीके अभी तक कर रहे थे। या तो हम उसे भिड़ जाते थे उस सिचुएशन से, या फिर हम अपने आप को गिव इन करके उसके साथ बह जाते थे। लेकिन अगर हम जहां हम खड़े हैं वहीं खड़े रहें और उस सिचुएशन को गुजर जाने थे, दैट इज वेयर यू नो द राइट सेंस हमारे पास आती है। ऐसे में अगर देखें तो पिछली कड़ी में ही हमने बात की थी कि सही सोच हमारी बहुत मदद करती है, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में कितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे लेना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने यही कहा था कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ थॉट हमारी डेस्टिनी तय करता है। आप जैसे हम एक जर्नी हमने की थी आपके साथ,
1: आपको सब जर्नी याद है पूरे।
0: मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो एक सोच मेरी, एक थॉट मेरा फीलिंग को क्रिएट करता है, और जब बार बार वो फीलिंग आती है, हम मुसीबत ये ना समझकर परिवर्तन समझें, चैलेंज समझें। अब परिवर्तन तो होता ही है, हर पल परिवर्तित हो रही है जिंदगी, हम सब बिलीव करते आ रहे हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। उस परिवर्तन में गुडनेस कैसे देखनी है, उस परिवर्तन को रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा, उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये मैं खुद तय कर सकता हूँ, मैं खुद सक्षम हो सकता हूँ। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक बार फिर से हम सिस्टर शिवानी उस बात को लेते हैं कि जो जिंदगी में हो रहा है, आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भी, वो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आधा वक्त भय में गुजर रहा है मेरा, आधा वक्त उससे जूझने में गुजर रहा है, आधा वक्त और एनर्जी, और आधा वक्त उसे एक्सेप्ट करने में ही, आधे से ज्यादा वक्त कि ये मेरे साथ हो गया। चाहे वो डिवोर्स केस की बात की थी, चाहे हमने ये देखा था कि बच्चा मेरा जो है वो, अच्छा इनफैक्ट हमने डेथ की भी बात की थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी सिचुएशन, बच्चा मेरी जिंदगी से कहीं और जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा घट गया है जो मेरे लिए स्वीकार नहीं हो पा रहा, तो इन सब में जो मेरा वक्त जा रहा है, एक थॉट जो है वो उसे चेंज कर सकता है।
1: तो वही जो आपने कहा ना, जूझना, जूझना भी रिस्पॉन्स है। परिस्थिति तो आ गई, अब हम ट्राई करेंगे कि अब हम परिस्थिति को एक तरफ रखते हैं, अब हम रिस्पॉन्स पर चलते हैं, क्योंकि यस वी हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी बिग, बट नाउ स्टिल व्हाट डू आई हैव टू डू, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, नाउ लुक, लेट मी लुक एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड द अदर साइड ऑफ द टेबल आई एम स्टैंडिंग, यू नो सिचुएशन वहां है, दिस साइड आई एम स्टैंडिंग, यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, इज दिस इन माई कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पहले अपने फोकस को हम शिफ्ट करें कि परिस्थिति है, मान लिया, अब एक साइड पर उसको रखते, बट एनी सिचुएशन, एनी चैलेंज, फर्स्ट थिंग डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। परिस्थिति आएगी तो रिस्पॉन्स होना ही है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कोई भी परिस्थिति आपके बिना रिस्पॉन्स के नहीं आगे जाती है, लेकिन अब रिस्पॉन्स क्या और कैसा, दैट्स इन माई हैंड।
0: और तो, उसमें एक मुझे जो दिख रहा है, मुझे समझ में आई एक बात कि जैसे ही परिस्थिति आती है, पहली चीज होती है जो रिस्पॉन्स की बात करती हूँ, पेन। पेन हिट्स अस, और कितनी बार
1: pain
0: लोग बोलते
1: हिट्स अस ना, पेन हिट्स अस, सी सच अ कॉमन सेंटेंस, लॉट ऑफ अस, वो दर्द मेरी तरफ आ गया, या दैट पेन हिट मी। नाउ व्हेन आई से पेन हिट्स अस, दैट मींस आई एम सेइंग इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। पेन हिट्स अस मतलब, तो जैसे कि किसी ने मुझे मारा आकर, तो पेन हिट्स अस मींस द पेन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमने अभी देखा कि परिस्थिति बाहर से आएगी, एंड जैसे ही परिस्थिति आएगी, आई हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया। अब रिस्पॉन्स क्रिएट करना मतलब क्या? क्रिएट करना
0: थॉट, क्रिएट
1: थॉट, क्रिएट करना। इमीजिएट परिस्थिति थॉट, परिस्थिति थॉट, दिस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. अब परिस्थिति आई कितनी भी बड़ी, थॉट किसने क्रिएट किया?
0: एक्चुअली मुझे तो पता नहीं चलता ना कि मैंने क्रिएट किया.
1: बट नाउ द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि फोकस, यस सिचुएशन वेरी बिग, नाउ रिस्पॉन्स किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स मतलब क्या कि फर्स्ट चीज मैंने क्या क्रिएट की, जैसे आपने कहा एक थॉट क्रिएट की, थॉट क्रिएट की, फीलिंग्स क्रिएट हुई, एक्शन में आ गया. अब एक्शन किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. दर्द क्रिएट किया किसने? क्रिएट किया
0: मैंने, क्रिएट किया,
1: क्योंकि दर्द इज द रिस्पॉन्स ना, और फिर वो एक्शन में आया. अब जैसे ही एक्शन में आएगा उसका रिजल्ट फिर सिचुएशन के रूप में फिर मेरे सामने आएगा. लेकिन फिर जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी फिर क्या क्रिएट किया? अगेन आई क्रिएटेड अ थॉट. नाउ बिकॉज इट्स लाइक टू पीपल आर हियर, सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा सारा टाइम इसको देखने में जा रहा है सिचुएशन को, तो मेरा ध्यान इस तरफ तो जाए नहीं रहा कि आपका रोल क्या है इसमें प्ले करने में. तो इसलिए हमने समझा कि रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटेड है,
0: नेचुरल रिएक्शन है. सो मेनी टाइम्स वी से दैट कि इट्स अ नेचुरल रिएक्शन.
1: नेचुरल रिएक्शन क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट किया, एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट किया. यू नो, एक जैसे हमारे पास ईमेल्स आते हैं, एक है कि उस ईमेल को पढ़ के उसके ऊपर बैठकर सोचकर एक आंसर हम लिखेंगे, और एक है कि एक ऑटोमेटेड रिस्पांस क्रिएट कर दिया है,
0: मुझे आता है.
1: यस, सो एवरी ईमेल व्हेयरएवर वी सेंड टुडे आउट इनटू द वर्ल्ड, आपको इमीडिएट ऑटोमेटेड रिस्पांस आता है ना. आपकी वहां पहुंची नहीं होगी, अभी आपने सेंड बटन दबाया होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहां से जवाब आया. सोचा समझा हुआ जवाब नहीं था, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स था. तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मतलब जो एक मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत पहले से फिक्स करके रखी हुई है सिस्टम के अंदर, उसने क्वेश्चन को समझा भी नहीं, उसने परिस्थिति को देखा भी नहीं, लेकिन उसके पास उसका रिस्पॉन्स फिक्स्ड है. एंड दैट इज दैट रिस्पॉन्स, वेदर इट्स ऑफ पेन और फियर और व्हाटएवर, बट इट्स एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट टेक आउट टाइम internally to look at whether I have a choice to create a response, whether I need to sit and think what has to be my response. I just said natural response. Gussa, natural response. Dard, natural response. Stress, natural response. To usko fir hum reaction kehte hain. Jaise do words hai hum bar bar use kar rahe hain, reaction, response. To reaction hai
0: ऑटोमेटेड. हम बार बार ये भी देखते हैं जैसे शिवानी कि दूसरा कोई होता तो वो क्या करता. हम ये भी कहते हैं ऐसे ही तो रिस्पॉन्ड करता, ऐसे ही तो उसका रिएक्शन.
1: क्योंकि ज्यादातर फिर हम किसको देख रहे हैं? मेजोरिटी अराउंड अस आर लिविंग विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस. और क्योंकि फिर मेरे आसपास मेजोरिटी लोग ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चल रहे हैं, तो फिर मैंने एक और बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया कि दिस इज द राइट वे टू लिव, कि अगर एक कुछ गलत करेगा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है कि गुस्सा तो आएगा ही. मैंने अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया बीच में कि डू आई हैव अ चॉइस, कितना गुस्सा करना है, कब तक करना है, किस पर करना है, कितने समय तक उसको पकड़ कर रखना है. ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट है.
0: नहीं, इनफैक्ट यस, बट मेरे ऊपर है, आई कैन मेक इट आउट. बट एक्चुअली अगर मैं देखूं तो अभी तक जिंदगी में यही हो रहा था कि इट जस्ट टेक्स ओवर,
1: टेक्स ओवर, बिकॉज आपने इस पर अटेंशन ही नहीं दिया ना. आप यहाँ जिसकी एनर्जी, जहाँ अटेंशन जाएगी एनर्जी फ्लोज. वी हैव वर्कड विद दिस लॉ थ्रू आउट, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. तो जहाँ आप ध्यान देंगे, जिस साइड पर आप अटेंशन डालेंगे, आपकी सारी शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके पास, वो उस साइड पर जाएगी. अब ये दो साइड ऑफ द टेबल है, सिचुएशन, माय स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज रिस्पांस. इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है
0: पूरा. हाँ,
1: इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कह दिया कि ये तो ऑटोमेटिक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि हमने सोचा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो गुस्सा तो आना ही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में मुझे लगा कि वो है, वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है. तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, मैंने अपना सारा ध्यान किस तरफ लगाना शुरू कर दिया? उस तरफ कि मैं इस सिचुएशन को किसी तरह चेंज कर दूं. और सिचुएशन को चेंज करना मतलब सामने वाले लोगों को चेंज करना,
0: और वो टेंशन में ही मैं सब कुछ कर. ओह यस.
1: सो नाउ राजयोगा मीन्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स शिफ्ट फोकस दिस साइड. Situation, yes, not in my control. हर सिचुएशन में, भले उस टाइम नहीं भी याद रहे लेकिन बाद में भी बैठकर, क्योंकि जो बाद में बैठकर आप इंट्रोस्पेक्ट करके स्टडी करोगे वो आपको नेक्स्ट सिचुएशन में हेल्प करेंगे। कई बार ठीक है ये सिचुएशन आई, मैंने नहीं ठीक से हैंडल किया, आई वेंट थ्रू पेन, लेकिन इफ आई सिट बैक एंड आई थिंक ओवर इट, आई विल बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट सिचुएशन एंड दैट इज वॉट इज इन माई कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी फैल गई, लेट्स से अभी ये जो स्वाइन फ्लू फैल गया, फैल गया, यू ट्राई टू स्टॉप दैट, यू कैन स्टॉप दैट, तो वट आर बी ट्राइंग टू डू, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो आप लोगों को देखेंगे वो लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लोग हर जगह टेम्परेचर, वट एवर मेजर्स दे आर टेकिंग, वो फ्लू को तो नहीं रोक सकते ना, वो किसको बचा सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं। सो दिस इज इंटेलिजेंस ना। अगर आप सोचे आप वायरस को ढूंढ के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट हैपनिंग। तो एवरी कंट्री एवरी नेशन व्हाट हैव दे डन, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है जिससे हम अपने को बचा सकें ताकि ये एपिडेमिक फैले नहीं। अब जिस समय एंगर और स्ट्रेस और ये डिप्रेशन हिट कर रहा था, हमने सारा ध्यान किस पर दिया,
0: सिचुएशन
1: वायरस, वो सारा वायरस का, मैं उसको वायरस को ही रोक दूं तो मुझे दर्द नहीं होगा। अगर हमने ध्यान अपने ऊपर उसी समय से देना शुरू कर दिया तो बीमारी कैच ही नहीं होगी ना, बीमारी भी पकड़ ली और उसके बाद भी बीमारी को ना ध्यान देते हुए परिस्थिति को ही देते गए, तो परिस्थिति तो क्योंकि मेरे कंट्रोल में थी नहीं तो वो आई नहीं, लेकिन बीमारी मेरी दिन ब दिन
0: बढ़ती
1: गई। वी स्टार्टेड 20 years बैक विद अ वर्ड कॉल्ड टेंशन, चिंता, स्ट्रेस वर्ड नहीं था 20 साल पहले। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन स्कूल देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे लिए सिर्फ साइंस में आता था कि मेटल का स्ट्रेस कितना होता है, पर्सनल का स्ट्रेस ऐसा कोई शब्द नहीं था, इट वाज नॉट देयर इन द वोकैबुलरी। इस 8-10 साल के अंदर स्कूल के बच्चे बच्चे को ये शब्द मालूम है स्ट्रेस, आज स्कूल के बच्चों को डिप्रेशन मालूम है, एंड नॉट जस्ट एज अ वर्ड, एज एन एक्सपीरियंस, दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। क्यों? क्योंकि जब वो बीमारी स्ट्रेस के लेवल पर थी, रोका नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिलेबस को क्या करे, कॉम्पिटिशन को क्या करे, बाहर बैग्स को हल्का कर दो, विच इज ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बट बीमारी कहाँ है, फेस किसको करना है उस सिलेबस को, उसकी ताकत को बढ़ाए, नो वन वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग सोच रहे थे वो भी तो खुद भी तो
0: depleted.
1: अपने ही दर्द में है। तो वो वर्ड स्ट्रेस से बढ़कर आज डिप्रेशन पर आ गया है। टुडे डिप्रेशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ वेरी यू नो, जैसे कि एक आम बुखार की तरह है, किसी को भी हो रहा है।
0: शिवानी बहुत लोग ये बोलने वाले हैं, मतलब मेरे, मैं भी अगर सोचूं कि जब सिचुएशन आ रही है तो उसको ग्रैपल करने का कोशिश करूं, उसको सेव करने की कोशिश करूं, या अपने ऊपर काम, मतलब अपने ऊपर देखने लग जाऊं, यू नो दिस इज लाइक, उस वक्त मेरा पूरा फोकस इस कि मेरे को सिचुएशन को उस वक्त कैसे सेव करना है।
1: सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं, दैट्स द फर्स्ट बॉटम लाइन। यस, हमें करना है कि व्हाट विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मुझे दोनों में से फर्स्ट चूज करना पड़ेगा, विच वन इन माई कंट्रोल, विच वन आउट ऑफ माई कंट्रोल। अभी क्या हो रहा है, दो साइड से सिचुएशन रिस्पॉन्स हो क्या रहा है, चैलेंजेस जैसे आपने कहा दिन ब दिन बहुत फास्ट स्पीड से, चेंज की भी जो गति है ना, चेंज की भी एक स्पीड होती है, चेंज तो यस है, लेकिन चेंज जो अब हो रहा है इट इज एट अ वेरी फास्ट रेट। अब ये भी तो हो सकता है इससे आगे आने वाली परिस्थितियां और कुछ लेकर आएंगे। हमें लग, इट्स नॉट टू गेट स्केयर्ड, अगेन दिस इज नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी स्पीड पर जा सकता है, मेरे कंट्रोल में ये, लेकिन अब क्या हुआ, ये फास्ट बढ़ता गया, ये फास्ट घटता गया, तो जो गैप है उसके बीच में, चेंज और रिस्पॉन्स के बीच में, वो गैप बहुत बढ़ता गया। और क्योंकि ये गैप बढ़ता गया, क्या फीलिंग आई, मेरे अंदर शक्ति नहीं है टू फेस दिस,
0: गिव अप, देन यू नो लाइक यस,
1: अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, यू नो, शक्तिहीन, कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से ये दैट्स व्हेन वी हैव दोस काइंड ऑफ थॉट्स के मेरे से नहीं फेस होगा, मेरे जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं, इतनी एकदम नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कि मेरे जीवन का कोई फिर लक्ष्य नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, क्यों, क्योंकि वो गैप वॉज टू मच टू फेस। उसकी वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जब मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है इस परिस्थिति को फेस करने के लिए, तो जो मुझे रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट, एंड देन कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज आई कैन डू इट, आई स्टार्ट ब्लेमिंग यू, कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए आप और पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है।
0: भगवान तो आते हैं।
1: हाँ, वो तो जब व्हेन आई डोंट गेट एनीवन टू ब्लेम, तो आई से ये उसकी वजह से हो रहा है, ये भगवान कर रहा है। तो ये तीन बहुत डीप चीजें सेट हो जाते हैं, फीलिंग ऑफ पावरलेस, शक्तिहीन, दूसरा नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, एंड तीसरा ब्लेम। क्योंकि जैसे ही हम ब्लेम मोड में चले जाते हैं, औरों की तरफ उंगली उठाना शुरू करते हैं, तो फिर मेरा अपने पर काम करने वाला प्रोसेस तो बंद हो जाता है, आई स्टॉप इमिडिएटली। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, जितनी भी परिस्थितियां हमने देखी, जो आज हम जिसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं है लेकिन जो एक बहुत कॉमन हो गया है, जो हमारी थॉट क्रिएट होती है, फर्स्ट थॉट उस सिचुएशन को लेकर, वो ज्यादातर आज नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज वी सो कि आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, रिस्पॉन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थॉट, एक थॉट क्रिएट करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स, और कुछ भी नहीं करना, और वो थॉट फिर एक्शन में आ जाएगी और वो एक्शन फिर आपका अनुभव बन जाएगा। लेकिन वो थॉट की क्वालिटी वो बहुत नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे कि अपने लिए हम किस तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो सकता है, ये दूसरे लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए फिर उन्हें मेरा काम भी पसंद नहीं आता है, मैं ही सिर्फ क्यों बदलूं,
0: अब क्या होगा,
1: अब क्या होगा मेरे साथ,
0: यू नो, ओह माय गॉड, इट्स द एंड, यू नो, ऐसे ऐसे जो थॉट्स, एक्चुअली आई कैन मेक इट आउट नाउ, द मोमेंट देयर इज अ सिचुएशन, सपोज हमें कुछ भी पता चलता है, पहला जो वो है कि इट्स लाइक व्हाट टू डू नाउ,
1: ट्रू, सो दैट्स दैट नेगेटिव थॉट। एक है सेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स फॉर माई सेल्फ, अपने प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये लोग मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे से सब, मैं जो करना शुरू करती हूँ मेरे से गलत हो जाता है। सो अपने लिए एक नेगेटिव थॉट, अपने से स्टार्ट हुआ, उसके बाद औरों के लिए नेगेटिव थॉट, ये कोई काम करने का तरीका है, ऐसे थोड़ी करना होता है, ये इनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था मेरे साथ, यू नो, अगेन I'm going to look at everyone around.
0: In fact, यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात होती है कि मैं जब भी कोई काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे परिवार का साथ नहीं मिलता। There is nobody understands me.
1: Nobody understands
0: मैं कितना काम करना चाहती हूँ, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं मिलता। परिवार का ही सपोर्ट नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा?
1: Now see the whole series of thoughts. किस क्वालिटी के हैं ये? अब अगर थॉट, क्योंकि बिकॉज वो बीज है आपका, बाकी आगे जो भी आपके साइकिल में होने वाला है, लेकिन बीज इस क्वालिटी का वो देंगे, फिर औरों के प्रति भी, विश्व के प्रति, टुडे द वर्ल्ड इज इन अ मेस, दैट इज वन कॉमन थॉट, माय कंट्री इट सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इस देश का कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा, और वो जो दुनिया में हो रहा है वही तो मुझे मिल रहा है,
1: वो तो फिर साइकिल आ गया ना, क्योंकि मेरी तो गलती वैसे भी नहीं थी, इट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। अच्छा, दुनिया में इतना सब हो रहा है, एक मैंने अगर चेंज कर भी लिया अपने आप को, उससे क्या फायदा होगा? सो ये इस क्वालिटी की जब थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है, एंड इट इज सच अ विशियस साइकिल, कि ये एक बार थिंकिंग का एक जो मैकेनिज्म बैठ के अंदर, तो एक से अगली थॉट फिर नेगेटिव ही होनी है, उसके बाद नेगेटिव ही होनी है, एंड आफ्टर सम टाइम नाउ वी आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल। पॉजिटिव थिंकिंग इतना कॉमन शब्द हो गया है आज, एवरीवन इज सेइंग पॉजिटिव थिंकिंग। किताबें देखो तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर है आज मार्केट में? पॉजिटिव थिंकिंग। दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ वेरी डीप डिजायर कि मुझे अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को बदलना है, लेकिन किताब पढ़ते समय या सपोज ये सेशन देख रहे हैं, ये देखते समय ठीक लगेगा, लेकिन वो बदलेगा कौन? आई विल हैव टू कॉन्शियसली सिट डाउन एंड व्हेन आई क्रिएट द नेगेटिव थॉट, इवन इफ उस समय नहीं हुआ मेरे से, चलो वो स्टेज को क्रॉस करे, बाद में बैठकर कौन करेगा? थिंकिंग अपने आप तो नहीं चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, इट हैज गॉट इन टू अ वेरी डीप साइकिल, क्योंकि थॉट नेगेटिव होगी तो फीलिंग भी
0: नेगेटिव होगी।
1: लेट्स से अ सिंपल चीज जो आपने बोला कि मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, जहां मुझे काम करना है आई डोंट लाइक माय बॉस, वन थॉट आई डोंट लाइक माय बॉस, अब या तो जॉब चेंज करो, वो तो आज करने की हालत में नहीं है, अब आप उसी जॉब में हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन थॉट कौन सी शुरू हो गई है साइकिल में? I don't like my boss. I can't stand my boss. You know, the way people will say, I just can't stand that person. So I don't like my boss. Feeling kaisi wali create hogi automatically?
0: Repel. Yes. Repel. I cannot be with
1: you. Kyunki meri thought hai, I can't stand you. Ye sentence itna common hai. I can't stand you. So feeling kaun si aayegi? एंगर,
0: हेट्रेड,
1: हेट्रेड,
0: यस,
1: रिजेंटमेंट, यही आएगा. तो जो मेरा आपके साथ व्यवहार होगा जब वो ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स पर बेस्ड होगा, तो वो व्यवहार कैसा होगा? नॉट कोऑपरेटिव. देयर विल ऑलवेज बी दैट यू नो टेंशन.
0: एंड इनफैक्ट वो जेन्युइन भी मुझे कुछ कहेंगे करने को, माय आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट. आई फील कि वो ही इज ट्राइंग टू पुट मी डाउन.
1: नाउ द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, व्हाट विल हैपन टू यू? आप काम तो उसी ऑफिस में कर रहे हैं ना, आपके साथ आपका सीनियर तो वही है, लेकिन क्योंकि ये थॉट और ये फीलिंग के साथ काम चल रहा है, एक थॉट सिर्फ, आई डोंट लाइक माय बॉस, यू सी हाउ इट विल कम आउट इनटू द रिजल्ट. और आपके करियर पर इसका इम्पैक्ट आना ही आना है, क्योंकि यू आर वर्किंग देयर विद दिस थॉट. आप वहां काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बीज आप रोज बो रहे हैं, हर घंटे हर पल जो आप बीज बो रहे हैं, जो आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? I don't like this person. I don't like this person. I don't like this person. ये जो energy,
0: और मजबूरी का जो पूरा एहसास है, बिल्कुल.
1: और इसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे नहीं आएगा, आएगा. वो किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया. बट आई डोंट सी दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम माय थॉट. आई थिंक ऑल दिस इज हैपनिंग
0: बिकॉज यू आर बैड, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लाइक यू. बट देन देर आर पीपल हु से आई एम बीइंग जेन्युइन, यू नो, टू माई सेल्फ. एटलीस्ट मैं अपने आप से सच तो बोल रहा हूँ.
1: भले वो ठीक है, लेकिन फिर अगर आपका जेन्युइन नेगेटिव होने वाला है, यू सी, क्योंकि हर एक में प्लस एंड माइनस, अंडरस्टैंडेबल, वो तो अभी हमें समझ में आया कि एवरीवन विल हैव देयर शेयर ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड सो डू आई, जस्ट शेयर ऑफ माय वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. बट इफ माय सिचुएशन डिमांड्स कि मुझे उस व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र में कार्य करना है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द चॉइस, द थॉट. आई कांट चेंज माई बॉस. अगेन, कौन सी चीजें कंट्रोल में है, कौन सी चीजें कंट्रोल में नहीं है. जॉब आई कांट चेंज, बॉस आई कांट चेंज, हु कैन आई ओनली चेंज?
0: मायसेल्फ.
1: ओनली इफ आई वॉन्ट टू क्रॉस दिस होल थिंग विदाउट पेन. दर्द के साथ जीना है, दर्द में जीना है,
0: कॉम्प्रोमाइज, मजबूरी, ये सब कुछ,
1: सफोकेशन अंदर. एंड फिर सिर्फ वो अंदर की बात नहीं रहेगी, वी सॉ दैट द रिजल्ट विल कम आउट ऑन द परफॉर्मेंस. फिर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो परफॉर्मेंस पे आपके हिट करेगा और वो रिजल्ट आपको वापस आएगा, बी रेडी टू टेल योरसेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस वॉज ऑल माय क्रिएशन. लेकिन वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेने क्योंकि वो डाल दिया आपके ऊपर. तो अगर हम ये देखेंगे ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मेरे कंट्रोल में है, माई थॉट. Is it possible that I work on myself, look at my negative thoughts and try to convert? देखो, हम negative thought को positive word में convert करते हैं. आप सारा दिन में देखो, हम ये बहुत काम करते हैं. अंदर भले मैं आपके बारे में अच्छा नहीं भी सोच रही हूँ, ठीक है, पर भी मैं आपसे बात तो बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ. तो हमने क्या किया? Convert किया ना, क्योंकि वो नेगेटिव आपको नहीं सुनाई देना चाहिए, तो उसको अंदर ही रखा. लेकिन आपसे बात कैसे की?
0: तो अपने आप से तो मैं सच्ची रही ना, ये मैं कहती हूँ.
1: यस, लेकिन अगर कन्वर्ट करना ही है जेन्युइनली, तो कन्वर्ट वर्ड लेवल पर करने के बजाय क्यों ना थॉट लेवल पर कर दिया जाए? क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट होकर आप तक पहुंचने वाली है, इट्स नॉट ऑफ द वर्ड्स. कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, इधर ही काम करना पड़ेगा. अगेन, दैट्स पेन. I have a choice, and the choice is start seeing the other side of the person, start changing myself. आप उनको नहीं चेंज कर सकते.
0: That's what I'm saying ना, कि मुझे उन्हें लाइक करने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मुझे उनकी पॉजिटिविटी देखनी
1: पड़ेगी. लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने दर्द से निकलना पड़ता है. जब मैं दर्द में हूँ, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे? आप क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि मैंने ये समझा कि मेरे दर्द का कारण आप हैं, तो फिर आप कैसे अच्छे लग सकते हैं मेरे को? उसके बाद जब तक मेरा वो दर्द हील नहीं होता ना, तो आप मुझे अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि यू आर द वन हु कॉज्ड मी पेन. यू नो, ये जो मैं जिस चीज से आज गुजर रही हूँ ना, सारी इसका सारा
0: आप हैं जिम्मेदार. ऑफ कोर्स.
1: तो देन हाउ कैन आई लाइक यू? व्हेन व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड वाज द कॉज इज मी. आप वहां हैं, आप अभी भी उस कुर्सी पर हैं, आप यहाँ नहीं हैं. और दर्द जो सारा क्रिएट हो रहा था, वो यहाँ क्रिएट हो रहा था. आप वहां से बैठकर कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मुझे फिजिकली भी मार सकते हैं, उतना ही आपके कंट्रोल में है. लेकिन यहाँ जो क्रिएशन होती है सारी,
0: वो मेरी है. ओह वाओ,
1: वो सारी मेरी है.
0: आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू रब इन एक्चुअली टू अंडरस्टैंड.
1: दिस इज द ओनली थिंग कि ठीक है, यू आर व्हाटएवर यू आर, ओके, बट स्टिल हु इज क्रिएटिंग द पेन? हु इज क्रिएटिंग द पेन? मी. नॉट द अदर पर्सन. कब तक? स्टॉप, आस्क योर सेल्फ, हु इज क्रिएटिंग द पेन? आई. कब तक?
0: आई कैन स्टॉप इट नाउ.
1: व्हेनेवर. आप जब रोकना चाहे. आपको एक साल बाद दर्द खत्म करना, आपको 6 महीने बाद खत्म करना.
0: नो, आई वांट टू डू इट नाउ.
1: फिनिश इट राइट नाउ. दैट्स व्हाट इट इज. जब फोकस यहाँ आएगा तब तो फिनिश होगा ना. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रबिंग दिस इन फोकस सेल्फ सेल्फ सेल्फ, क्योंकि सिर्फ वही है जहां आप बिंदी लगा सकते हो. आपको नहीं बिंदी लगा सकती मैं. अगर आपने मेरे से रूडली बात करनी है तो करनी है, मैं बिंदी नहीं लगा सकती आपको. बिंदी जहां लग सकती है.
0: वेरी ट्रू एक्चुअली. इट्स सो क्लियर नाउ. इनफैक्ट हमारे पास वक्त नहीं रहा है, लेकिन अब ये बहुत बिंदी लगानी कैसे है, हाउ टू फिनिश एक्चुअली, यू नो व्हाट टू रियली डू. पर पहली बात तो यही समझने की थी कि ये जो सब कुछ है, जहां तक सिचुएशन है वो वहां है, लेकिन जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा क्रिएट किया हुआ है. दीज आर द टू पैरामीटर्स विच वी नीड टू वर्क ऑन. थैंक यू सो मच शांति. और इस पर हम आगे आने वाली कड़ियों में जरूर बात करते रहेंगे. अब आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, बार बार यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस प्रोग्राम में कह रहे होते हैं वो सिर्फ हम बात कर लें अच्छा लगता है. बिल्कुल जैसा सचिव शिवानी ने कहा, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन अगर हम रियल में अपनी लाइफ में देखें, हम सबके सामने सिचुएशंस आती हैं, हम सबके सामने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा अनुभव क्या है, मैं कितना दर्द में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ, कितना मैं उसके कारण अपने आप को बंधा हुआ या जो भी वो इमोशंस हैं वो मैं फील करता हूँ, वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ. इट मींस सिचुएशन और फीलिंग्स एक्चुअली अलग अलग हो गई.
1: है ही अलग.
0: आपके पास कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो इस कड़ी से जुड़ी हुई है या पूरा जो ज्ञान आपके साथ है इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारी कोशिश है ये प्रोग्राम आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, जो हमारा सफर है उसमें हर कदम पर आपके साथ हो. तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं खुद की. वैसे तो हर बार हमारा प्रयत्न रहता है, जैसे कि सचिवानी ने कहा कि फोकस इज ऑन सेल्फ, खुद पर. हम से ज्यादा सेल्फिश लोग नहीं हो सकते कि बार बार हम ये कहते हैं कि फोकस हम पर होना जरूरी है, लेकिन बाहरी के बावजूद जो अंदर मैं हूं, जो बहुत कुछ काम करता है, जो सोचता है, जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उस पर फोकस करना जरूरी है. आगे हम बहुत सी और बातें करेंगे सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. हम शांति.

0: amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, क्या गा रही है?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। खुद को पहचान कर जब परमात्मा से रिश्ता जोड़ा तो एक नए अंदाज, एक नए परिपेक्ष में अपने आसपास हम देख पाए, और जब हमने देखना शुरू किया तब परेशानियां भी नजर आने लगी, और अवेयरनेस के साथ हमने जाना कि कई ऐसी बातें, कई ऐसी हैबिट्स, कई ऐसी आदतें हमारी मजबूरी बनती जाती हैं, और हम खुद ही जान नहीं पाते कि क्या वजह होती है कि वो आदत मजबूरी के रूप में हमारे सामने आ जाए, और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए और आगे बढ़े तो समाज के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह की तरह सामने आती है। अध्यात्म में या फिर अपनी थॉट पावर से, अपने संकल्पों से, क्या हम इन आदतों को, इन व्यसनों को, इन एडिक्शंस को दूर कर सकते हैं? कौन सा ऐसा वक्त होता है जब मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज फिर इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हैं, और हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, हम अब कई बातें कर चुके हैं कि आदतें जो पड़ जाती हैं, जो हमारी मजबूरी बन जाती हैं, और कई बार जो ये व्यसन है ये फिर आगे चलकर और मुश्किलें क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हम उस मूल बात पर जाएं कि वजह क्या बनती है, क्या ऐसा होता है कि हम जो इन आदतों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्या कारण रहते हैं?
1: सबसे मूल या तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो तनाव है, कन्फ्यूजन है कि आज लोग मुंझे हुए हैं तनाव के कारण, फिर सोचते हैं कि भी कहीं रास्ता मिल जाए, और व्यसन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट है कि थोड़ी सी शराब ले लो, हाँ सिगरेट पी लो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मूल रूप से इसी के कारण तनाव को कम करने के लिए लोग तुरंत व्यसन लेने लगते हैं।
0: उस वक्त तो कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं जैसे शिवानी, स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट हो जाता है, कहाँ हमारी क्या चीज वीक होने लगती है?
2: हम कुछ इस तरह के मेजर को लेते हैं ताकि कुछ समय के लिए एटलीस्ट हमारा माइंड रियालिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए और हम एक अलग ही दुनिया अपने लिए क्रिएट करके उसमें जीने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर वापस आना होगा, और फिर वो रियलिटी को फेस करना शायद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन तो जितनी चैलेंजिंग थी अभी भी उतनी चैलेंजिंग है, लेकिन अंदर जो मेरे पास पावर थी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए वो

0: और भी कम हो चुकी है अभी, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही टूट गया है, तो अब हम उस सिचुएशन को कैसे फेस कर पाएंगे, इट बिकम्स ऑल द मोर चैलेंजिंग नाउ.
1: यहीं पर जो बात है ना कि भी लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया, आंतरिक परिस्थितियां है परंतु उसको नियंत्रण करने के लिए आपको आंतरिक ही कोई चीज अपनानी चाहिए कि जिससे सदा के लिए उस परिस्थिति से आप मुक्त होंगे, परंतु आप बाह्य चीजों को ढूंढते हैं कि जो एक सही सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता.
2: डॉक्टर साहब, उस सिचुएशन पे आते हैं कि सोशल प्रेशर में या पीयर प्रेशर में आके हमने स्मोक शुरू कर दिया. स्मोक किया, एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग हुई कि बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं, या लोगों ने भी बहुत कहा. शुरू किया था एक पीयर प्रेशर में, एक लोगों के सामने एक अपनी इमेज बनाने के लिए. लेकिन अब धीरे धीरे देखा यह है कि जैसे ही कोई सिचुएशन है, जैसा कि सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि हम रियलिटी से भागने लगते हैं, तो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सिगरेट चाहिए, पहले मैं एक सिगरेट पी लूं फिर बात करते हैं, पहले मैं एक सिगरेट पी लूं फिर मैं सोच समझ के करूंगा. तो यहां शुरुआत जो थी वो तो सोशल प्रेशर से हुई, तो फिर ये क्यों अल्टीमेटली हम इसको इससे क्यों लिंक कर देते हैं कि जहां पे भी सिचुएशन आएगी, तनाव आएगा, मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी.
1: क्योंकि वही उससे वह बात याद आती है कि पिछली बार जब मैंने पिया था तब थोड़ा सा मैं उसे फेस कर पाया था, मेरे में हिम्मत आ गई थी या तो तनाव कम हुआ था. तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भाषा में कहे कि कंडीशनिंग हो जाती है,
2: या वो एक इंप्रेशन बना हुआ है.
1: हाँ, इंप्रेशन बना हुआ है, वो भी ठीक है. हाँ. और वह सोचता है कि ये मेरी कोपिंग स्किल्स है. जो कुछ भी हम करते हैं ना, हमने अलग अलग हमारी कोपिंग स्किल्स को अपनाया है. दूसरा एक मनोविज्ञान का यह शब्द है जिसको कहते ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, कि जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते, ईगो को डिफेंस करने की मैकेनिज्म हो जाती है. तो व्यसन लेना भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आगे चल के होता है. सिगरेट पीना या तो व्यसन लेना वह ऐसी मैकेनिज्म हो जाती है.
2: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेजर जो रीजन है वो तनाव से मुक्ति है. ये वो व्यसन की हम बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाह्य है और हम उसे नेगेटिव माना जाता है. सोशली हम जानते हुए भी, मेंटली अगर हम जानते भी हैं कि ये गलत है, हम इसको ले लेते हैं और एक हिस्सा बना लेते हैं. हमने उन आदतों की भी बात की थी जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाते कि ये हमारी मजबूरी बनती जा रही है, उनके क्या कारण होते हैं?
1: एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वह है कि भी हम बड़ों से सीखते हैं. घर में अगर बड़े भी ले रहे हैं तो हम भी उनसे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं. और एक बहुत जो बड़ी बात है वह हमें लगता है कि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है. जैसे कहीं आज है सिगरेट्स पीते हैं, स्पेशली मॉडल्स में मैंने देखा है, ये वो समझते हैं कि इससे हमारा वेट कंट्रोल में रहता है.
2: पर एक्चुअली ये मैं इन्हीं बातों पे भी आना चाहती हूँ, आध्यात्मिकली भी जानेंगे. लेकिन ये कि होता क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी टेंशन रिलीव हो रही है, मेरा वेट कंट्रोल हो रहा है, क्या एग्जैक्टली ये सब कुछ होता है? क्या रियल में ये हो रहा होता है हमारे साथ जब हम इन सब व्यसनों में शामिल होते हैं?
1: काफी हद तक तो साइकोलॉजिकल है. हाँ. ये प्रैक्टिकल ऐसी कोई बात नहीं. कुछ चीजों में होता भी है, जैसे कि जो साइकेट्रिक दवाइयां हैं उनकी भी आदत हो सकती है. तो क्योंकि शुरू में व्यक्ति अपने आप भी, साइकेट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, फिर भी वह लेने लगता है, तो क्योंकि उसे नींद आने लगती है, समझो नींद की गोलियां है, तो उसे नींद आने लगी, तो वह सोचता है कि ये गोली मैं लेता मुझे नींद आती है. कहीं ऐसी भी दवाइयां हैं कि जो आपकी एंग्जाइटी को कम करती है, जो घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, तो उसे कम करने वाली कुछ दवाइयां हैं. जब आप लेते हैं तो कुछ समय तो अच्छा लगता है, परंतु जब लेते रहते हैं तो उसकी आदत हो जाती है. जब एक दिन भी आपने नहीं ली और तब जो समस्या होती है, तब जागते हैं कि अरे एक डोज मेरा छूट गया, इतनी बड़ी समस्या हुई, तो शायद मैं व्यसन ही बन गया.
2: डेफिनेटली अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा लगने लगता है, क्या हो रहा होता है हमारे अंदर, कहाँ वो संकल्पों का और विलपार का और संस्कारों का कौन सा ऐसा तालमेल बैठ रहा होता है कि हम उसे अच्छा फील करने लगते हैं?
0: क्योंकि थॉट्स का जो सोर्स है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम, और ये तीनों चीजें अभी हमारे ऊपर हावी हो रही है. जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि एक दो बार चॉकलेट खाई थी पहले और तब ऐसा लगा कि अच्छा फील हो रहा है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको अगली बार फिर वो थॉट क्रिएट करेगा. इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने फ्रेंड्स से या पीयर प्रेशर से मिलती है, और बिलीफ सिस्टम कि एक बार दो बार वो किया तो वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बैठना शुरू कर देता है कि विदाउट स्मोकिंग मेरा एनर्जी लेवल वो आएगा ही नहीं, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ जैसे स्टेज आर्टिस्ट या परफॉर्म जिन्होंने करना है वो उसके बिना आ नहीं पाते हैं, वो करते ही नहीं है, उल्टा उनको बस बैक स्टेज वो करके और फिर तुरंत से स्टेज पर आना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम बन गया होगा या वो लो फील करना शुरू भी कर देते हैं, तो वो एक बिलीफ सिस्टम साइकोलॉजिकल जैसे का कि वो बन गया कि इसके बिना तो हम वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे ही नहीं पाएंगे, तो वो थॉट्स में हमारे आ जाता है और वो हमारी डेस्टिनी फॉर बनता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिलीफ सिस्टम को एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ ही तो कट करना पड़ेगा कि दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल अब्यूज जो मैं यूज कर रहा हूँ, एंड ये मेरे एनर्जी लेवल को टेम्पररी तो शायद एक किक दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे कितना डी एनर्जाइज कर रही है, तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा शुरू में कि नए बिलीफ सिस्टम को ले तो नया थॉट क्रिएट होगा, लेकिन अगर अपने लिए you want to do the best for yourself, again yatra jo hai hamari, so you will be able to change it, aur kahin na kahin jo most powerful belief system is pe work kar raha hai, happiness is outside. To hum in sabhi cheezon ko isiliye kar rahe hain kyunki kahin na kahin hame khushi chahiye, khushi ko hi to sare dhoond rahe hain aur andar kahin pata nahi chal raha ki kaise usko create karna hai, to sambandhon mein dhoonda wahan bhi nahi mili, to fir in external cheezon ki dependency ho gayi ki kam se kam ye to mere control mein hai na,
2: ye meri marzi hai, jabki hame ye nahi pata ki hum kitne inke control mein
0: hain, absolutely, to wo hamare control mein nahi hai, hum uske slave ban chuke hain, ek choti si you know tukde ka hum gulam ban chuke hain, to ye happiness kahan se create hogi,
1: ये छोटी सी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भले वो शॉर्ट टर्म मुझे फायदा दे रही है, जो मेरी आवश्यकता है उसको पूरी कर रही है, परंतु लॉन्ग टर्म इससे बहुत बड़े नुकसान, समझो 1% है वो 99% नहीं, 99% मुझे हानियां है, बस 1% दोनों को अगर हम बैलेंस करें, वो बैलेंस शीट निकाले तो पक्का हो जाएगा कि भी 1% बेनिफिट नहीं हो कोई बात नहीं, मैं और कोई रास्ता ढूंढूंगा।
2: डॉक्टर गिरीश पटेल, हम कारणों की बात कर रहे हैं कि आपने कहा तनाव जो है एक मेजर कारण हो जाता है और उसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया कि मुझे सोल्यूशन बाहर मिलेगा, तो हमने इन स्टिमुलेंस का इस्तेमाल किया। एक और देखा गया है कि जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जब आप फेलियर हो जाता है, या रिश्तों में भी देखें या किसी में, तब भी आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ मुड़ते हैं हम, वो भी क्या, वो कारण क्या बनता?
1: वो इम्पोर्टेंट कारण है, उससे पहले मैं एक बात, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, वह बात अधूरी रह गई, मैं सोचता हूँ वह क्लैरिफाई करे कि सिगरेट पीने से यह सोचते हैं कि भी वेट कंट्रोल में आए, परंतु वो सचमुच वेट कंट्रोल नहीं होता है, वह भी भले शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो जो चर्बी का डिपोजिशन है वह रुकता है, बॉडी के अंदर फैट डिपोजिट नहीं हो पाती है, इसके कारण आपका वेट बढ़ता नहीं, या तो 1-2 किलो कम भी होता होगा, परंतु उसकी जो और हानियां हैं, जो मॉडल्स की हमने बात की कि बस हेल्थ की बात को लेके ले रहे, परंतु स्किन पर बहुत बुरा प्रभाव है, चेहरे पर इतना बुरा प्रभाव होगा कि वह जो आपको बेनिफिट हुआ वो खत्म हो गया, पर साथ साथ में आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, तो इन सभी बातों का अगर विचार किया जाए तो छोटे से बेनिफिट्स के लिए कभी भी सिगरेट को टच नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो आपने फ्रस्ट्रेशन की बात अभी कही, कि वो भी ठीक है कि भी फ्रस्ट्रेशन को 1 सेकंड में शायद व्यक्ति भूल जाता है, और उसका कारण है कि उससे एसोसिएटेड जो दर्द है वो शायद कम होता है, ये जो ट्रंक्विलाइजर्स है उन्हें वो टेम्पररी बेनिफिट्स देते हैं, वो भले टेम्पररी बेनिफिट्स अच्छे भी है अगर प्रॉपरली डॉक्टर्स की राय के अनुसार थोड़े समय के लिए लिया जाए, फिर उसे सही रूप में छोड़ा भी जाए। आम व्यक्ति क्या करता है कि भी उसे जब जब स्ट्रेस होगी तभी वो सोचेगा कि एल्प्रेक्स की गोली ले लूं, वेलियम की गोली ले लूं, वो ठीक नहीं है, वह टेम्पररी एक्चुअल रिलीफ भी नहीं देता।
2: आई थिंक 90% आज की जनरेशन जो वर्किंग क्लास है वो यही करती है कि नींद नहीं आ रही है तो एल्प्रेक्स ले लिया जाए, एल्प्रेक्स तो बहुत हल्की है, कोई परेशानी का कारण नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ड्यूरिंग एडिक्शन, मैं एडिक्ट भी हूँ एल्प्रेक्स की, क्या मेडिटेशन में कर सकती हूँ, और क्या वो मुझे जो एल्प्रेक्स का असर मुझ पर पड़ रहा था उससे ज्यादा असर दे सकती?
0: एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक उससे पहले हमें रूट को ढूंढना पड़ेगा कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है. यू नो, कोई ना कोई बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं. तो सिर्फ बाहर से उसके सिम्टम को नहीं देखें, लेकिन वो रूट प्रॉब्लम क्या है. और स्पिरिचुअलिटी हमें वो रूट को एड्रेस करने की कोशिश करेगी कि अगर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन है या करियर में कोई मतलब एनी सिचुएशन आउटसाइड, तो उसको फेस करने की पावर देगी. अभी हम एडिक्शन से तो ठीक है, हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट एड्रेस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो प्रॉब्लम फिर ट्रिगर होगी तो वी विल अगेन गो बैक टू दैट, क्योंकि हमने वो तरीका नहीं ढूंढा कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. हमने वो चीज का सेवन किया और अपनी प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए भूल गए. लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसको फेस करना, उसकी पावर तो किसी भी मेडिकेशन से नहीं आएगी, किसी भी ड्रग से या इवन मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग से भी वो पावर तो नहीं आ सकती कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कैसे ढूंढे.
2: तो
0: दैट विल गिव दैट
1: परमानेंट सोल्यूशन.
0: And you'll never have to, yeah, and you'll never have to go back to it. It's a permanent, you know, de-addiction.
2: वही relapsing की जो हम बात करते हैं कि relapse हो जाते हैं. डॉक्टर गिरीश पटेल, अगर हम देखें तो एक और जो कारण नजर आता है कई बार वो ये कि try करना चाहते हैं, जो खासकर इस जो जिस उम्र की हमने पहले भी बात की थी youth की, वो जो एक experimenting mode है. पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो एक काफी powerful factor है. एक बार कर लेने से कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करके देख लेने देता हूँ, एक कष्ट लगा लेते हैं, या एक बार एक प्याला पी के देखने में क्या हर्ज है, एक वो कितना इफेक्ट हो जाता है एक बार का पिया भी.
1: क्योंकि मेजोरिटी एक बार के बाद तुरंत छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन वो होता नहीं. एक बार आपको उससे थोड़ा भी बेनिफिट हुआ, आप चाहते दोबारा भी मैं लूं. दोबारा जब टेंशन होगा या तो फिर सेकंड टाइम तो थोड़े प्रेशर में भी आप ले लेंगे, क्योंकि एक बार तो मैंने लिया है.
2: तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे आदत नहीं पड़ी थी.
1: नहीं, इवन सेल्फ कंट्रोल भी था ना. एक भी बार जब तक व्यक्ति ने नहीं लिया है, उसके ऊपर वो एक इमेज है कि मैंने एक बार भी सिगरेट नहीं पी. वो एक जिसको सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं, आपकी एक इंटरनल स्टेट होती है. जब एक बार पी ली फिर तो इजी है, चलो अभी दूसरी बार भी वेरी इजी. नाउ नो उस समय जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है.
0: कोई भी बात आप एक बार कर लेते हैं, चाहे वो गलत चाहे वो अच्छी बात, दूसरी बार करना बहुत इजी हो जाता है. है ना, तो अभी तक है कि मैंने कभी नहीं किया, तो जब तक आप अपने आप को वहां पे रख सकते हैं कि मैंने कभी नहीं
2: वो
0: किया,
2: मेरे लिए प्राइड का एक्चुअली मोमेंट होता है
0: एंड आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होती है. लेकिन और इंटरनल एक आपने अपने लिए बैरियर भी तो रखा है ना कि मुझे ये नहीं करना है, लेट्स से मैं नहीं करूंगा ये. लेकिन जिस दिन हमने वो बैरियर को तोड़ दिया, अपने लिए ही क्रिएट किया जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल को तोड़ दिया, तो पहली बार तो शायद ट्राई करने के लिए किया तो वो सेल्फ कंट्रोल था, थोड़ा सा किया रुक गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम शायद कोई प्रॉब्लम आने पर करेंगे. उस टाइम शायद उतनी पावर ही नहीं है कि वो सेल्फ कंट्रोल मेंटेन
2: करे, क्योंकि ऑलरेडी पावर प्रॉब्लम में है, सिचुएशन ऐसी है, मेंटली हम इतने.
0: और वर्तमान समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चैलेंजेस तो जीवन में आते ही रहेंगे, तो मुझे वो सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आई हैव टू क्रॉस ऑल दीज चैलेंजेस बिना इन चीजों का सेवन किए. तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट.
2: अगेन अगर मेल फीमेल रेशो की बात करते हैं, खासकर अगर हम व्यसनों की ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन के साथ भी आज ये हो रहा है कि स्मोक और ड्रिंक जो है वो एक पार्ट ऑफ सोशल कल्चर की जो बात है. ये भी बात कही जाती है कि वुमेन की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैज टेक प्लेस विद हर बॉडी. तो उस उनकी बॉडी पे क्या डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, ये भी एक मिथ है जिसके बारे में हम आपसे चाहेंगे कि खुलासा कर लें.
1: मोर ऑर लेस इफेक्ट तो सेम है, परंतु बॉडी सिस्टम डिफरेंट है. इट्स डेलिकेट, लाइक नो स्किन इज डेलिकेट, पर उस पर ज्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट होगी. तो इसे नहीं, और सिस्टम्स पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी. हार्मोनल सिस्टम डिफरेंट है, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हार्मोन्स दैट इफेक्ट इज लिटिल डिफरेंट. या तो वही जो इफेक्ट मेल को होती है, वो फीमेल को भी सारी इफेक्ट्स होनी ही होनी,
2: और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिव सिस्टम है.
1: और दूसरा बहुत बड़ा कारण कि टोबेको का यूज जो इतना बड़ा है, वो लोग फिल्मों से सीखे. फिल्म में शाहरुख खान प्रॉब्लम में है, बस वो एक सिगरेट पीता है, उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया. और लोग उसे
2: और
1: एसोसिएट
2: एडवर्टाइजिंग
1: करते
2: जिस तरह की एडवर्टाइजिंग जिस तरह की
1: हैं।
2: आ रही है, ऐसा लगता ही है कि अब मिल बैठेंगे यार, तो मतलब ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
1: एडवर्टाइज तो फिर भी ठीक है कि हम सोचते हैं कि भी ये कंपनी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए की है, पर तो फिल्म में ये बात नहीं होती,
2: वो रियलिटी दिखा रहा है।
1: फिल्म में तो ये है कि भाई नहीं, थोड़ी धुआं निकालो और तुम्हारा गम खत्म हो जाएगा, गम को तुम भूल जाओगे, और वो तो पहले से ही एसोसिएट कर रहा है फिल्म के साथ देखने वाला कि जो हो रहा है वो मेरे ही जीवन के साथ है, और जब वहां हो जाता है तो यूथ इमीजिएटली उसे लेने
2: बिल्कुल पिकअप कर लेते हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल, एक और जो बात शिवानी सामने मतलब जो दिख रही है दिखती है वो ये कि एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं मेरा बेटा अगर स्मोक कर रहा है, मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैं क्या कर सकती हूँ, ओके कर रहा है तो अब ये है ही, आज का दौर यही है कि करेगा ही करेगा, या मेरा बेटा ड्रिंक्स में चला गया है, या मेरी बेटी भी स्मोक कर रही है, तो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ या समाज के साथ जो यूथ को एक्सेप्ट करना हमने बहुत आसान कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन माई हैंड एट ऑल, दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर, मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या हम रोक नहीं सकते, क्या हमारे हाथ में नहीं है एज अ पेरेंट?
1: बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं कि भी एक तो आप कहते हो बिल्कुल सही है कि भी आज माता पिता उसको एक्सेप्ट करने लगे हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसे प्रिवेंट करना बहुत पॉसिबल था, कि अगर पहले से थोड़ा से कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते तो उसे वो प्रिवेंट कर पाते। और सेकेंड, अब एक्सेप्ट तो नहीं करो बिल्कुल ठीक है, परंतु डांटो भी नहीं,
2: डांटो भी नहीं, लेकिन बात तो करो,
1: बात नहीं हो तो उसको तो ओवरकम करना ही है।
2: नहीं, वो तो बड़ी मजेदार बात ये है कि वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ हमसे छुपके पीता है, हमें नहीं पता चलने देता, हमारे सामने नहीं पीता, तो ये हमारी कम से कम इज्जत करता है, तो ये
1: कल तो पीने लगेगा आपके सामने भी,
2: नहीं पीता आपके सामने लेकिन पी तो रहा है, तो ये हमारा माइंडसेट को क्या आप क्या कहेंगे?
0: आई थिंक हमें इतना प्यार देना पड़ेगा उसमें। अभी नॉर्मली क्या होता है, अगर पता चल जाता है तो वी स्टार्ट लुकिंग डाउन, यू नो, एंड हम बार बार वो रब इन करते हैं, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और क्रिमिनल जैसा उसको फील करने। अब उसने वो एडिक्शन शुरू की बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, इधर लोनलीनेस और यू नो टेंशन, और अब जब उसको ये नेगेटिव एनर्जी पेरेंट्स से मिलती है तो वो एडिक्शन से बाहर निकलने के बजाय और भी उसकी तरफ चला जाते हैं। तो हमें पहले तो बहुत प्यार देकर उसको, जो आपने कहा एक्सेप्ट, उस सेंस में नहीं एक्सेप्ट, लेकिन बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढना पड़ेगा,
2: उसकी लत को, उसकी एडिक्शन को एक्सेप्ट ना करें,
0: एडिक्शन को नहीं। अभी हम ज्यादातर क्या करते हैं, उनकी जो बात है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझने की बजाय, अगेन द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज एक्सेप्ट कर ले कि ये तो आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, तो कहां किस बात को एक्सेप्ट करना और उसको गाइड करना, रादर देन यू नो ट्राइंग टू मेक हिम साउंड कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यस रॉन्ग बट इन व्हाट वे, एंड अगेन फाइंड द सोल्यूशन टू द रूट प्रॉब्लम कि क्यों इन्होंने ये करनी शुरू की, अगर पीयर प्रेशर, अगर मीडिया, तो वो भी आप घर में बैठ कर यू नो हैव अ डायलॉग, एंड आई थिंक पेरेंट्स डू इट बट इट्स विद नेगेटिव एनर्जी कि वो करते हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं, गलत कर रहे हो, गलत, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो परिवर्तन नहीं करने
2: देते, फिर वो कहीं ना कहीं कि आपने हमारा ट्रस्ट ब्रेक किया,
0: वो सब जो फैक्टर्स आ जाते हैं, तो भले हम कर रहे हैं, हम उन्हें रोकना भी चाहते हैं इन बातों से, लेकिन विधि को ठीक अपनाना पड़ेगा कि पहली बात सोल्यूशन रूट पे निकालना पड़ेगा कि क्या उनके कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, कहीं कॉलेज स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पेरेंट्स के साथ ही तो नहीं बॉन्डिंग हो रही है, कहीं स्टडी में कुछ प्रॉब्लम, वो बातों को जरूर देखना पड़ेगा, रादर देन नहीं बस आप इसको छोड़ दो, वो तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन जब आप सोल्यूशन ढूंढेंगे रूट पे ये बात तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। एंड ओवरऑल आपने अपना घर में कल्चर कैसे बनाकर रखा है, किस तरह से बनाकर रखा है, वो ऑटोमेटिकली बच्चों को इन बातों की तरफ जाने से रोक देगा।
2: इनफैक्ट अगर गिरीश पटेल जी देखें कि बहुत से फादर्स को मैं से जानती हूँ कि हाँ मेरा बेटा जो ड्रिंक्स शुरू करेगा वो मेरे साथ बैठ के ही शुरू करेगा,
0: तो कल्चर है,
2: ही विल हैव हिज फर्स्ट फैग विद मी, where are we hitting, how wrong it is, I would like you to tell it how wrong it is.
1: No, it's definitely no, ये एक extreme negative है कि भी आप total उनको सोच रहे भी मेरे साथ पी के सीखेगा, उल्टा आपको तो example बनना है कि भी मैं छोड़ दूं ताकि मेरा बेटा भी उसे कभी छुएगा तक नहीं। और शिवानी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि भी हमारा डायलॉग है ही नहीं, उन्होंने तो कहा कि डायलॉग है परंतु नेगेटिव है, परंतु बहुत सारे ऐसे में परिवारों को जानता हूं कि जो पैसा दे देंगे, उनको एटीएम कार्ड दे दिया, जब चाहे जितने पैसे निकाल लो बैंक से, परंतु समय नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात है उनको समय देने की, तो उनके साथ
0: डायलॉग पता भी नहीं चलता कि वो ले रहे हैं ऐसे कोई चीज, नहीं ले रहे हैं क्योंकि उतना टाइम स्पेंड नहीं करते।
2: बिल्कुल, और मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी आसानी से हम उसे एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, हम एफर्ट क्यों नहीं करना चाहते कि हम बदल सकते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स का यही देखा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? पहले मैं ये चाहूंगी, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो इस टाइम पे देख रहे हैं, जिनके या तो बच्चे या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स एडिक्शन में है स्मोकिंग के या ड्रिंक के, आप ये बताइए क्या पेरेंट्स, चाहे वो बच्चा एडिक्ट हो गया है, मतलब जिसको स्मोकिंग को हमने इतना नेचुरल मान लिया है या ड्रिंकिंग को, क्या उन्हें वापस ला सकते हैं?
1: डेफिनेटली ला सकते हैं और लाना ही चाहिए। जितना जल्दी आप कदम उठाएंगे वो इजियर होगा, नहीं जितनी आप देर करेंगे वह हैबिट स्ट्रांग होगी और आगे चल के दिक्कत हो सकती है, और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। कि ये बच्चे को वापस, वो एक समझो लैप्स हो गया परंतु उससे मुझे अब वापस लाना है और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बल बिजनेस थोड़ा कम हो कोई बात नहीं है, और कहीं सोशल बातें मैं ना भी कर पाऊं, परंतु बच्चे के लिए समय देना है ना, उसको कि कैसे अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना है, कुछ उसे टेक्निक सिखानी है कि जिसके द्वारा वह कम्प्लीटली वापस आ जाए।
2: शिवानी, एक्सेप्टेंस, जैसे आपने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट द सिचुएशन बट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट की अगर हम बात करेंगे, तो उसके बाद के जो कदम होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया। अब क्योंकि पीयर प्रेशर में भी है, लोग भी अपने दोस्तों को तो वो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ऐसे पेरेंट कर सकते हैं कि उन्हें वापस लाया जाए?
0: उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करके, अप्रिशिएट करके उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, और यही चीज अगर बचपन से उनको रियलाइज करवाई जाए कि आपकी अप्रिसिएशन उस चीज में जो आपके अंदर है, बजाय कि जो आप बाहर करते हैं। वी डोंट अप्रिशिएट, मतलब वी डोंट वांट टू अप्रिशिएट यू ओनली फॉर व्हाट यू अचीव, बट वी अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू आर एज अ पर्सन। तो अगर हमने बचपन में ये नहीं किया, वी विल हैव टू डू इट नाउ। एंड उसके इमोशनली भी उसकी चीजों को देखा जाए कि इन तरफ जाने से आपका फ्यूचर क्या है, या हम क्यों इस तरफ जा रहे हैं जब आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतने स्किल्स हैं, तो यू डोंट नीड टू बी अ विक्टिम टू यू नो दीज स्मॉल थिंग्स। और वो प्यार से, स्नेह से, और कहीं ना कहीं परिवार में ये चीज रॉन्ग है, जो हमने कहा था फैमिली की राइट्स एंड रॉन्ग्स हमें फिक्स करने, इस चीज को रॉन्ग है अगर हम रॉन्ग मानते, तो इसको बचपन से हमें इंस्टिल करना पड़ेगा। और अगर फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो पेरेंट्स का तो शायद उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इफ दे टेक इट इन द राइट डायरेक्शन, देन पेरेंट्स की बात ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट करेगी।
2: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा जो आज की बातचीत रही, क्योंकि कई कारण सामने आए, जब कारण एक बार पता चल जाए तो हम सोल्यूशंस की तरफ तो चल ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, लत पड़ने की, व्यसन की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं, तो कितने सारे कारण सामने आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था तनाव से मुक्ति, उसके बाद पीयर प्रेशर है, या फिर मैं कुछ कर दिखाने की बात करता हूँ, या लगता है कि मैं एक हमारे सामने रोल मॉडल है वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब भी उस फेलियर को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों में, जो युवा शक्ति में नजर आई, वो ये बात कि अगर हमारा बच्चा इस तरफ बढ़ रहा है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। आज बहुत आसान लगने लग गया है कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन खुद अपने मन में हम ये विश्वास रखें कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने बच्चे को वापस लौटा कर लाएंगे, तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें खत लिख सकते हैं, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर फोन भी कर सकते हैं।
3: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी और हमारी ये मुलाकात यूं ही चलती रहेगी। आगे कुछ और बातें करेंगे कि किस तरह से जो आदतें हमारे लिए मजबूरी बन जाती हैं, उन्हें हम दूर भी कर सकते हैं। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: का पंछी।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: अठारह सौ सत्तावन के मुक्ति संग्राम में एक नाम ऐसा है जिसने काल, परिस्थिति और परिवेश को धता बताते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया और समय की शिला पर अपने आप को दर्ज कर लिया। वो नाम है कानपुर की देवी अजीजन का। तात्या टोपे की प्रेरणा और फौजी शमशुद्दीन के मार्गदर्शन में इस नर्तकी ने आजादी की लड़ाई में सशक्त भूमिका निभाई थी। वो सैनिक छावनियों में जाकर नृत्य और संगीत के मार्फत भारतीय सैनिकों में देश प्रेम का जज्बा पैदा किया करती थी। वे खुफिया तौर पर अंग्रेज टुकड़ियों की खबरें भी लाती। इस वीरांगना ने अपनी एक टोली भी बनाई थी जिसका नाम था मस्तानी टोली। इस टोली की सैनिक महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। बगल में हथियार लटकाए नंगी तलवार से दुश्मनों पर वार पर वार करती अजीजन शहर की गलियों और छावनियों में निडरता से घायल क्रांतिकारियों की मदद करती। वे कभी भोजन लेकर तो कभी रसद और हथियार लेकर सैनिक छावनियों में पहुंच जाया करती। कमल और रोटी के प्रतीक से लड़ा गया 1857 का संघर्ष जब हर जगह कुचला जाने लगा तो दमन चक्र के इस सिलसिले में अजीजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेनापति हेवलॉक ने अजीजन के रूप और लावण्य पर मुग्ध होकर उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे माफी मांगकर अंग्रेजों की सेवा करें तो मृत्यु दंड से बच सकती हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित स्वाभिमानी अजीजन ने हेवलॉक की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दो टूक उत्तर दिया कि गोरों की पूर्ण पराजय देखने के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं, आप मेरे प्राण ले सकते हैं, मुझे झुका नहीं सकते। इस पर अंग्रेज अधिकारी भड़क उठा और उसने अजीजन को गोली मारने का हुक्म दे दिया। बलिदानी अजीजन ने हंसते हंसते कुर्बानी दी और क्रांति के इतिहास में वरांगना से वीरांगना बनकर अमर हो गई।
2: अरे बेटा सुन तो सुन, ले ये चाय पी ले।
3: आया काका।
2: अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह तेरी जुबान पे मुजरा चढ़ा हुआ है।
3: काका झाड़ू तो साफ लगाई ना।
2: नहीं रे वो बात नहीं है रामदीन, अरे काका के ढाबे को तुझसे अच्छा कौन चमका सकता है, है? फिर मुजरा। अरे ये सवेरे सवेरे तुझे क्या हो गया है, कहीं नाच तो नहीं देखाया तू है?
3: अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, आपन तो रामजनियों की शकल तक नहीं देखे। अरे बीमारी है ये, दुनिया का सत्यानाश कर दिया है इन्होंने।
2: नहीं बेटा यहाँ तो तुम गलत हो।
3: अरे ये तुम कह रहे हो काका, वो भी इस उम्र में?
2: हाँ बेटा, एक ऐसी वेश्या भी थी जिसने इस देश की खातिर कुर्बानी दी।
3: हमारी खुशी के लिए कुर्बानी, जरा हम भी तो जाने कौन थी वो।
2: अजीजन बाई।
3: देश के लिए कुर्बानी एक वेश्या ने?
2: हाँ कानपुर की मशहूर वेश्या।
3: वेश्या और कुर्बानी, हम मान ही नहीं सकते।
2: नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ अजीजन बाई के बारे में। बात तब की है जब हम गुलाम थे।

0: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। या अल्लाह, आज तो नोटों की बरसात हुई है। हाय हाय, मैं मर जाऊं। जुग जुग जिए मेरी लाड़ो, मेरे आंखों का नूर। चल चल रानी, तेरी नजर तो उतार दूं पहले। अरे कौन है? अरे देख तो गुलाबो, कौन है?
2: कोई वर्दीधारी है अम्मी जान।
1: लो, पहले सरकार आती है, पीछे पीछे उनके रखवाले चले आते हैं। चैन नहीं इस मुई रियासत को भी। अरे गुलाबो, भेज दे मेहमानों को भीतर।
0: ढाए हैं जुल्म तूने, हाय कितने सितमगर। है दर्द भरे जख्म जिगर पर उभर रहे।
3: हम जख्मों को मरहम लगाने ही तो आए हैं।
0: हम जख्मों तक पहुंचने की इजाजत ही नहीं देते।
3: इजाजत तो आप पहले ही दे चुकी हैं।
0: आज आपके मन में कोई उलझन है?
3: हाँ अजीजन, आज तुमसे मिलने शमसुद्दीन नहीं, अंग्रेजी फौज का एक हिंदुस्तानी सिपाही आया है।
0: ओ, तो हुजूर का सूबेदारी की धौंस जताने का इरादा है?
3: सूबेदारी नहीं अजीजन, खुददारी। खुददारी मेरी जान।
0: नमक तो अंग्रेजी सरकार का खाते हो?
3: अंग्रेजी सरकार का नहीं, हिंदुस्तान का नमक।
0: और सरकार?
3: हिंदुस्तानी नहीं है
0: तो?
3: यही तो टीस है दिल में अजीजन।
0: क्या? मैं समझी नहीं।
3: मैं समझाता हूँ तुम्हें। नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे ने पिछले एक साल से ही हिंदुस्तान को जगाना शुरू कर दिया है।
0: उससे क्या होगा?
3: पेशावर से कलकत्ता तक क्रांति होगी अजीजन।
0: क्रांति?
3: हाँ क्रांति। और इस मुहिम में हमें तुमसे भी बड़ी उम्मीद है अजीजन।
0: मुझसे उम्मीद?
3: हाँ अजीजन, तुमसे।
0: क्यों मजाक कर रहे? आप जानते हैं ना, मैं एक नाचीज, कनीस, एक कोठे में कैद, जमाने के आगे नाचने को मजबूर, समाज की गंदगी हूँ।
3: पर यहाँ आते तो सभी हैं ना अजीजन।
0: फिर भी वे बेदाग हैं, और हम पर लगे दाग जिस्म को रौंदते हुए हमसे सैकड़ों सवाल पूछते हैं। आखिर कब तक और क्यों? हम क्या जवाब दें?
3: अब जवाब देने का वक्त आ गया है अजीजन। अपनी मोहब्बत को इस बाजार से उठाकर आजादी के सरोकार में बांट कर देखो अजीजन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा।
0: सवाल का जवाब? मजाक छोड़िए सूबेदार साहब, जिसकी जिंदगी खुद एक मजाक बन गई हो, उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं है।
3: तो तुम भूख से तड़पते हिंदुस्तानियों को देखो, जाकर देखो अजीजन, फिरंगियों के जुल्मों से कितने बेचैन हैं लोग।
0: बेचैन? हमसे ज्यादा बेचैन और कौन हो सकता है? जानना चाहते हो हमारी बेचैनी, तो सुनो, आज हम यहाँ हैं तो इन फिरंगियों की वजह से। हमारे वो जख्म आज तक नहीं भरे हैं।
3: तो अपनी जिंदगी औरों के जख्म भरने के लिए कुर्बान कर दो अजीजन।
0: हम?
3: कुछ मत सोचो अजीजन, कानपुर में बिठूर के नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने पूरी तैयारी कर ली है, और फौजी बैरक में मैंने और सूबेदार टीका सिंह ने सब समझा दिया है। बस एक बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिल लो अजीजन।
0: हमें सोचने के लिए वक्त दे दो।
3: अब सोचने का वक्त नहीं है अजीजन।
0: करना क्या होगा हमें?
3: अपने नाच गाने के हुनर से हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार करो।
0: हमें मंजूर है।
3: वाह, आज तक तो तुम्हें मोहब्बत करता था, पर अब इबादत करने को जी चाहता है अजीजन। खुदा हाफिज।
4: गुलाबो। ओ गुलाबो।
5: जी कहिए अज्जूबी।
0: अम्मी जान कहाँ है?
5: बाहर गई हैं। पर बात क्या है अज्जूबी, बड़ी बेचैन लग रही हैं आप।
0: एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मेरे सरकार ने।
5: कैसी जिम्मेदारी?
0: आजादी की पहली जंग में शामिल होने की।
5: आजादी की पहली जंग?
0: हाँ गुलाबो, हमारे देश को पिछले 100 सालों से गुलाम करने वाले जालिम अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने जंग छेड़ दी है।
5: तो
0: ये जंग कानपुर में भी होगी, इसमें हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है।
5: आपको यकीन है आप ये कर लेंगी?
0: यकीनन।
5: हथियार चला लेंगी?
0: हथियार भी उठा लूंगी, अब तो सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बान।
5: और मुझे क्या करना होगा?
0: तुझे मेरा साथ देना होगा।
5: मैंने आपकी तरह मुल्क की खिदमत की कसम नहीं उठाई है।
0: ये एक ही मौका है इस गंदी काया को पाक करने का। अरे हम तो मिट गए और आगे भी मिटना हमारा मुकद्दर है, पर आने वाली नस्ल के लिए कुछ करके मिटना बेहतर है। गुलाबो, आखिर हम भी कितना सहे, कब तक इस नरक में यूं ही।
5: बस अज्जूबी, आगे नहीं सुना जाता। मैं आपके साथ हूँ, बताइए करना क्या है।
0: हम एक टोली बनाएंगे, मस्तानी टोली। एक तरफ हम अंग्रेजी कैंप से खबरें लाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजियों के बीच बगावत के जज्बात पैदा करेंगे। अब तक लोग हम पर फूल फेंकते थे, अब हम फौजियों को कमल का फूल पेश करेंगे।
5: कमल का फूल?
0: कमल का फूल जोश पैदा करेगा और बगावत का पैगाम देगा।
5: वो हमारी बात मानेंगे?
0: जब हमारे लिए दुनिया छोड़कर यहाँ कोठे तक आते हैं तो हमारे कहने पर मैदाने जंग में क्यों नहीं जाएंगे?
5: और क्या करना होगा?
0: फौजी टुकड़ियों के अलावा हमें गांव वालों को भी समझाना है। हम गांव और शहर के हर मोहल्ले और गली में जाएंगे रोटी लेकर।
5: रोटी?
0: पहले गीत गाएंगे और प्रसाद में रोटी बांटेंगे, जो आजादी के लिए उठने वाले हर कदम का वादा होगा।
5: कैसा वादा?
0: ये जंग रोटी के लिए है। और हाँ गुलाबो, हमें मैदाने जंग में रसद यानी गोला बारूद हथियार पहुंचाना, जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने के अलावा जंग के मैदान में अपना जौहर भी दिखाना है, समझी?
5: और वो चुड़ैल अम्मी जान हमें बाहर जाने की इजाजत देगी?
0: वही तो, उसके लिए सुन, हमें एक नौटंकी करनी होगी।

0: अरे गुलाबो, ए गुलाबो, या अल्लाह क्या हुआ मेरी बच्ची को? एक ही तो नूर है इस कोठे पे, अरे इसकी चमक से कानपुर तो क्या दूर दूर के रजवाड़े भी आबाद है। अब तक तो लंदन तक जा पहुंचा है इसका नशा, मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लग जाए। हाँ क्या हुआ इसे?
1: अम्मी जान, हमें सुआ रोग तो नहीं हो जाएगा?
0: हाय अल्लाह, सुआ रोग, सुआ रोग, तौबा तौबा, तेरे दुश्मनों को हो, हट निगोड़ी कहीं।
1: क्यों नहीं होगा अम्मी जान?
0: अरे गुलाबो,
1: देखती नहीं सुबह से आज थमकते हैं करम जले, देर रात तक नाचते नाचते पाँव टूटते हैं और फिर बदन, न दिन को चैन न रात को आराम।
0: अब करूँ भी तो क्या करूँ, हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम तो है, अजीजन अजीजन। अरे कल ही हकीम को बुलवाकर इसकी दवा दारू करवाती हूँ, और वो मौलवी साहब है ना, उनसे ताबीज भी बनवा के लाती हूँ। हाय मेरी बच्ची,
1: दवा ताबीज से कुछ नहीं होने वाला।
0: तो
1: इसे सुकून की सांसें चाहिए, और वो मिलेगी गंगा घाट पे खुली हवा में।
0: तो घाट लिए चलते हैं लाड़ों को? अरे मेरी लाड़ों की सलामती के लिए तो सब कुछ मंजूर है मुझे।
1: पर अम्मी जान, मैं अकेली गंगा घाट पर?
0: मेरी चांद को अकेले कैसे भेज दूंगी घाट पर? ये मुई है ना गुलाब और निगोड़ी, खा खा के मुटिया रही है।
1: मैं ही क्या अम्मी, ये सलमा, रेशमा, लैला, नूरी भी तो खा खा के मोटी हो रही है। घाट पे दौड़ लगाएंगी तो जरा नजर टिकने लायक बने।
0: हाँ ये बात सही है,

0: अजीम उल्लाह खान आए हैं, अजीम उल्लाह खान आए हैं, अजीम उल्लाह खान साहब।
1: क्या हुआ लड़कियों, क्या हुआ?
2: आदाब अर्ज अजीजन।
1: अरे आप, आदाब।
2: तात्या टोपे पूछ रहे थे कि क्या हुआ।
1: भैया से कहिए, मस्तानी टोली बन चुकी है। गंगा घाट पर नन्हे मियाँ ने हथियार चलाने की तालीम भी शुरू कर दी है। लड़कियों में जोश है, आप खुद ही देख लीजिए हमारी मस्तानी टोली को।
2: कोठे की चौखट से शुरू हुआ ये जज्बा इतिहास में अमर हो जाएगा जीजन।
1: हमारी टोली मैदान जंग में वो जौहर दिखाएगी कि
2: तुम्हारी टोली को बहुत जल्द सेना में जाना होगा। जब से सेना ने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से मना किया है, अंग्रेज जोर जबरदस्ती में लगे हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना होगा जीजन।
1: तो यहाँ से हम सीधे बैरक में ही जाते हैं। खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
1: चलो रे लड़कियों।

0: वाह अजीजन भाई वाह, बाहें फड़क उठी, आपका ये रंग भी खूब है।
1: ये लो भैया कमल का फूल। बस एक ही गुजारिश है, आखिर कब तक सहोगे ये जोर ये जुल्म? अब वक्त आ गया है जागने का, गुलामी की चौकसी की जगह आजादी के लिए हाथ उठाना होगा आप वीरों को।
0: तुम ठीक कहती हो अजीजन, हमने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने नए जुल्म शुरू कर दिए हैं।
1: इन फिरंगियों ने कोड़ों की मार और बेइज्जती के सिवा हमें दिया ही क्या है? जहां सिपाहियों के जौहर पर मराठे और निजाम से जागीर के तोहफे मिलते थे, अरे तोहफे तो दूर, हमसे अपना धर्म भी छीन रहे हैं ये जालिम। मत भूलो कि ये वही फिरंगी सरकार है जिसमें जनरल वेलेसली ने घायल सैनिकों को गोलियों से भूनने का हुक्म दिया था। उन मरे हुए साथियों की आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब आपकी तलवार उठेंगी, बंदूकें चलेंगी। अब हमारी हुंकार फिरंगी राज को देश निकाला करके ही दम लेगी। 31 तारीख को सब कुछ लाल हो जाएगा। आओ कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ। आजादी लोगों को भीख में नहीं मिलती, आजादी दुश्मन से लड़कर ली जाती है। जिन राहों पर छिड़का जाता है गर्म खून, उन राहों पर चलकर आजादी आती है।

0: कर खा लो, फिर नई बनवा के बगल वाले गांव में भिजवा देना। याद है ना, 31 तारीख को मंगल काम होना है, सबको पूजा की सुपारी बनना है, समझ गए ना?
1: अरे लाओ जीजन लाओ अपनी आजादी की रोटी।
0: रोटी की लड़ाई में जीत अपनी ही होगी भैया।
2: सर हैवलॉक, आई थिंक कानपुर में भी गड़बड़ होने वाला है।
3: नो भारत नो, हैवलॉक के होते ऐसा नहीं हो सकता। इंडियंस आर टू सबमिसिव, वह कुछ नहीं कर सकता। अगर म्यूटनी हुआ तो पहला हमला खजाने पर ही होगा, उसका क्या करें?
2: सर उसका सेफ्टी नाना साहब पेशवा करेगा।
3: नाना?
2: यस सर, नाना। ही इज ए टॉलरेंट हिंदू और उसके पूछ को हमने अभी ही तो कुचला है।
3: एक्सीलेंट। और बारूद खाना?
2: उसे भी नाना को दे सकते हैं।
3: ब्रिलियंट। हे नाना को बुलाया जाए।
2: सर हमने नाना को पहले ही बुला लिया है। He is about to come.
3: Yeah. Very good, Mr. Barden. I am impressed.
2: Welcome, Nana Sahib. Aiye.
3: How are you?
4: Upar wale ki daya aur aapki dua se theek hoon.
2: Nana Sahib, hum apne khazane aur armoron ki safety ka zimma aapko saupna chahte hain.
4: Aap nischint rahein. आपके कहे अनुसार हमारे सिपाही सुरक्षा के लिए आ चुके हैं, और कुछ?
2: बट नाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर सिक्योरिटी?
4: हमेशा की तरह आपकी महिलाएं और बच्चे हमारे बिठूर के राजमहल में रह सकते हैं, हमारे सिपाही उनकी चौकसी करेंगे।
2: थैंक यू, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा।
4: याद रखने के लिए ही तो किया जा रहा है बर्डन साहब।

0: कुछ भी हो, ये मौलवी साहब की बात मन में बैठ जाती है भैया।
1: राम राम।
0: राम राम अजीजन, राम राम।
1: राम राम। ये लो भैया रोटी, भारत माँ का प्रसाद, सब मिल बा

0: जिंदाबाद।
1: नाना साहब पेशवा
0: जिंदाबाद।
1: विठूर के नाना साहब पेशवा को हम अपना राजा चुनते हैं। नाना साहब की
0: जय। जय।
2: नाना साहब की जय हो। हम छावनी के फिरंगियों को नहीं छोड़ेंगे।
3: जनरल व्हीलर बीवी बच्चों सहित गंगा घाट पर अपने बनाए किले में जा बैठा है साहिब।
4: कितने होंगे?
3: लगभग 1000।
4: किले का घेराव किया जाए।
3: वो देखो, शांति का झंडा।
4: युद्ध रोक दिया जाए।
5: आप लोग हमें गोला बारूद हथियार सौंपते हैं, हम आपको इलाहाबाद पहुंचा देंगे।
6: मजिस्ट्रेट होला सिंह और तात्या टोपे, आप जाकर सत्ती चोरा घाट पर 40 नौकाओं की व्यवस्था करें और इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम चलते हैं। चलिए तात्या टोपे।
7: इन्हें तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ही होगा।
3: हाँ जी जन, चलिए नौका तैयार है।
8: कितना टाइम लगेगा इलाहाबाद जाने में?
3: कोई देरी नहीं, चंद मिनटों की बात है, अभी घाट पर उतार देते हैं। पर मौत के घाट।
2: खत्म कर दो इन जालिमों को।
1: रुकिए,
9: नाना साहब और तात्या टोपे आ गए हैं।
4: इंसानियत के नाते स्त्रियों और बच्चों को हाथ न लगाया जाए।
2: इंसानियत का हुक्मनामा आखिर कब तक साहेब? इलाहाबाद में इंसानियत नहीं बरती गई थी, पर पेशवा का हुक्म सराखों पर।
4: कुल कितने लोग बचे हैं?
3: 4 पुरुष, 125 स्त्रियां और बच्चे।
4: इन्हें बीबी गढ़ कोठी में भेज दिया जाए।
3: जो हुक्म।
4: क्यों किया तुमने अजीजन? देखो चीखों से गूंज उठा बीबीगढ़।
2: बीबीगढ़ तो औरतों की चीख से गूंजता ही रहा है साहेब। हिंदुस्तानी औरतें 100 बरस चीखी हैं और ये गोरी सिर्फ एक दिन। हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ है साहेब।
4: लेकिन ये मानवता के खिलाफ है।
2: आप मानवता की बात कर रहे हैं? फिरंगियों ने इलाहाबाद में जो कयामत ढाई उसका क्या?
4: इसमें बीबीगढ़ की अंग्रेज महिलाओं का क्या दोष?
2: इलाहाबाद में सैकड़ों हिंदुस्तानी औरतों को जिंदा जला डाला था। उनका जुर्म क्या था महाराज? सारे भारत में जितने अंग्रेज मारे गए उतने अकेले इलाहाबाद में नील ने मार डाले। एक अंग्रेज के पीछे हमारा एक गांव जला डाला इन दरिंदों ने। और अब हम इंसानियत की बातें करें? माफ कीजिए, आप ही ने कहा था ना कि जिस दिन फिरंगियों ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखे थे उसी दिन युद्ध होना निश्चित था। समय अब तय हुआ है। ठीक उसी तरह ये कत्ल होना तो उसी दिन तय था जिस दिन इलाहाबाद चीखा था। अंजाम आज दिया गया है। इस पर भी आपकी राय में अगर मैं अपराधी हूँ तो बंदी आपके सामने है। आप जो सजा देना चाहे दे।
10: ये वक्त सजा का नहीं है। फिरंगी शहर में घुस आए। अजीजन, तुम्हें आखिरी बार जान फूंकनी होगी।
2: जो आज्ञा भैया।
5: अजीजन, अजीजन, अजीजन, सब कुछ खत्म हो गया अजीजन।
2: क्या कहते हो नन्हे मियाँ? नहीं, मैं ये नहीं मानती।
5: मानना ही होगा अजीजन।
2: नाना साहब।
5: नाना साहब ने बिट्टू छोड़ दिया है।
2: और भैया,
5: तात्या टोपे ग्वालियर की तरफ गए हैं और टीका सिंह को फांसी।
2: हमारी ताकत बिखर गई, हमारा कानपुर जल रहा है।
5: चलता हूँ अजीजन, किसी भी समय फिरंगी आ सकते।
2: आप जाइए, जाइए यहाँ से।
11: अच्छो भी फिरंगी फौजी, भागो भागो।
2: नहीं, अजीजन भागने वालों में से नहीं है। अभी बताती हूँ जालिमों।
12: गेट हर।
13: यही अजीजन है।
12: तुमने मारा सबको?
2: हाँ, मैंने मारा।
12: ओह, आई डोंट बिलीव दिस, बट व्हाई?
2: गुनहगार थी वो।
12: अगर तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे।
2: माफी? अरे माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक तो तुम हमारे देश में घुसे, ऊपर से राज हथिया लिया और फिर जुल्म बिठाए, वो भी इतना कि कांप उठा हमारा हिंदुस्तान। पर अब हम जाग गए हैं, एक को मारोगे तो हजार खड़े हो जाएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अंग्रेजी राज का नाश नहीं हो जाता।
12: तुम्हारी कोई लास्ट विश?
2: फिरंगियों का देश निकाला,
14: देश निकाला,
2: देश निकाला।
15: Shut up! Hey!

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम माय लैपटॉप। मैं अक्सर आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूँ, लेकिन पहले आज कुछ सुनाना चाहूंगा। He says, you need to learn how to select your thoughts. जो आप पिछली बार कह रही थी ना, you need to learn how to select your thoughts just the same way you select your clothes every day.
2: How sweet.
1: देखा, ये भी एक होमवर्क है ना।
2: hmm.
1: This is a power you can cultivate. मैं आपसे पूछ रहा था ना कि कभी ऐसे होता है, कभी वैसे होता है, करना कैसे, कभी लड़ता हूँ, कभी झगड़ता हूँ मन से, फिर मन को हमने बच्चा बनाया है, बहुत मेहनत की। तो यहाँ कल्टीवेट, दिस इज अ पावर यू कैन कल्टीवेट इफ यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ सो बैड। वर्क ऑन द माइंड। यू नीड टू लर्न हाउ टू सेलेक्ट योर थॉट्स जस्ट द सेम वे यू सेलेक्ट योर क्लोथ्स एवरी डे। दिस इज अ पावर you can cultivate. If you want to control things in your life so bad, work on the mind. That's the only thing you should be trying to control.
2: Beautiful. Now underline the last line. That's the only thing you should be trying to control. That's the line which has to be underlined. एंड कंट्रोल मीन्स नॉट इन द नेगेटिव वे। यू नो, कई बार हम कहते हैं मन को कंट्रोल करना है, मन को दबाना है। नहीं, कंट्रोल मीन्स दैट्स द ओनली थिंग जिस पर आप अटेंशन दो, ये किस दिशा में जा रहा है, इसको क्या करना है, क्या सोचना है, जो हमने इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रख दिया था। और जब हमने फिर वो, आपने बहुत सुंदर बात शेयर की कि मन को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे, ये लाइन वो ही बता रही है। एंड इतनी सुंदर फर्स्ट लाइन थी कि जैसे आप रोज सुबह सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या पहनना है, उसी तरह आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। देखो, व्हेन वी चूज आवर ड्रेस टू वेयर इन द मॉर्निंग, या यू चूज योर परफ्यूम दैट यू विल यूज इन द मॉर्निंग, हम क्या क्या सोचते हैं, ये ड्रेस, कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी, कौन सी ड्रेस पहनकर आई गो आउट इन टू, अच्छा कौन से इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस राइट है वो भी देखते हैं, फिर कौन सी ड्रेस लोग वहां पर अप्रिशिएट करेंगे, ये सारी चीजें सोचकर फिर वो ड्रेस चूज करेंगे। नाउ कौन सी थॉट मेरे लिए राइट है, कौन सी थॉट मुझ पर अच्छी लगेगी।
1: वैसे जैसे सुबह सुबह अलग कपड़े पहनते हैं,
2: नाइट
1: डिनर हो तो अलग पहनते हैं,
2: right.
1: वैसे ही सुबह सुबह की थॉट्स एकदम प्योर, अच्छी, पवित्र से शुरू करें।
2: And तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझ पर अच्छी लगनी चाहिए वो थॉट। This is very important. We'll never dress shabbily, na. जो चीज हम पर सूट नहीं, कहते ना ये आप पर सूट नहीं कर रही चीज, हम अपने थॉट्स को चेक करें ना, कौन सी थॉट मुझ पर सूट करती है, कौन सी थॉट मुझ पर नहीं सूट करती है। प्योरिटी, पावर, रॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, ब्लिस, ये मुझ पर सूट करती
1: है। आप तब से ब्लिस ब्लिस कह रही हैं, तो ब्लिस हमारा मतलब, ब्लिस का क्या, हैप्पीनेस ही मतलब हो ना।
2: हैप्पीनेस से भी एक स्टेप ऊपर,
1: ब्लिस कनेक्टेड विद गॉड।
2: हर शब्द का एक जैसे ऑपोजिट होता है, हैप्पी अनहैप्पी, राइट। हर एक का एक, तो सुख दुख, शांति अशांति, ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं है। ये अपने आप में एक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आनंद, यू नो, एक अलग ही मन की स्थिति। कई बार जैसे कहते नहीं, तो अपनी ही स्थिति मस्त है ये, एकदम
1: आनंद आ गया।
2: दिस इज ब्लिस। नाउ व्हेन वी से बीइंग ब्लिस मींस दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुडे, बी एन एम्बोडीमेंट, अ पर्सनालिटी ऑफ ब्लिस। कहेंगे आपके ऊपर ये सूट करता है, पर्सनालिटी ऑफ ब्लिस। ये पर्सनालिटी सारा दिन में जहां जाएगी तो कैसी खुशबू फैलाएगी, इसको जो देखेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे। इसीलिए जो कहा कि आप जो ड्रेस कैसे चूज करते हैं, ये सब सोच के चूज करते हैं ना, इवेंट कौन सा, मुझ पर कैसी अच्छी लगेगी और लोगों को क्या पसंद आएगी। सिमिलरली बीइंग ब्लिस मींस इफ मेरी स्थिति वो ब्लिस में है, छोटी छोटी बातों में उलझती नहीं है, छोटी छोटी बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर देती है, सहज है, सरल है, यहाँ ज्यादा पकड़ के नहीं रखे हैं चीजें, इजी यहाँ, तो खुशबू जो मुझसे फैलेगी, वाइब्रेशन जो मुझसे रेडिएट होगी, बिकॉज द थॉट्स दैट वी क्रिएट इज लाइक आर परफ्यूम, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है हमारे चारों तरफ। इसीलिए कोई कमरे में एंटर करे तो उसकी एनर्जी फील्ड उसके साथ एंटर करती है। जैसे आप जो परफ्यूम लगाएंगे, अब लगाई तो आपने है सिर्फ, लेकिन आप जहां भी जाएंगे वो खुशबू हर एक को मिलने वाली है, बिकॉज दैट्स द परफ्यूम यू चोज टू वेयर दिस मॉर्निंग। तो जब वो परफ्यूम आप लगा रहे हैं, यू टेक केयर दैट यू स्मेल गुड, बिकॉज एवरी वे यू गोइंग टू कैरी दैट स्मेल द होल डे। सिमिलरली जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी एनर्जी फील्ड है, हम जहां जाए हमारी एनर्जी फील्ड हमारे साथ जा रही है। बी केयरफुल।
1: जैसे बच्चे सुबह मुझसे मिलने आते हैं कमरे में, तो वो पहचान जाते हैं कि डैडी ने अभी पूजा खत्म की।
2: यस, क्योंकि एनर्जी फील्ड,
1: नहीं धुआं, उसकी खुशबू, उसकी अगरबत्ती,
2: राइट,
1: एटमोस्फियर, और जैसे
2: नॉट ओनली दैट, उस समय क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट पूजा खत्म की है, आपकी अपनी सोच, तो वो वाइब्रेशन बन गई ना कमरे की पूरे। तो उस समय पर जो आएगा उस रूम में, उसको फील कैसे आएगी?
1: मैं यही कहना चाहता, जैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे यू नो, अगर वही कोई और चीज होती तो ये बात बच्चे जो एंटर करता है वो ये लाइन नहीं कहेगा कितना अच्छा कह रहा है, लेकिन यार कुछ गड़बड़ है, मैं बाद में मिलता हूँ।
2: तो एनर्जी फील्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, 50,000 से 60,000 विचार एक दिन के अंदर, 50,000 to 60,000 थॉट्स पर डे। एम आई टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी आई क्रिएट द होल डे? बातें तो आएंगी, मतलब परिस्थितियां आएंगी, अभी हम जर्नी पर हैं, तो हम अभी रिएक्ट करेंगे, हर्ट होंगे, अपसेट होंगे। अब एक प्रैक्टिस कितना लंबा खींचेंगे? नाउ दिस प्रैक्टिस, ओके, वी कैन नॉट मूव फ्रॉम येस आई यूज टू गेट हर्ट एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग हर्ट एट ऑल, या आई यूज टू गेट एंग्री नाउ आई एम नॉट गेटिंग एंग्री एट ऑल। इट वोंट बी ब्लैक एंड व्हाइट राइट नाउ।
1: हर्ट को कितने घंटे खींचेंगे?
2: यस, क्योंकि उतनी देर,
1: दिन खींचेंगे, कितने साल खींचेंगे?
2: हाँ, अभी दिन और साल नहीं, अभी घंटे भी नहीं, अभी उसको छोटा छोटा करना होगा। दिस इज एटलीस्ट वॉट वी कैन स्टार्ट डूइंग, कि बात आई, बुरा लगा, सोचना शुरू किया उस डायरेक्शन में, सोचते ही जा रहे हैं, नाउ ओके इनफ, इससे ज्यादा नुकसान नहीं, सोच लिया, बीत गए 10 मिनट, बीत गया आधा घंटा, मेरी एनर्जी फील्ड।
1: मेरे भाई के बच्चे की शादी में नहीं बुलाया गया, तो 10 साल से याद आता है अभी तक, तो आप कैसे बोलेंगे?
2: No problem, याद आता है ना, अभी याद आता है, क्योंकि वो यहाँ पे है, रिकॉर्डिंग अभी भी है, बात उस टाइम जब हुई थी तो दर्द हुआ था, जिस दिन वो बात हुई, कोई बात हुई, दर्द हुआ,
1: अभी भी तो दर्द वापस आता है, वो थोड़ा
2: दर्द वापस नहीं आता, वो दर्द है ही, इसीलिए बात वापस आती है, माइंड में थॉट आती है, क्योंकि वो जो बात उस टाइम हुई थी उसको हमने आंसर नहीं दिया। इसीलिए अपने इश्यूज को रोज रात को सोने से पहले रिजोल्व करना बहुत जरूरी है।
1: क्या दूं मैं इसको आंसर, लंबा नहीं खींचने के लिए?
2: लंबा नहीं खींचने के लिए, सपोज मुझे किसी ने नहीं बुलाया ना शादी पे, नहीं
1: बुलाया। मैंने बुलाया,
2: हाँ,
1: अपने बच्चे की शादी में, आप मुझे अपने बच्चे की शादी में, दूसरे बच्चे की, तीसरे में भी नहीं बुलाएंगे?
2: नहीं बुलाया, ओके, सिचुएशन जो आई, मुझे नहीं बुलाया। अब अपने मन को आंसर दे दें सारे, कि शायद मेरा इस समय उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, वो किसी बात से मुझसे हर्ट है, जो मैं शायद उनसे पूछ के क्लैरिफाई भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, कोई बात उनको तकलीफ दे रही है इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, और तो कोई रीजन हो नहीं सकता। ये सब क्लियर करके, बट हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे बुलाया नहीं, देखो बुलाया नहीं, मैंने उनको हमेशा बुलाया, उन्होंने बुलाया नहीं, क्या समझते हैं वो, मैंने उनके लिए इतना किया। दिस विल क्रिएट हर्ट। हर्ट इज नॉट द सिचुएशन कि बुलाया नहीं, लेकिन नहीं बुलाने पर मैंने क्या क्या सोच करके यहाँ पकड़ लिया, इससे अच्छा 5 मिनट निकाल के उनसे ही बात कर ले। अगर बात खत्म अंदर नहीं कर पा रहे तो बाहर बात करके आंसर पूछ ले, और कुछ भी नहीं है तो उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे हैव अ चॉइस।
1: कोई मुझे अगर नहीं बुलाए तो मैं जाके भीख मांगूंगा उनसे कि
2: वो
1: आप
2: बात
1: मुझे
2: नहीं
1: बता
2: है।
1: दो कि
2: उन्होंने मुझे,
1: पहले आपने मुझे भीख के कटोरे में कुछ नहीं दिया, फिर और मांगू, प्लीज ये बता दो क्यों नहीं दिया।
2: अगर वो बात मुझे परेशान कर रही है, और जितनी देर परेशान कर रही है, मतलब एक थॉट चल रही है जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो जितनी देर हम सोचेंगे तो भी तो उन तक वाइब्रेशन जा रहे हैं।
1: यही थॉट होता है, ये हुआ क्या मुझसे, कौन सी गलती होगी,
2: तो वो गेस करने से अच्छा पूछ लें सामने वाले से।
1: बंदा बात ही नहीं करता है, बुलाता नहीं है, तो आपको उसको पूछने के लिए फोन करेंगे?
2: इतनी देर पकड़ के रखना, सी दिस इज ईगो विच विल ब्लॉक ना, कि मैं क्यों पूछूं। इफ इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है तो बिना पूछे ही बातों को साइड पे। मेन चीज है उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे हैव अ चॉइस।
1: कोई मजबूरी होगी,
2: रीजन ना, कोई भी रीजन, फैमिली
1: सिचुएशन। उनका मन नहीं होगा, उनकी बीवी नहीं बोली होगी, उनकी माँ नहीं बोली होगी, या उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, बच्चे खुद नहीं बोले होंगे कि उनको नहीं बुलाना।
2: Perfect.
1: कुछ
2: Answer.
1: कितना कुछ तो होगा,
2: कितने ऑप्शंस हैं।
1: अब उसको बेचारे को खोरे देंगे yeah. और मैं पूछूंगा और वो मजबूर है
2: yeah.
1: तो उसको और तकलीफ दूं पूछ के? वो कैसे बोलेगा कि यार मेरी वाइफ ने बोला या मेरा बच्चा नहीं चाहता था, वो कैसे बताएगा?
2: आपने कुछ एपिसोड पहले कहा था, देन इफ वी आर हर्ट वी शुड गो एंड टेल देम दैट वी आर हर्ट। एंड अभी आपने कहा कि क्या जरूरत है उनको जाकर,
1: और हर्ट हो जाएगा ना
2: हाँ।
1: और उसको झूठ बोलने पे मजबूर करूं।
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेजोरिटी टाइम इश्यूज बाहर रिजोल्व हो नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव से राइट होता है। उस स्थिति ऑफ हर्ट में हम अपने अपने दृष्टिकोण से इतने अटैच्ड होते हैं कि हम दूसरे के दृष्टिकोण को सही है वो समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को सिर्फ अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड कई बार उसमें इतनी बातें और निकल आती हैं, बहुत सारी पास्ट की बातें और निकल आती हैं कि पहले चोट इतनी थी
1: और बढ़ जाएगी,
2: चोट और बढ़ जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्लैरिफिकेशन हो सकती है, विल आई गेट अ राइट एक्सप्लेनेशन विच विल बी कन्विंसिंग, या एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर मुझे ही अपने आप को कन्विंस करना है पहले ही कर लेते हैं। रिजोल्व द इशू, आंसर द क्वेश्चन, पुट इट असाइड। पकड़ के रखेंगे तो 10 साल भी पकड़ के रख सकते हैं।
1: वो आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा सूट किया भाई, उनका मन नहीं किया या उनकी कोई मजबूरी होगी।
2: हम भी कई लोगों को नहीं बुलाते हैं, सबको नहीं बुला सकते, और कई बार हम किसी बात से परेशान है, हमारा नहीं मन है किसी से बात करने का। आई हैव अ चॉइस, यू माइट नॉट लाइक इट बट आई हैव अ चॉइस। अब आपको बुरा लगा कि मैंने नहीं बुलाया, बट मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, और अब आप वो करें जिससे आपका मन ठीक हो जाए। अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल मी, सो रिजोल्व योर इशू। अब सपोज बात रिजोल्व नहीं हुई, पुरानी कोई बात है, अब 10 साल पहले सपोज ये बात हुई थी और ये अभी भी थॉट सडनली आ जाती है, या तो अब रिजोल्व कर दें आंसर दे के, अच्छा रिजोल्व नहीं भी कर पाते हैं, वो थॉट्स चलने शुरू हो गई। जैसे ही वो थॉट्स चलने शुरू हो गई, मूड चेंज हो जाएगा, फीलिंग पर इफेक्ट आने लगेगा। एट दैट टाइम एटलीस्ट टेल योर सेल्फ कितनी देर ये सोचना है, और फिर सोचते सोचते अगर औरों से भी बात करने शुरू कर दी वो, दिस इज अनदर वेरी क्रिटिकल थिंग, अगर औरों से भी वो एक कॉन्वर्सेशन में आ गई बात, तो वो एनर्जी फील्ड मैग्निफाई हो जाएगी। जैसे हमने उस दिन देखा, गुस्सा बीइंग लेवल पे है, डूइंग लेवल पर आ गया, मैग्निफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हर्ट है वो बात है, उसको अंदर रिजोल्व करें। जितना डिस्कशन में आ गई, और अगर डिस्कशन में भी सभी ने उसी डायरेक्शन में इनपुट दे दिया, रीइन्फोर्स हो जाएगा, वो नहीं करना। तो बात आ रही है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टॉप इट फास्टर। अगर पहले मैं आधा घंटा मूड अपसेट होता था, बिकॉज नाउ अवेयरनेस है, पहले अवेयरनेस नहीं था। करना तो है, इजी है।
1: वो आपका बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, कब तक खींचेंगे, कितना खींचेंगे, कितना yes. उसका एक लिमिट बना दो भाई,
2: कितना टाइम उदास रहना है आपको इस तरह से।
1: चलो एक घंटा रहना है,
2: ठीक,
1: दो घंटे रहना,
2: गो अहेड।
1: मतलब वैसे जैसे आपने कहा, मन को बच्चा बच्चे से पूछेंगे
2: yes.
1: भाई कब तक अभी तुम करने वाले।
2: इट्स लाइक बीइंग विद अनदर पर्सन। जैसे दो लोग बैठे हैं और एक का चेहरा उदास है तो हम सामने वाला ऐसे ही तो नहीं बैठ जाएगा ना, कहेगा क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या आपको परेशान कर रहा है, फिर वो आपको आपकी बात बताएगा, फिर आप उसकी बात को हल्का करेंगे, छोड़ो ना, क्या हुआ, इतनी सी बात, छोड़ो, मूड ठीक करो अपना। मूड ठीक हो जाता है, हम औरों का मूड ठीक कर लेते हैं, दूसरे लोग हमारा मूड ठीक कर लेते हैं। हम सबको मूड ठीक करना तो आता है ना, लेकिन सिर्फ क्या है, हम एक दूसरे का मूड ठीक करते हैं, क्या करके सोच को एक अलग दिशा में लेकर जाते हैं। बट वी कांट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। इसी तरह अपने आप से भी तो बात कर सकते हैं, दिस इज सेल्फ काउंसलिंग,
1: मन बच्चा।
2: अब क्या हुआ, चल रहा है, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कब तक इस बारे में सोचना है, कब तक इस बारे में सोचना है, ये दर्द हो रहा है, फैल रही है, एनर्जी फील्ड खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, उन तक भी वो वाइब्रेशन पहुंच रही है, बी केयरफुल. अब क्योंकि अवेयरनेस है, वी विल ऑल एक्सपीरियंस दिस, कम से कम नहीं, अगर पहले आधा घंटा था, आज आप 20 मिनट पे रुक जाएंगे, आप रुक जाएंगे क्योंकि अब आपको अवेयरनेस है. और फिर 20 मिनट से और कम और कम और कम, ये होता जाएगा. वी नीड टू टेक केयर, क्योंकि अदरवाइज जितना ज्यादा खींचा, जितनी ज्यादा देर खींची, वो नलका बहता जा रहा है. सो आई नीड, ये हम कर सकते हैं. थॉट्स का अगर हम सारा दिन में देखें, जैसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो नेक्स्ट चीज इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है वो है फीलिंग. यू नो समटाइम्स वी नॉट एबल टू चेक एट द लेवल ऑफ थॉट्स, इसे आई एम नॉट फीलिंग नाइस टूडे, आज अच्छा नहीं लग रहा, मूड अच्छा नहीं है, मन उदास है. फीलिंग लेवल पर हम चेक करते हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग गुड. तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपनी फीलिंग को ठीक कैसे करें. हाउ डू आई फील बेटर नाउ, फीलिंग लेवल पर ठीक नहीं होगा. आपको सूक्ष्म रूप से चेक करना पड़ेगा, क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे थे मैं काफी देर से, फीलिंग मैनिफेस्ट हो गई है उससे, फीलिंग को चेंज करें, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, लेट मी फील बेटर, मैं क्या करूं फीलिंग को चेंज करने के लिए. फीलिंग नहीं चेंज हो सकती है. गो बैक, सिट एंड चेक, क्या सोच रहे थे मैं पिछले एक घंटे में, किसके बारे में सोचा, कौन सी बात सोची जिस वजह से ये फीलिंग क्रिएट हुई है. थॉट, नेक्स्ट स्टेज इमीडिएटली फीलिंग. अब जो फीलिंग मैं आपके बारे में कई बार क्रिएट कर दूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे फिर फील लाइक दैट, इट डेवलप्स माय ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन, कि ये ऐसी बात है. दुनिया के प्रति भी मेरी जो वृत्ति है, पहले सोच फिर फीलिंग, एटीट्यूड वृत्ति बन जाती है. अब जैसी एटीट्यूड होगी वैसा मेरा व्यवहार होगा. जो मैंने आपके बारे में बहुत समय से सोचा होगा वो मेरा एटीट्यूड बनेगा. एटीट्यूड के अनुसार ही मैं बात करूंगी, व्यवहार करूंगी, कर्म में आ जाऊंगी. आज बहुत सारी बातें हो रही है, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड पे वर्क नहीं होगा. थॉट क्या क्रिएट की थी जिससे ये एटीट्यूड बना. अब जो एटीट्यूड कर्म में आ गया, एक्शन में आ गया, नाउ एनी एक्शन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हैबिट स्टार्ट हो गई थॉट से. अब ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर पर्सनैलिटी. आज हम पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं, कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसा सोचना है, वो तो नहीं मुझे किसी ने सिखाया. तो प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं. प्रोडक्ट की फर्स्ट स्टेज क्या थी, बचपन से कैसा बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे लिखना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या सोचना है.
1: मैंने झगड़ा करते हुए लोगों को देखा, वो कहता है तुमने ऐसा सोचा ही क्यों, तुमने ऐसा सोचा ही कैसे, सोच कैसे लिया, बाप बेटे का झगड़ा चल. लेकिन बाप ने कभी ये नहीं सिखाया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कि सोचना क्या है, कैसा सोचना है और सोच को कैसे बदलना है. बस उस पर सोचा भी कैसे, इतनी घटिया सोच आपके अंदर,
2: यू नो. लेकिन वो सीखा ही नहीं ना कभी भी, किसी ने नहीं सिखा.
1: उसकी कोई स्कूल में भी क्लास नहीं है,
2: हाँ, नहीं
1: माँ बाप भी नहीं देते,
2: नहीं देते,
1: दोस्त भी नहीं देते, तो क्या करें.
2: जब यही नहीं सिखाया कि सोच हमारी क्रिएशन है, थॉट्स आर माय क्रिएशन, यही नहीं पता था.
1: अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ. जब जब आप कहती है ना हमने ये क्रिएट किया थॉट, ये क्रिएट, मैंने कहा बार बार ही बोलते हैं क्रिएट किया, मैं कहाँ झगड़ा करना चाहूँ, मेरे पास मेरी तो थॉट आपे ही आती है.
2: ये सारा दिन में देखना है, अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी इसकी अवेयरनेस कि ये, अच्छा जो अपने आप भी आती है आपने कहा, तो कहाँ से आती है.
1: मेरे अंदर से.
2: तो अंदर भी किसने जमा करके रखी थी जहाँ से आई.
1: मैं नहीं.
2: तो कभी क्रिएट की होगी, रखी होगी, अब अपने आप आ रही है.
1: मतलब आपका ये सिंपल भाषा में, मैंने डस्टबिन में कचरे में आम वाम खा के घुटली सब रख दिया और उसकी बास आती जा रही, स्टिंक होते जा रहा है,
2: जो होगा ही नहीं अंदर,
1: तो मैंने ही फेंका.
2: यस, मैंने कभी ना कभी क्रिएट करके वो रखा है. जैसे आपने कहा उन्होंने शादी पे नहीं बुलाया, वो बात मैंने पकड़ के रखी है, तो अब आ रही है ना. वो बीच बीच में कभी भी आ जाती है, वो फिर से याद आते हैं तो आ जाती है. कहीं और वो किसी और फंक्शन पे अब बुला लेते हैं तो वो बात याद आती है, तब तो नहीं बुलाया था.
1: आपने मुझे अभी कहा था कुछ के हम दिन में हजारों पता नहीं कितनी थॉट सोचते हैं। कुछ देर पहले या कुछ एपिसोड्स पहले आपने एक बार ये भी कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन ऑन द बॉडी। तो हर बार मैं सोच रहा था बीच में जैसे आप बात कर रही थी, बेचारी बॉडी, अभी ये सोचे अभी वो सोचो अभी ये सोचो, मतलब कितना फ्लक्चुएट करो।
2: See, it is basically the quality of the thought.
1: हाँ, तो हर thought की आपने कहा था ना कि reaction होता है
2: effect on the cells of the body.
1: Every each and every cell.

0: हाँ, ये पॉइंट भूल गया था मैं,
1: इफेक्ट
0: ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी के ऊपर हमारी थॉट का रिएक्शन जब होता है, तो मैं इतनी थॉट सोचूं और इतना गंद सोचूं, इतना दुखी रहूं, तो मेरे सेल्स का क्या हाल होता होगा?
1: वो सिर्फ आपकी बॉडी पर नहीं इफेक्ट होता है, ईच एंड एवरी थॉट का पहले आपके मूड पर इफेक्ट होता है. सी, जैसा थॉट वैसी फीलिंग. तो इसका मतलब ईच एंड एवरी थॉट से हमारी फीलिंग डेवलप हो रही है. तो मतलब मेरा मूड, जिसको हम कहेंगे, ईच एंड एवरी थॉट से मेरा एटीट्यूड, एक्शन, पर्सनालिटी, फिर ईच एंड एवरी थॉट से मेरा शरीर, फिर मेरी ईच एंड एवरी थॉट वातावरण में जा रही है, वाइब्रेशन, फिर मेरी ईच एंड एवरी थॉट जिनकी प्रति क्रिएट की है
0: उनको भी जा रही है.
1: तो मेरी हर थॉट का रिश्तों पर असर होता है, मेरी हर थॉट का हर जगह असर हो रहा है.
0: और आपने जो कहा था पहले कि जिसके बारे में हम, जिसको हम एक थॉट भेजते हैं, वहां से रिटर्न भी आती है.
1: हाँ, वो तो फिर वो तो नेक्स्ट स्टेज, लेकिन पहले मेरी एवरी थॉट का क्रिएशन और मेरी पर्सनालिटी बन रही है ना. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी. अब ये पर्सनालिटी, ये सबसे डीप, ये पर्सनालिटी सारा दिन सब कुछ कर रही है, राइट? और जैसा ये व्यवहार करती है, जो ये कर्म करती है, वो हमें पता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा, वो फल हमें मिलेगा. तो पर्सनालिटी क्रिएट्स डेस्टिनी. तो माय ईच एंड एवरी थॉट इज राइटिंग माय डेस्टिनी. हाउ कैन आई अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? How can I afford to create a wrong thought? And then after creating all the wrong thoughts, we are going to other people and asking them, how do I change my destiny? मैं अपना भाग्य कैसे बदलू? मेरा भाग्य यहाँ, इसीलिए तो देखो भाग्य यहाँ बोलते हैं ना. यहाँ क्यों बोलते हैं? मेरा भाग्य ही ऐसा है. यहाँ क्यों? यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ मेरा भाग्य खोटा है. यहाँ क्यों है भाग्य? क्योंकि यहाँ सोच है और हर सोच मेरा भाग्य लिखते हैं. तो भाग्य में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, सोच को बदलते हैं.
0: किसी ने ये कहा, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते.
1: ब्यूटीफुल. या
0: जिसके हाथ ही नहीं है.
1: yes.
0: तो फिर आपका पॉइंट ये करेक्ट हो गया,
1: राइट?
0: लिखी तो यहाँ जाती है.
1: आप देखो हाथ की लकीरें,
0: और जिनके हाथ नहीं होते तकदीर.
1: हाथ की लकीरें कैसे बनती है? चेहरा कैसे बनता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. मन को बदलते जाए चेहरा बदलता जाएगा. मन को बदलते जाएं हाथ की लकीरें बदलती जाएंगी. मन को बदलते जाएं स्किन का टेक्सचर बदलता जाएगा. ये तो आउटवर्डली, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, अंदर तो बहुत कुछ हो रहा होगा. ये जो चीजें दिखती हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है मन की सोच से. ये तो विजिबल चेंजेस इन द बॉडी है. हाथ की लकीरें बदल जाती हैं. तो इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन माय डेस्टिनी जब हमें समझ.
0: 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स करके जो लोग आते हैं, अरे कितना बदल गए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप, या छुट्टी पे जाके आते हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, हॉलीडे मनाया, शिमला घुमा, इधर घुमा, बच्चों के साथ घुमा, सडनली चेहरे पे,
1: क्योंकि वो सारा जो कचरा था उसको निकाला ना.
0: चाहे वो मेडिटेशन आया फिर वापस शुरू हो गया
1: बाद में ना, बट वो थोड़े दिन का भी देखो प्रभाव, इट शुड बी अ प्रूफ फॉर मी ना, कि थोड़े दिन भी जो मैंने किया, चाहे मैं मेडिटेशन रिट्रीट किया, वो भी नहीं, आप सिर्फ आधा घंटा सत्संग में जाओ, पूजा करो, जहां आप इंटरनली कर रहे हो कुछ, नॉट के सिर्फ मुख सत्संग कर रहा है या पूजा कर रहा है, जहां आप सच में सोच के ऊपर अंदर वर्क कर रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, कर रहे हो, जिससे आपकी सोच बदल रही है, वो भी नहीं, आप सिर्फ बैठो और म्यूजिक सुनो, एंड अंदर को आए और आपका चेहरा देखे उस समय, कुछ नहीं हुआ ना, अभी बहुत टेंशन में थे, अभी बैठ गए म्यूजिक सुनने के लिए. अंदर अगर आपने अपनी थॉट्स को वो म्यूजिक सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते, थॉट्स को चेंज किया अगर, चेहरे पे दिखाई देगा. चेहरा तो इज इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड, इमीडिएट. इट्स लाइक योर चेहरा देख के पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, मालूम पड़ेगा कि अंदर कितना शांत है या अशांत है. चेहरा देख के पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका क्या हालचाल है, वो तो चेहरे और चलन में दिखाई देता है. सो लेट्स टेक केयर ऑफ द थॉट्स. आज जो इतने कॉस्मेटिक सर्जरी, मेकअप, इतना सब कुछ जो किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए किया जा रहा है कि कहीं ये सारी चीजें

0: दिख रहे हैं, इसको कैसे छुपाया जाए, कैसे छुपाएंगे? चेहरा भी छुपा देंगे तो खुशबू को कैसे छुपाएंगे, अपनी वाइब्रेशन को? व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस एफर्ट, जैसे आप हमेशा कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, इधर क्यों नहीं मेहनत कर लेते?
1: सच में
0: कितनी मेहनत करने के लिए रेडी है? अपनी सोच को चेंज करने की मेहनत. हम अपनी सारी थॉट्स को ब्रॉडली आज चेक करेंगे. 4 टाइप ऑफ थॉट्स में क्लासिफाई हो जाएगा. पॉजिटिव, जो हम सारा दिन सुनते हैं, प्योर क्लीन राइट थॉट, राइट थॉट, अच्छी थॉट, प्यार, कंपैशन, मर्सी, कोऑपरेशन, लव, ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो हमने एक रेयर चीज बना दी है. श्रेष्ठ चिंतन, एकदम श्रेष्ठ चिंतन, और उसका सिंपल चेकिंग है, साफ है, सही है, एंड चेकिंग कंफर्टेबल है, अच्छा फील हो रहा है उसका. क्योंकि राइट थॉट का सेकंड प्रोडक्ट होना चाहिए अच्छी फीलिंग, आई एम फीलिंग नाइस. तो पॉजिटिव. नेगेटिव ऑपोजिट, ईगो, एंगर, क्रिटिसिज्म, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, रिजेक्शन, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव, एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड. फिर एक बीच की, न्यूट्रल, ना कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं ना गलत सोच रहे हैं, सिर्फ कर्म के बारे में सोच रहे हैं, अभी ये करना है, अभी इधर जाना है, अभी ऐसे करना है, वो न्यूट्रल. एंड एक कैटेगरी वेस्ट, वेस्ट थॉट्स है, नेगेटिव नहीं है लेकिन वेस्ट है, जिसका कोई यूज नहीं होने वाला है, लेकिन सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, विच इज जनरली थिंकिंग टू मच अबाउट जो बीत चुका, पास्ट का चिंतन, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, या आने वाले समय का चिंतन, भविष्य या जो बीत चुका उसके बारे में सोचना. दोनों चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, बहुत सारी थॉट्स वेस्ट हो रहे हैं. तो आज बीच बीच में रुक रुक के, बीच में जस्ट स्टॉप, चेक कैसी वाली थॉट चल रही है, एंड कैन आई शिफ्ट फ्रॉम वन क्वालिटी टू अनदर. 60,000 अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी है, तो उस 60,000 जो मेरी प्रोडक्शन है, कितना पॉजिटिव, कितना न्यूट्रल, कितना वेस्ट, कितना नेगेटिव. आई द चेयरमैन, मन का मालिक, को अपनी इंडस्ट्री को बीच बीच में रुक कर इवैल्यूएट करने की जरूरत है.
1: वो बच्चे खेलते हैं ना बिजनेस का गेम,
0: ये
1: इतने रुपए का कार्ड ले लेते, अभी ये बनाएंगे, अभी ये खरीदेंगे. ये भी बहुत सुंदर गेम आपने बताया, और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. सिस्टर थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: नमस्कार. ओम शांति. थैंक यू सो मच.
2: लाइक वी चूज द क्लोथ्स वी वेयर, लेट अस चूज द थॉट्स वी क्रिएट. The thoughts which suit our personality, which are comfortable for us, and which will be appreciated by others. We create 50 to 60,000 thoughts in a day. Our thoughts become our energy field. Our energy field moves with us and radiates to everyone, like the perfume we use. Even if we create hurt, resolve the issue and reduce the time for which we will remain in pain. Else, we can carry it for months and years. Answer the mind and close the topic. Heal the pain. Our every thought is followed by a feeling. Feelings, over a period of time, develop our attitude. Attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates our destiny.
3: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें? अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। एक पूरी श्रृंखला हम तय कर रहे हैं जिसमें कितना कुछ जान रहे हैं। ये जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो पूरा एहसास है, ये हम इस सफर में तय करते हुए जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जब एक एक पर्दा हटता जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किताब का एक एक वर्क, एक एक अध्याय हम पढ़ते जा रहे हैं और फिर पूरा का पूरा जो सिनारियो है, जो दुनिया का सिनारियो है, उसको जान पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस जो कार्मिक फिलॉसफी की हम बात कर रहे थे पिछली कड़ी में, उसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, बहुत सी बातें हमने जानी है, बहुत अच्छा लगता है। अब इट्स अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल फीलिंग। और जो अगर हम पिछली कड़ी को देखें तो हमने उस कार्मिक फिलॉसफी की बात की थी, जो जिसके ऊपर शायद हमारे पूरे अगर हम देखें किसी भी धर्म के हो, हमारा पूरा जीवन खड़ा मिलता है।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो
1: एंड मेजोरिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस विल गेट आंसर्ड
0: एक्चुअली,
1: यू नो, अगर आप सीरियसली उसको समझने की कोशिश करें और किसी भी परिस्थिति में हो तो डिटैच होकर एक मिनट उस लॉ को वर्क करें, यू विल गेट योर आंसर।
0: एक लॉ जो हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था पिछली बार, वो ये कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और ये बात आई थिंक जब मैं छोटी थी, जब मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने पढ़ ली थी। और हर बार ये पढ़ते गए जानते गए, लेकिन जिंदगी में अपनाना और क्या बो रहे हैं और क्या पा रहे हैं, मैं तो यही समझ पाती थी कि मैंने पौधा कौन सा लगाया था। आज जाके इतने समय बाद ये बात क्लियर हुई है कि ये हमारे कर्म है, ये हमारा थॉट है।
1: वही बात हो गई ना, ज्ञान आत्मा हूँ ये भी तो पहले पता था। लेकिन अवेयरनेस, इसी तरह कार्मिक लॉ वर्क करता है। सुना था, मतलब ये बात तो इतनी बार सुनी है। एंड उसको न्यूटन्स लॉ से भी कंपेयर करते हैं, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी नो इट, बट आर वी अवेयर ऑफ इट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन? आर वी अवेयर ऑफ इट व्हेन वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन? यू नो, फिर अगर अवेयरनेस होती तो ये नहीं बोलना पड़ता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इफ आई रिमेम्बर कि एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, अब वो नीचे वापस आएगी और उतने ही फोर्स से आएगी, कहीं और नहीं चली जाएगी, वो मेरे पास ही आएगी। तो फिर जब वो मेरे पास गिरती है तो मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, ये कहाँ से आ गई मेरे पास,
0: क्यों आई,
1: वेयर हैज इट कम फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू। यू नो, कर्म इज लाइक रिपल्स इन द पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड के अंदर एक पेबल गिराते हैं, ऐसे एक छोटा सा पत्थर फेंकिए, बहुत सारी लहरें बनती है, रिपल्स बन जाती है और वो सारी ट्रेवल करती है उस पॉन्ड के अंदर। अब वो जाकर किनारे को हिट करके वापस आ जाती है। और कई जो रिपल्स हैं वो पॉन्ड के बीच में कुछ और पत्थर या कुछ और पौधे होंगे तो उसको हिट करके वापस आ जाएगी, लेकिन वापस हर रिपल आती है। सिमिलरली एवरी एनर्जी दैट आई क्रिएट, एवरी थॉट दैट आई क्रिएट, इट्स अ रिपल।
0: एवरी एक्शन ऑल्सो हैज एन
1: एक्शन से भी पहले, या दैट्स व्हाट, एवरी थॉट, वी कॉल थॉट ऑल्सो एन एक्शन। यू नो, तो स्थूल कर्म नहीं लेकिन सूक्ष्म में भी इसको कर्म, तो हर संकल्प वो एक रिपल की तरह है। ये यहाँ से निकलेगा, जिसके लिए क्रिएट किया गया था वहां पर जाएगा, उस टारगेट को हिट करेगा, वापस आएगा। नाउ द रिपल्स व्हेन दे आर कमिंग बैक, कोई रिपल तुरंत आ जाएगा वापस, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद। लेकिन जब वो 100 साल बाद आता है या 10 साल बाद भी आता है तो वी हैव फॉरगॉटन, यू नो, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम सो गए हैं फिर से। तो हमें ये भूल गया कि ये उसी का रिटर्न है जो एनर्जी मैंने बाहर भेजी थी।
0: तो ये जरूरी नहीं है कि हमें याद रहे। सी अगेन,
1: दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स।
0: हमें ये जरूरी नहीं है कि हमने क्या किया है,
1: ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा वैसे भी
0: कि हमने क्या
1: किया। हाँ, नहीं, क्या हमने गलत किया, वो तो करने के टाइम उसकी अवेयरनेस होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसको तुरंत कनेक्ट कर पाए। यू नो, वो वाला जो किया था ये उसका रिजल्ट है। नो, दिस इज एनर्जी फ्लोइंग आउट, कमिंग बैक, व्हेन, वेयर, आई माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। एंड सही बार जरूरी नहीं है उसी टाइम हो जाए ना, कुछ गलतियों का रिजल्ट तो हमें उसी टाइम मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये गलती की थी, ये सजा मिली है। लेकिन जब वो एक टाइम गैप के बाद होता है तब वो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारी एनर्जी इस तरह से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली।
0: एक बार सिस्टर शिवानी, हम दोबारा वो MIS सिस्टम जो हमारा है, जो पूरा कार्मिक फिलॉसफी का है, कि किस तरह से हमारा जो हम संकल्प करते हैं वो किस तरह से इंटेलेक्ट एक्शन में परिवर्तित करता है और फिर वो इम्प्रेशन बनता है एक बार और उस तक
1: लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड आई थिंक हर एक को ये बहुत अच्छी तरह से समझ के फिट कर लेना पड़ेगा ताकि हर टाइम करते समय वो साइकिल जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए. हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं माइंड बुद्धि उस पर निर्णय देती है इंटेलेक्ट और फिर वो कर्म में आ जाता है एक्शन. सो आई हैव टेकन अ थॉट डिसीजन एक्शन. जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसका इम्प्रेशन तो इट वेंट आउट लाइक दिस इम्प्रेशन बैक तो वो मार्क एक बन गया जिसको हम कहेंगे संस्कार बन गया. अब जैसा मेरा संस्कार बन गया है नेक्स्ट टाइम उस संस्कार की क्वालिटी के आधार पर संकल्प फिर डिसीशन फिर एक्शन फिर उसका संस्कार बनेगा. तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन एवरी टाइम. तो सपोज राइट नाउ किसी भी परिस्थिति की वजह से मैं बहुत दुखी हूं. आई एम फीलिंग लॉट ऑफ सोरो लॉट ऑफ पेन इनसाइड. तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. यू नो लेट्स स्टॉप लुकिंग फॉर द रीजन आउटसाइड. नॉर्मली क्या हो रहा है मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है. ही इज रिस्पॉन्सिबल शी इज रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल गॉड इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल गॉड इज रिस्पॉन्सिबल माई स्टार्स आर रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजी एवरीथिंग एवरीथिंग आई मीन वी जस्ट गो
0: इट हैज टू हैपन इट इज रिटन
1: डेस्टिनी मेरी लक खराब है. तो अनफॉर्चुनेटली जहां रीजन है उसको छोड़ के हम बाहर की तरफ देख रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपने पास देखना कि अभी मैं उदास हूं इसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में मैंने इस तरह की शक्ति को या इस तरह के इम्प्रेशन को बनाया था क्योंकि उस समय मेरे में शक्ति नहीं थी एक सही कर्म करने की एक सही निर्णय करने की. तो आई क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सोरो. नाउ एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग इन टू दैट सिचुएशन या एवरी टाइम आई एम मीटिंग दैट पर्सन यू नो कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर दर्द होता है या उनसे मिलकर नहीं लेकिन उनकी वजह से हमें दर्द मिल रहा है हर टाइम. शायद वो हमारे साथ नहीं है इसलिए दर्द हो रहा है कारण कुछ भी है बट आई यू नो आई अकाउंट देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि इनकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है. और जैसे आपने कहा वो अच्छा भी लगने लगता है थोड़े टाइम के बाद. तो वो अच्छा लगना मतलब तो हम उसको और भी ज्यादा रीइन्फोर्स करते जा रहे हैं उस संस्कार को और पक्का करते जा रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा संस्कार मैंने पहले क्रिएट किया था. अब फिर जब मैं कर्म में आ रही हूं उनके साथ मैं फिर से वही थॉट प्रोसेस से जा रही हूं फिर वो संस्कार पक्का होता जा रहा है. अब मुझे समझना होगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन उस इम्प्रेशन दर्द वाला है ना तो वो ही कर्म में आ जाता है. सी आई हैव क्रिएट इट्स लाइक सेइंग लेट्स फॉर एग्जांपल अ ब्लैक पिक्चर इनसाइड. अब वो ब्लैक पिक्चर ही एक थॉट क्रिएट करता है वो ही एक्शन में लाता है तो एक ब्लैक थॉट क्रिएट होता है एक ब्लैक एक्शन क्रिएट होता है. अब इस ब्लैक एक्शन का ही इम्प्रेशन
0: दोबारा
1: फिर से ब्लैक वाला बनेगा तो somehow वो साइकिल ही पूरा ब्लैक कलर का हो गया है. अब नाउ आई एम सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन लेकिन वो कलर ही ब्लैक है यहाँ पे तो बाहर क्या जा रहा है. तो वो फ्री होने की बजाय वो और भी ज्यादा
0: ब्लैक
1: पक्का होता जाता है क्योंकि जो अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी बाहर जा रही है वही एनर्जी फिर से आ रही है. तो वो अकाउंट खत्म होने की जगह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन सबसे पहली अवेयरनेस ये चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एंड वेन वी से जो कुछ इट मीन्स एब्सोल्युटली जो कुछ भी यू नो चाहे वो आपकी हेल्थ है चाहे वो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स है चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स है चाहे वो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है आई मीन जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग या चाहे वो हमारे घर में किसी बहुत नजदीक व्यक्ति का शरीर छोड़ना है वट एवर एवरीथिंग हर चीज जो मेरे साथ हो रही है उसका जिम्मेवार
0: मैं हूं.
1: उससे पहली बात स्टेबिलिटी आ जाती है कि ये कर्म मैंने कोई किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है ये अकाउंट मेरा क्रिएट किया हुआ था उसको सेटल मुझे करना पड़ रहा है तो उसका वाइज वेयर व्हाट हाउ स्टॉप.
0: लेकिन यहां ये जो कार्मिक थ्योरी है पूरी, कि मैं मानती हूँ मैंने मैंने कोई कर्म किया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन इस जन्म में तो मैं देखती हूँ अगर उसी व्यक्ति के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी भी या किसी भी सिचुएशन में मैंने कुछ वहां पे कुछ नहीं किया हुआ, तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, यू नो, देन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी बिकम्स रियली टफ.
1: सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो हु इज द आई?
0: द सोल.
1: द सोल, ये क्लियर हो गया. पहले ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज द आई मेंट
0: द बॉडी.
1: तो इट वॉज लाइक अभी मैं ये हूं ना, पहले जो मैंने किया वो जब मैं हम कह रहे हैं तो हम सोचते हैं पहले तो मैं नहीं थी ना, वो कोई और था. यू सी, वो हम कहते हैं वो पिछले जन्म में वो मुझे नहीं याद ना, लेकिन वी आर फॉरगेटिंग कि वो किसने किया था.
0: लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, पिछले जन्मों का ढोती जाऊं.
1: व्हाट इज मुश्किल इन दिस? नाउ यू सी, यस्टरडे यू वर वेयरिंग अ येलो साड़ी, टुडे यू आर वेयरिंग अ रेड साड़ी. जब आपने कल येलो साड़ी पहनी थी एंड आप मेरे से 500 रुपए बोरो करते हैं, ठीक है, मैंने भी आपको दे दिए, आप लेकर चले गए. आज आप आ गए रेड साड़ी पहनकर एंड आई से एक्सक्यूज मी कनुप्रिया, माई 500 रुपीज बैक.
0: मेरा मेमोरी लॉस हो गया बीच में फिर.
1: या दैट्स ओके, बट आई टू नीड माई मनी बैक.
0: बट देन अगेन आई एम नॉट लिविंग विद अवेयरनेस दैट आई डोंट हैव दैट मेमोरी.
1: राइट, बट आई नीड माई मनी बैक. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू मी विद लव, आई विल पुल इट फ्रॉम यू, आई विल स्नैच इट फ्रॉम यू.
0: बट देन दैट विल पेन मी.
1: दैट इज व्हाट इज हैपनिंग.
0: सो देन आई एक्सेप्ट. I should accept because I have a memory loss.
1: Right.
0: I don't remember that I had given you the money.
1: Right. But you have to remember that when I'm asking you for it, you had borrowed it from me. अब आप आकर कहें कि नहीं मैंने तो नहीं लिया था आपसे, क्योंकि आपने लिया था आपको याद नहीं है. आप कहेंगे उस टाइम मैं येलो साड़ी में थी.
0: नहीं, मुझे तो याद ही नहीं ना. See, again, this is what I'm saying.
1: ठीक है, fine, आपको याद नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज होने से आप बदले.
0: मैं नहीं बदली.
1: तो आपने ही बोरो किया था, अब आपको रिटर्न करना होगा. अब वो आप प्यार से करें या जबरदस्ती करें, करना तो आपको पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई. आपने बोरो किया था, कॉस्ट्यूम है ये भी, आज ये है, थोड़े साल बाद इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे. लेकिन इस कॉस्ट्यूम में जो आपके साथ अकाउंट बनाऊंगे, अगर आपको दुख दिया तो फिर कहीं ना कहीं वो दुख मेरे पास वापस तो आना ही पड़ेगा.
0: तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आज के वक्त में, आज इस कॉस्ट्यूम में, कानुप्रिया की जिंदगी में या किसी का भी नाम ले, उसकी जिंदगी में अगर दुख, जिसका वजह वो आज नहीं समझ पा रही, पिछले जन्म का कुछ कहीं कोई कार्मिक डेप्ट या कुछ अकाउंट चल रहा है, तो वो मेमोरी तो नहीं है.
1: कोई बात नहीं,
0: तब एक्सेप्टेंस.
1: इसीलिए तो मेमोरी नहीं है, लेकिन नॉलेज तो अब हो गई ना
0: कि ये कहीं ना कहीं होगा,
1: मेरी वजह से है. सी, एक्सेप्ट करना तब मुश्किल होता है जब मुझे उसका रीजन नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं ये पैसे. लेकिन जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, भले आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपने बोरो किया था इसलिए आपको रिटर्न करना है, तो भले आप अनविलिंगली रिटर्न करेंगे, लेकिन ईजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी. तो सिमिलरली हमने जो पिछले कॉस्ट्यूम में किया हमें याद नहीं है, लेकिन अब अगर हमें लॉ समझ में आ गया कि हाउ द लॉ वर्क्स, देन वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट्स माय क्रिएशन. मैंने एनर्जी दी थी, आज मुझे वापस मिल रही है, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा जो वो हैवीनेस आती है क्वेश्चंस के साथ वो खत्म हो जाएगी. एंड आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैंने ही इसको एक्सप्लॉइट किया होगा, मैंने ही रॉन्ग एनर्जी ट्रांसमिट की थी, आज मुझे मिल रही है. लुक एट द एनवायरमेंट, व्हाट हैव वी डन टू द एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंट हमें वापस नहीं देगा वो, और वो दे रहा है,
0: दे रहा.
1: अब हम कहते हैं जी ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से इतना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. डोंट वी समवेयर नो दैट वी हैव डन इट? So even to that highest global level, we are going to get the return of our actions, even from nature. It works at every level, personal level, interpersonal level and global level. Tino levels par wo work karne wala. To ab sirf chahiye personal responsibility, ke mere saath jo ho raha hai, uske zimmewar main hu. आधा काम उससे खत्म हो जाता है. यू नो, जैसे राह चलते कोई मिलता है और एकदम से, यू नो, रोड पे बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा आप किसी को क्रॉस करते हैं, गाड़ी को टक्कर लग जाती है, कई लोग बस खड़े होकर वहां जोर जोर जोर से आपसे कुछ बहुत कहेंगे और गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे. पहले वी वुड से ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया, आई हैव टू रिप्लाई बैक, आई हैव टू डू दिस. इजी वे इज ओके, अकाउंट सेटल्ड, फिनिश्ड, ओम शांति, फुल स्टॉप. देयर इज नो
0: कंटिन्यूअस प्रोसेस.
1: That is the settling of the account first. जो ये और हम energy create करते हैं ना, where, why did this happen? I'm creating more negative energy. तब फिर वो account settle होने की बजाय और भी ज्यादा accumulate होता जाता है. तो accept कर लीजिए. वैसे भी कोई option नहीं और actually.
0: Actually यहाँ यही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि
1: resist करने से भी कोई option नहीं है. It just is very conflicting. लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाउ देन यू कैन चेंज इट.
0: वो
1: दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
0: ट्रांसफॉर्मेशन है.
1: जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज को, हम रेजिस्ट करते रहते हैं. तो वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. तो पहले ही नेगेटिव कर्मा था, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि हम सेटल क्यों नहीं कर पाते. हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ट्रांसफॉर्म नहीं करते. व्हाट वी कीप डूइंग इज creating more negative karma with that. Negative impression एक बना है, हम और upset होते हैं. ऐसा क्यों बोल दिया? फिर और upset होते हैं. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? So you see, again negative out, negative return, संस्कार और पक्का. And it's become a vicious cycle now. It's a very very vicious cycle.
0: I think और हम में से
1: and आत्मा बिल्कुल जैसे उस बोझ से
0: उसमें घुसता ही जा रहा है, घुसते ही जाते हैं.
1: And जितना हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं
0: और उलझ जाते हैं.
1: तो इसलिए जो आपने कहा ना कि कई बार हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, बट अब अपने जन्म की डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉडर करें. कि अब मैं आत्मा, तो आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु की बात नहीं है. जीवन की ये यात्रा है, ये एक कॉस्ट्यूम है, या कहें ये एक एपिसोड है. यू नो आजकल जो सीरियल्स आते हैं टेलीविजन पर, सो यू वोंट हैव अ सेपरेट स्टोरी इन एवरी एपिसोड. इट्स अ कैरी फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाई द यू नो द सोप इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक है कि एवरी एपिसोड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नो, इतने सालों से यू नो एक सीरियल चल रही थी, सो पॉपुलर. तो हर एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड. एवरी लाइफ इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड. नाउ दिस इज वन एपिसोड. इस एपिसोड में हम जो कुछ करेंगे, इसका कैरी फॉरवर्ड हमारे नेक्स्ट एपिसोड में होगा. एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड ड्रामा इज इंटरेस्टिंग.
0: ओके, यहाँ एक और बात जानना चाहती हूँ. आई थिंक बहुत से हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं कि ये एक इंक्विजिटिवनेस है कि हर एपिसोड में जो कैरेक्टर्स हैं हमारे आसपास, वही कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे या कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे या वही सोल. ये भी एक सवाल है कि क्या हम, क्योंकि अगर कार्मिक डेप्थ है या कार्मिक अकाउंट्स है तो वही लोग फिर मिल जाते हैं.
1: Absolutely.
0: So, क्या हम घुमा फिरा के चलते
1: हैं? Yes, absolutely. It is a particular set which is together. जैसे डिफरेंट सीरियल्स चल रहे हैं एट अ टाइम ऑन एयर, लेकिन एक पर्टिकुलर सीरियल में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टर्स है, यू नो, तो उनका इंटरप्ले एक दूसरे के साथ है. हाँ, ये हो सकता है इस एपिसोड में आप चार एक्टर्स को देखते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसमें से दो कोई और दो के साथ है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर लाइफ टाइम में मिल रहे हैं, बट घुमा फिरा के या एक दो छोड़ के लाइव्स, then we are again coming back into play. लेकिन जिनके साथ जितना account होगा, we will come back into play with them. Absolutely. Now what is very important is, like you said about right and wrong, कि how would we know? तो again nobody to judge right and wrong. लेकिन फिर भी उसको अगर बहुत eternal basis पर देखें, जैसे आत्मा की हमें पहचान मिली कि that is the truth, तो उस पहचान में रहकर जो हम कर्म करेंगे और उस पहचान की विस्मृति से जो हम कर्म करेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाता है.
0: ओके, ये जानते हुए, अपने बेसिक्स को जानते हुए,
1: एक इमेज क्रिएट करके, यू नो, व्हेन आई एम द सोल, ये हम भूल गए, मैं शरीर हूं और मैं वो सारे लेबल्स हूं, पोजिशन हूं, उस भान में जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर जो भी कर्म करेंगे, इट्स ईगो. ईगो है ना, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. तो बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान में रहकर जो भी कर्म होगा, इवन अ थॉट, वो नेगेटिव.
0: तो इसका मतलब अभी तक जो हम करते आए, मैं करती आई अभी, जब तब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, सो दैट वॉज रॉन्ग.
1: या बिकॉज सी वाई इट्स रॉन्ग, अगेन वाई इज इट रॉन्ग, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है आप एक इल्यूजन में चल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, आप एक भय में चल रहे हैं कि ये मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगी, आप इस भी भय में चल रहे हैं कि ये जो सब कुछ मेरा है ये खत्म ना हो जाए, तो आपके थॉट्स कैसे वाले क्रिएट हो रहे हैं?
0: सारे नेगेटिव है,
1: मेरे कुछ हो ना जाए, इनको कुछ ना हो जाए, ये मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, तो डर में चल रहे हैं। अब ये जो सारे जिन चीजों से मेरी डिपेंडेंसी जिन पर हो गई है, एडिक्शन भी हो जाती है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, एक सर्वाइवल का सारा दिन लगा हुआ है, और चाहिए और चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स एक्शंस इम्प्रेशंस बन रहे हैं इन दिस प्रोसेस? नेगेटिव। अब एक फियर क्रिएट होता है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, व्हाट काइंड ऑफ थॉट? नेगेटिव। तो फिर उस प्रोसेस में
0: और उनको बचाने के लिए सारे और तरीके, यू नो, साम दाम दंड,
1: अगर उनको किसी ने कुछ किया या मेरे उस इमेज को किसी ने कुछ कहा, इंसल्ट की, गुस्सा आएगा, विच थॉट एक्शन, एंगर। तो ये एंगर, ग्रीड, जेलेसी, इनके वश जो भी कर्म होगा, मतलब देह अभिमान के वश जो भी कर्म होगा वो नेगेटिव कर्म में जाएगा, जिनको हम कहेंगे सिनफुल एक्शंस। बट सिन क्या है, पाप क्या है? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं और उस स्वरूप में हम जो भी कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हमें रिजल्ट दे रहा है, और वो ही आज हमारा रिजल्ट हो गया। इतनी टेंशन, इतनी वरी, इतनी एंग्जाइटी। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म नेगेटिव, या जिसको हम विकर्म कहते हैं। दूसरा है न्यूट्रल एक्शन, अकर्म, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऑर्डिनरी एक्शन, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे आज इनसे मिलना है। लेकिन ये ऑर्डिनरी एक्शन भी अगर हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किया, इट विल गेट अकाउंटेड इनटू नेगेटिव, सो टू बी वेरी केयरफुल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अब हमें चांस मिला है करने का, पॉजिटिव एक्शन, या जिसको कहते हैं सुकर्म, अपने सही स्वरूप को पहचान लिया, आई एम ब्यूटिफुल एनर्जी लाइक दैट फ्लावर, वंस आई कम टू नो हु आई एम, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग माई अवेयरनेस, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, माई फ्रेग्रेंस, माई ब्यूटी इज जस्ट फॉर एवरीथिंग आउटसाइड, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो भय
0: नहीं रहे,
1: मृत्यु का भय खत्म हुआ, चीजें खोने का भय खत्म हुआ, अपनी पोजिशन, अपने स्टेटस खोने का भय खत्म हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हुई, थॉट्स आर चेंजिंग, एक्शंस आर चेंजिंग, रिजल्ट इज चेंजिंग, जस्ट विद वन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट विद गेटिंग द ट्रूथ। एंड दैट्स व्हाई इतनी सदियों से हम सुनते आए कि हु एम आई, जिस दिन ये आंसर कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम्स
0: सॉल्व हो जाएंगी,
1: बिकॉज दैट्स रियली द ट्रूथ, क्योंकि उस एक चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस से सारा हो जाएगा।
0: लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि विकार जो हम करते आए हैं सुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था की बात जो कहते हैं, स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग वी कंटिन्यू डूइंग थिंग्स
1: राइट,
0: जो विकर्म हो गए, इट मींस उनका भी हमें कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट सेटल करना होगा,
1: सारा बन गया ना, एक स्टैक जमा हो गया।
0: तो अब वो जो हम ये सुकर्म कर रहे हैं, क्या वो सेटल कर पाएगा
1: राइट,
0: या वो सेटल होंगे कैसे? ये तो अपने ही कर्म जो इसी जन्म में हमने किए हैं,
1: एब्सोल्युटली,
0: जिनको हमें अब तो रियलिटी ये है कि इतने सालों से हम वो करते आ रहे हैं
1: right.
0: जो कि विकर्म में ही शामिल हो रहा है, चाहे हमें अभी तक क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन आज अगर हमें क्लियर होता है तो वो एक कार्मिक डेट है जो हमें क्लियर करना है, अकाउंट को क्लियर करना होगा। एनादर इज जो हम पिछला लेकर आ रहे हैं,
1: वो सारा स्टैक कच्चे ही है अभी यहाँ पे, यू नो, तो इसलिए जो कहते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट है वो काफी
0: हैवी,
1: एंड उसका रिजल्ट हमें प्रत्यक्ष दुनिया में इस टाइम दिखाई दे रहा है। जो हम देख रहे हैं आजकल कि डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोग उदास रहने लगे हैं, दिस इज एन साइन ऑफ अ वेरी डीप कार्मिक डेप्थ, क्योंकि जिसके ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा होता है वो खुश नहीं रह सकता, उसके ऊपर बहुत भार है तो वो खुश नहीं रह सकता, तो उसका साइन चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों को देखो, बच्चे हैं, दिस इज द यू नो टाइम व्हेन दे शुड बी एंजॉयिंग, लेकिन व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय, क्योंकि आत्मा तो अभी आई है ना, वो बच्चा तो शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है, इट्स जस्ट कैरी फॉरवर्ड अ वेरी डीप अकाउंट राइट नाउ। How will it be able to be happy here? Because it's so heavy already. और इसलिए बच्चों को भी स्ट्रेस, ये ज्यादा पहले नहीं था, जितना समय बीतता जा रहा है और हम उस अकाउंट को सेटल करने की बजाय
0: और उसमें घुसते जा रहे हैं,
1: तो जितना घुसते जा रहे हैं उतना ही कम एज से हम में वो हैवीनेस महसूस होने शुरू हो रही है, और मानसिक रीति से सबसे ज्यादा उदासी, परेशानी, चिंता, ये सबसे ज्यादा घेर लेती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भोगना होती है।
0: बिल्कुल, सोसाइटीज की सोसाइटीज आज दुखी है, परेशान है।
1: भोगना है ना, क्योंकि हम पनिशमेंट जैसे कि भोग रहे हैं, तो ये जो भोगना है ये अभी हम भोग रहे हैं, और ये हम इसी तरह भोगते हैं, दुखी अशांत रह के भोगते हैं।
0: तो ये बात सामने आती है कि इसी जन्म में जो हम विकर्म करते आ रहे हैं, जो हम सोते हुए कर रहे थे, एक बात ये जानना चाहते हैं हम सबसे शिवानी, कि बहुत से दर्शकों के दिमाग में भी ये बात है कि 84 लाख योनियां हैं, हम जो जो कर्म करते हैं उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। कभी हम पशु बन जाएंगे, या हम पशु थे पिछले जन्म में, और आगे आने वाले जन्म में जो जो हम कर रहे हैं वही तय करेगा कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ क्या हम कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक भार लेके हम चल रहे हैं
1: ये
0: कि
1: डर में भी चलते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि आज दिन तक हम ये सुनते आए थे कि बहुत सारी योनियों में क्रॉस करते हुए अपने सारे पाप को हम उस योनि में भोगते हुए फाइनली हमें
0: इंसान की योनि मिलती है।
1: इंसान की योनि मिलती है। तो फिर वो जो मनुष्य जीवन मिलेगा इतने योनि से गुजरते हुए, मतलब सारे पाप भोगते हुए, तो वो मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए?
0: सुंदर होना चाहिए।
1: बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आज जो हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ये क्या वो सारे पाप भोगने के बाद जो पुण्य का जीवन मिला है वो ऐसा वाला जीवन है? तो अगर वो जीवन होता तो वो मनुष्य जीवन कितना वैल्यूबल होना चाहिए। आज मनुष्य तो अपने जीवन से इतना परेशान है कि वो अपना ही आपघात करने का सोचता है।
0: सुसाइड्स का इतनी ज्यादा,
1: राइट,
0: इनफैक्ट देखा जाए तो इतना ज्यादा मनुष्य जीवन सबसे सस्ता जीवन माना जाने लग गया है।
1: एब्सोल्युटली। तो ये वो जीवन है जो इतनी योनियों में गुजरने के बाद आज ये मिला है। तो यही जो हमने कहा ना कहीं ज्ञान तो है लेकिन उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन। तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा और पशु आत्मा वो भी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में वेरिएशन है, वो बीज अलग है, ये बीज अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग इन एन एनिमल? इंटेलेक्ट। वी आर अ हायर डेवलप्ड, और वी आर सपोज टू बी अ हायर डेवलप्ड इंटेलेक्ट, एंड एनिमल इंटेलेक्ट इज अ लोअर इंटेलेक्ट। अब अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, पहली बात तो हो नहीं सकता क्योंकि बीज क्या करेगा, एक पौधा है वो बीज निकाल कर कितनी बार भी आप बोएंगे, चीकू
0: वो
1: का बीज है
0: निकलेगा
1: वो
0: तो
1: वही
0: चीकू
1: वाला फल निकलेगा।
0: में।
1: हम कहें हम ये वाला बीज बो रहे हैं अब इसके अंदर से दूसरा फल निकलना चाहिए, नहीं, उसके अंदर जो नॉलेज है, उसके अंदर जो संस्कार है वो उसी के है। तो ये मनुष्य आत्मा है, बीज है, इसके अंदर वही मन बुद्धि संस्कार है। ये अगर दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले किसी पशु का तो इंटेलेक्ट कैसे होगी? वो जाके चेंज तो नहीं हो सकती। या वो आत्मा अगर यहाँ आ जाए तो वो इंटेलेक्ट कैसी होगी? तो दोनों अलग अलग है बीज, इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता है। वो बीज अलग, वो हमेशा उसी योनि में जाएगी, और मनुष्य आत्मा ही, मतलब आत्मा वो है उसको मनुष्य शरीर ही बार बार मिलेगा, लेकिन कर्मों अनुसार वो जीवन कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, वायुमंडल कैसा होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग जीवन और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में जाएंगे, लेकिन योनि इंटरचेंज हो जाएगी वो नहीं होगा। आज मनुष्य योनि ही सबसे भोगना की योनि है, सबसे ज्यादा दुख शायद मनुष्य योनि को है। पशु योनि को इतने दुख नहीं है, ना इतनी फिजिकल बीमारियां हैं, ना इतनी मेंटल बीमारियां हैं, ना सुसाइड है। तो कहें कि सबसे ज्यादा जो भोगना की योनि है इस टाइम ये हमारी योनि है। तो इतने पाप करने के बाद, अगर हम कह रहे हैं इतने भोगने के बाद ये पुण्य का जीवन मिला, तो ये जीवन फिर कैसा होना
0: लेकिन एक
1: चाहिए?
0: बात और कही जाती है, आई जस्ट वॉन्ट दैट क्लैरिफिकेशन, कि अगर श्राप मिल जाए तो आप फिर पशु योनि में चले जाते हैं, ऐसा भी कुछ है? श्राप भी क्या है? क्या है श्राप और क्या?
1: श्राप और वरदान हम खुद ही तो अपने आप को देते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये किसी ने आकर ऊपर से श्राप नहीं दिया। जैसे कहते हैं कि हिंसा अगर आप करते हैं किसी की तो आप हिंसक योनि में चले जाएंगे, ये श्राप मिलेगा। हिंसक योनि, लेट्स से अ टाइगर, आप हिंसक योनि में चले गए। अब अगर आप एक शेर बन जाते हैं तो उसको कोई भोगना नहीं होने वाली है कि मैं हिंसा, भोगना क्या है, हमने एक पाप किया उसकी भोगना मतलब मुझे पश्चाताप होगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, उस पश्चाताप से मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा। लेकिन अगर मैं एक हिंसा की योनि में चली जाऊं, उसके लिए हिंसा करना तो नेचुरल है,
0: सहज है, वो तो उसका जीवन है,
1: इट्स नेचुरल संस्कार ऑफ अ टाइगर, वायलेंस इज अ नेचुरल संस्कार, उसको कोई भोगना नहीं होगी। तो भोगना अगर मुझे भोगनी है अपने ही पाप कर्म की, तो वो मुझे इसी मनुष्य तन में ही भोगना होती
0: क्योंकि
1: है,
0: मैं अपना जो नेचुरल मेरा जो संस्कार है उससे परे जा रहा हूँ।
1: हाँ, उससे परे हम नहीं जा सकते, तो उसी मनुष्य तन में आकर, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, शरीर बदल जाता है, मेरे साथ क्या क्या होता है, एनर्जी किस तरह की मिलती है, तो उसमें मेरा पाप और पुण्य का खाता सेटल होता है। तो जो मुझे भोगना है अच्छा या बुरा, वो मनुष्य योनि में ही आकर होता है।

खजाना सुनते चले आए अजल से ये फसाना।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी

0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: नहीं, पहले 10 तक काउंट करो फिर आना।
1: 10, 9, 5, 3, 1, 0। मैं आ रही हूँ।
2: ये चुपो चुपो चुपो आ रही आ रही है।
3: अरे यहाँ पे क्या हो रहा है?
1: हाइड एंड सीक दीदी।
3: और ये आकाश कहाँ छुप गया? वो तो दिखाई नहीं दे रहा।
1: बिस्तर के नीचे।
3: अच्छा, तो यहाँ छुपन छुपाई खेली जा रही है।
1: हाँ दीदी।
3: चलो आकाश बाहर आ जाओ।
1: पकड़ लिया।
3: भुवना ने तो पकड़ लिया, सबको ढूंढ लिया। तो मतलब तुम लोग को हाइड एंड सीक खेलना इतना अच्छा लगता है, क्यों भुवना?
1: हाँ दीदी।
3: ओके, तो चलो आज हम गेम्स के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का फेवरेट पास टाइम तो गेम्स ही होते हैं।
4: हाँ दीदी।
5: सही बोला दीदी।
3: है ना? तो सैंडी को सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? सैंडी,
6: मुझे ना बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है।
3: बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है। अच्छा, बैडमिंटन किसके साथ खेलते हो सैंडी?
6: मैं पापा के साथ कभी कभी खेलता हूँ।
3: पापा के साथ कभी कभी खेलते हो? और उसमें जीतता कौन है?
6: पापा, मुझे ज्यादा नहीं आता।
3: अच्छा ऐसा, पापा जीत जाते हैं।
4: आखिर पापा है वो तुम्हारे।
6: सही बात।
3: पूना, तुम्हें बैडमिंटन अच्छा लगता है?
1: हाँ दीदी, मैं टेनिस भी खेलती हूँ।
3: टेनिस भी खेलते हो? अरे वाह, तो टेनिस के बारे में हमें कुछ बताओ।
1: टेनिस बॉल से खेलते हैं और बैडमिंटन शटल कॉक से खेलते हैं।
3: अच्छा, और कितने प्लेयर्स होते हैं टेनिस में?
1: दीदी जब रैली खेलते हैं दो खेल सकते हैं और टीम भी खेल सकते हैं, दो लोग, दो दो।
3: तो आप स्कूल में टेनिस खेलते हो?
1: स्कूल में नहीं, मैं टेनिस कोर्ट पे खेलती
3: हूँ। अच्छा, तो क्या आपने कभी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है?
1: कॉम्पिटिशन में नहीं, लेकिन मैं रैलीस खेली।
3: अरे वाह, मतलब आपको टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
3: और बैडमिंटन खेलना यहाँ पे और किसे अच्छा लगता है?
1: मुझे।
6: मेरे को थोड़ा थोड़ा।
3: सैंडी को तो अच्छा लगता है। और भुवना, भुवना आप किसके साथ खेलते हो बैडमिंटन?
1: मेरी बुआ के साथ, तीन बुआ के साथ।
3: तीन बुआ के साथ?
1: हाँ।
3: और उसमें जीतता कौन है?
1: मैं।
3: अरे वाह, मतलब भुवना तो बैडमिंटन चैंपियन है।
6: कहीं चीटिंग तो नहीं करती तुम?
1: मैं चीटिंग नहीं करती।
3: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
5: छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक।
3: अच्छा, तो छुपन छुपाई जो अभी खेली जा रही थी वो अच्छी लगती है?
5: हाँ।
3: क्यों अच्छी लगती है छुपन छुपाई?
5: क्योंकि मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ ना जो प्लेयर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और हाथ जोड़ के सामने कह देता है, भाई सामने आ जा, मैंने हार मान ली है।
3: अब ऐसी सीक्रेट जगह के बारे में तो हम सब जानना चाहेंगे, है ना? तो आकाश, कहाँ कहाँ छुपते हो तुम?
5: जो कोर्ट बनाया होता है ना, जहाँ तक छुपना नहीं होता है, मैं उसके बाहर जाके छुप जाता हूँ।
6: तो चीटिंग हुई।
5: लेकिन चीटिंग की क्या, पकड़ में तो नहीं आता ना।
6: ये बात भी है।
3: लेकिन फिर जिसने आंखें बंद की उसे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो जाना अलाउड ही नहीं है।
5: और क्या, तभी तो मैं वहाँ छुपता हूँ, क्योंकि डायना तो वहाँ आएगा नहीं।
6: तुम हाइड एंड सीक दिन में खेलते हो या रात में?
5: दोनों टाइम। दिन में खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ, रात को खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ।
6: रात में मजा आता खेलने में।
5: हाँ, छुप जाते हैं ना तो दिखते भी नहीं है,
6: अंधेरा में कुछ दिखता नहीं है, लाइट बंद कर दो फिर मजा आता है।
7: लेकिन रात में हमें छुपने में बहुत सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर हम गलियों में या कहीं और छुपते हैं तो वहाँ कीड़े हो सकते हैं,
5: पेड़ों के वहाँ पे।
6: हाँ पंकज भैया।
3: हाँ पंकज ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि रात को ना हमें ठीक से दिखाई देता है, और अगर छुपने के जिसमें जैसे आकाश कहीं चले जाते हैं बाहर भी, तो अगर वैसे चले गए तो कोई हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: और एक सबसे सीक्रेट जगह है डैनर को वापस टिप मारने की, वो जैसे आंख बंद के काउंट करता है उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, वो जैसे बंद जवाब उसका जैसे काउंट पूरा होगा उसको टिप कर दे।
6: ये अच्छा आइडिया है।
1: इसमें क्या मजा आएगा फिर,
5: उनको बार बार डैन मिलता रहेगा।
3: लेकिन एक बार में तो उसे पता चल जाएगा कि आकाश तो पीछे से आता है।
6: अगली बार दूसरा आइडिया, नेक्स्ट टाइम डिनर आँख खोल के काउंट करेगा।

0: तो उसको वापिस 10 देना पड़ेगा क्योंकि आँख खोल कर काउंट करना अलाउड ही नहीं है।
1: जब तुम चीटिंग कर रहे हो तो वो करेगा करेगा।
2: अच्छा, और कौन सी ऐसी सीक्रेट जगह है जो तुम लोग जाके छुपते हो जब छुपन छुपाई खेलते हो?
1: मैं तो टंकी में जाके छुप जाता हूँ।
2: अच्छा, सैंडी टंकी में जाके छुप जाते हो?
0: गीले नहीं होते?
1: नहीं, हमारी खाली टंकी ना। अच्छा। जो देखते खाली टंकी हो।
2: और भुवना?
3: मैं क्या करती हूँ ना, जहाँ हम क्लोथ सब डालते हैं एक बकेट में, मैं और मेरे भैया जाते हैं और मेरे भैया सारे क्लोथ निकालते, मैं अंदर घुस जाती हूँ और सारे क्लोथ मेरे ऊपर डाल देते और मेरे भैया पीछे छुप जाते हैं और मुझे साइंस देते, मत आओ, हिलो मत, इतना मजा आता है।
2: अरे वाह, यानी छुपने में भैया मदद करते हैं। और पंकज?
4: मैं तो जब हाइड एंड सीक खेलता हूँ तो मैं छुपता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अंधेरे में हाइड एंड सीक खेलता हूँ, और जब डेन सामने आता है तो मैं उसके सामने अपने शर्ट उतार लेता हूँ और ऐसा अपना लुक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो उसे पता ही नहीं चलता कि है कौन सामने।
0: ये काफी अच्छी बात कही, अब से मैं भी यही ट्रिक आजमाऊंगा।
4: हाँ, ट्राई करना, मजा आता। हाँ।
2: मतलब पंकज को ढूंढने निकले तो पंकज मिले ही नहीं।
4: हाँ, और मैं उसके सामने ही होता हूँ।
2: अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है पंकज ने।
1: हाँ दीदी।
2: और हाइड एंड सीक खेलते वक्त तो मजा तो आता ही है, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आपको याद हो?
3: हाँ दीदी।
2: क्या?
3: एक दिन मैं काउंट करके ना, मैं इतनी धीरे से आती हूँ, जब मेरे भैया मेरे साथ नहीं होते ना, मैं डिनर होती इतनी धीरे से आती हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मेरे भैया मुझे आउट करेंगे, तो मैं स्लोली स्लोली रूम के अंदर जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं स्लोली जा रही थी, फिर बिस्तर के नीचे मेरे भैया छुप गए, तो सडनली मेरे पैर को पकड़ ली, इतना चिल्ला रही थी दीदी,
1: डरपोक भूना,
3: सडनली आके पकड़ लिया, इतना डर गई मैं दीदी, चिल्लाने लगी।
2: हाँ, आपका ध्यान कहीं और था और भैया ने नीचे से पैर पकड़ लिया तो अचानक से डर गए।

0: और ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? आकाश, हाइड एंड सीक तो घर पे खेलते हैं, स्कूल में कौन से गेम्स खेलते हो?
1: स्कूल में मैं कोई गेम ही नहीं खेलता।
0: लेकिन स्कूल में तो गेम्स पीरियड होता है सबकी क्लास में, तो उस टाइम आप क्या करते हो?
1: सारे बच्चे जो अपने अपने गेम्स खेलने लगते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, उसके बीच में मैं फंस जाता हूँ। मेरे को मन भी करता है क्रिकेट भी खेलूं, मन करता है फुटबॉल भी खेलूं, मन करता है वॉलीबॉल भी खेलूं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका मैं कोने में जाके बैठ जाता हूं।
0: लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका मन करता है तीनों गेम्स खेलने का,
2: सारे
0: तीनों
2: गेम्स थोड़े थोड़े देर खेल लेने के।
0: हाँ, नहीं तो एक गेम तो खेलना चाहिए,
1: गेम में ही नहीं रखता ना। उसके बाद जैसे बैठ जाता हूँ ना आराम से, जो मुझे चाहता है ना टीम में लाने के लिए, वो अपने पास अपने आप आ जाता है। चलना यार टीम में खेलते हैं यार।
0: लेकिन ये भी अच्छा तरीका है, बैठ जाते हैं तो बुला ही लेगा कोई ना कोई,
1: लेकिन फोर्स देते हैं,
0: सर फोर्स करते हैं
2: तो तुम्हारे भाव बढ़ जाते हैं।
0: नहीं, लेकिन कोई ना कोई गेम हमें जरूर खेलना चाहिए। फिर कौन सा गेम है जो तुम्हारा फेवरेट है जो खेलते हो ऊपर जाके
1: स्कूल में?
0: स्कूल
1: में मेले में सब बच्चों के साथ वॉलीबॉल ही खेलता हूँ।
0: वॉलीबॉल खेलते हो? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं आकाश?
1: ये तो पता नहीं, लेकिन
0: 9 प्लेयर्स।
1: मैं जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ हम लोग 4-4 की टीम बना के खेलते हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, वैसे वॉलीबॉल खेलने में भी बहुत मजा आता है ना,
2: उससे हमारे हाथ स्ट्रांग होते हैं।
0: हाँ, हाथ हमारे उससे स्ट्रांग होते हैं।
2: पर मुझे वॉलीबॉल नहीं आती।
3: मुझे आती है
4: यार, मैं रग्बी खेलती हूँ।
0: रग्बी? ओहो, ये तो इंटरेस्टिंग गेम है काफी।
2: ये कौन सा गेम है?
1: रग्बी मतलब उसके अंदर एक ओवल बॉल होती है जिसको हमको,
4: इसको ना हम बास्केटबॉल जैसे नीचे गिरने नहीं देते, हमको पकड़ के भागना चाहिए ताकि दूसरी टीम वो बॉल हमसे छीन ले।
0: और हमें गोल तक पहुंचानी होती है।
4: हाँ। गोल तक पहुंचानी चाहिए
1: और दूसरी टीम बहुत कोशिश करती है हम उससे बॉल ले लें।
0: किसी को चोट लग गई तो फाउल हो जाएगा। और सैंडी को कौन सा गेम पसंद है आउटडोर में?
2: गिल्ली डंडा।
3: सैंडी ग्रो अप।
0: नहीं नहीं, गिल्ली डंडा भी बहुत अच्छा गेम है। गिल्ली डंडा कैसे खेलते, क्या मजा आता है सैंडी को गिल्ली डंडा खेलने में बताओ।
2: दीदी ना, गिल्ली डंडा में ना डंडे से गिल्ली को मारते हैं, फिर दूर तक फेंकते हैं, फिर वहां से जो सामने वाली टीम होती है फिर गिल्ली फेंकती है, अगर उस डंडे में टच हो गया तो आउट, नहीं तो फिर बाद में गिल्ली सॉस मारते दूर भेजते फिर पॉइंट मिलता है।
0: अरे वाह, मतलब ये गेम तो हम में से कोई भी खेल सकता है।
2: हाँ।
0: और कितने लोग खेलते हैं ये गेम मिलके?
2: इसमें जितना चाहे उतना खेल सकता है टीम वाइज,
3: पर एक से ज्यादा।
2: एक से ज्यादा?
0: एक से ज्यादा। तो ये गेम स्कूल में भी खेला जाता है?
2: हम तो घर पे खेलते हैं।
0: ये तो बहुत पुराना गेम है, मेरे ख्याल से हमारे मम्मी पापा ने भी ये गेम खेला होगा।
2: और पंकज हमारा चैंपियन है इस गेम में।
0: अच्छा, पंकज गिल्ली डंडा चैंपियन है?
3: चैंपियन था दीदी, अब तो नहीं खेलता मैं।
0: अब क्या खेलते हो पंकज?
3: अब तो ज्यादा टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं।
0: क्रिकेट अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी।
0: और क्रिकेट में आप क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या पसंद है?
3: मुझे तो तीनों पसंद है, आप चाहे फील्डिंग करवा लो या बैटिंग या बॉलिंग।
0: अच्छा, तो आप स्पिनर हो कि फास्ट बॉलर?
3: फास्ट बॉलर, लेकिन स्पिन भी आती है।
0: स्पिन भी आती है, स्पिन कराना तो काफी डिफिकल्ट होता है।
3: हाँ, मुझे तो इजी लगता दीदी।
0: अच्छा, बैटिंग यहाँ पे कौन कौन करता है?
3: मैं भी।
0: सैंडी? अच्छा, मतलब सैंडी को बैटिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा, और अभी अभी कुछ क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं ना आप लोगों के?
3: हाँ हाँ दीदी, हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं।
0: अच्छा, उसके बारे में हमें कुछ बताओ तो।
2: हाँ दीदी, ये टूर्नामेंट मैच हम और पंकज ने ऑर्गेनाइज कराया है, इसमें कुछ टीमों को इनवाइट किया है क्रिकेट के लिए, और अभी चल रहे हैं। अभी आज तो मैच नहीं था, शाम को मैच है दो टीमों का, उसमें जो जो टीमें अच्छे से खेलेगी फाइनल में पहुंचेगी उन्हें प्राइज देंगे विनिंग टीम को।
0: अच्छा, अरे वाह, आप दोनों ने मिलके क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है।
2: हाँ दीदी।
0: कितनी टीम्स आ रही हैं उसमें?
2: अभी तो उम्मीद थी कि ज्यादा टीमें आएगी, बट अभी 8-9 टीमें हुई, कमी टीमें आई।
0: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है, और गेम्स की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना तो और भी मजेदार चीज है।
2: हाँ, पर थोड़ी हालत भी खराब होती है,
3: मेहनत तो करनी पड़ेगी।
0: बात तो सही है, लेकिन आप दोनों मिलके मेहनत करोगे तो फिर तो सफलता जरूर मिलेगी, और मिल ही रही है।
2: हाँ ना? दीदी मिल रही है।
0: और आकाश, अब हम बात करते हैं इंडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स में तो बास्केटबॉल खेला, थ्रो बॉल खेला, वॉलीबॉल, क्रिकेट, अब ये बताओ इंडोर गेम्स आप लोग कौन कौन से खेलते हो? जब बहुत धूप होती है बाहर तो हमें इंडोर भी खेलना पड़ता है, तो फिर इंडोर गेम्स में कौन कौन से खेलते हो आकाश?
1: मैं इंडोर गेम्स में बॉलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब बॉल को दीवार से मार के उसको कैच करने की।
0: अच्छा, मतलब बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस करते हो, तो ये तो हम अकेले भी कर सकते हैं।
4: कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हो?
1: हाँ, लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, चेस।
0: ओके, आकाश को चेस पसंद है।
2: मुझे चेस समझ में नहीं आती।
4: मैं भी खेलती हूँ दीदी, मेरी ग्रैनी के साथ।
0: चेस? अरे वाह, आपकी ग्रैनी के साथ आप चेस खेलते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: इंटेलिजेंट है कि हर बार वही जीतती है।
0: अरे वाह, लेकिन चेस तो काफी अच्छा गेम है, उसमें माइंड की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। और सैंडी, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो।
1: मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा।
2: ठीक है आकाश, तुम सिखा देना मुझे।
0: तो आकाश डन, फिर आप सैंडी को चेस सिखाओगे। और पंकज, आपको आता है कि?
3: मुझे भी नहीं आता दीदी।
0: ठीक है, कोई नहीं, आप दोनों सीख सकते हो, और फिर साथ में जब टाइम मिले तो फिर चेस भी खेल सकते हो। और कौन से इंडोर गेम्स है जो सैंडी खेलता है?
2: कैरम बोर्ड।
0: कैरम बोर्ड, अच्छा। और कैरम बोर्ड में क्या मजा आता है?
3: मजा इसलिए आता है क्योंकि हमेशा चैंपियन में होता
2: और मैं हार जाता।
0: अच्छा, मतलब हारने में भी अपना अलग मजा है नहीं? हाँ, सैंडी।
2: मेरी बस ये टारगेट रहती है कि मैं इसे हरा दूं, और वो पूरा होता नहीं, तो हम खेलते रहते हैं।
0: ये भी अच्छी बात है।
3: हम तीन बेस्ट फ्रेंड है, हर्षित, सैंडी और मैं, लेकिन हमेशा मैं ही चैंपियन हूँ
2: और हमेशा मैं थर्ड आता हूँ।
0: और क्वीन कौन लेके जाता है?
2: क्वीन को तो मैं ले जाता हूँ।
3: बस तू क्वीन के पीछे भागता।
2: हाँ, पीछे तो भागता रहता हूँ।
0: अच्छा, मतलब सैंडी की कोशिश जारी रहती है। हाँ, लेकिन
2: इसके चक्कर में गेम हार जाता हूँ।
0: एंड में क्वीन मिल जाती है पंकज को।
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है बच्चों, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बातें करते हैं कुछ और इंडोर और आउटडोर गेम्स की। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम लेके बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बहुत सारे बच्चों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भुवना, सैंडी, पंकज और आकाश, इंडोर और आउटडोर गेम्स की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब तुम लोग की समर हॉलीडेज होती हैं तो कौन से गेम्स खेलते हो?
1: हम लोग क्रिकेट खेलते हैं।
0: क्रिकेट खेलते हो? उसके लिए पूरी टीम मिल जाती है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियां हो गई होती हैं।
1: हाँ।
0: तो मतलब आसपास के बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होकर खेलते हो?
1: हाँ।
0: और भुवना?
2: मैं चॉकलेट बॉक्स खेलती हूँ, स्टॉप एंड पार्टी, डिमांड ऑल, फिर कंफ्यूजन।
0: कंफ्यूजन?
3: हम भी कंफ्यूज हो गए, ये कैसा गेम है?
2: इसमें एक डिनर होता है दीदी, तो एक को पकड़ने चलता है, फिर उसका नाम सपोज ऋषिता है, वो बोलेगी हेल्प शांति, तो शांति आएगा मुझे पकड़ने।
0: ओके।
2: तो फिर मैं बोलूंगी हेल्प पूजा, तो पूजा आएगी शांति को पकड़ने।
0: अच्छा, मतलब ऐसे सब लोग हेल्प लेते रहेंगे और नए नए लोग नए नए लोगों को पकड़ते रहेंगे?
2: कंफ्यूज हो जाएंगे ना दीदी
0: लास्ट में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कितना ज्यादा टेंशन रखना पड़ेगा। और आकाश?
4: दीदी मैं तो एक ही गेम खेलता हूँ, सोने का।
0: सोने का गेम?
5: ये कौन सा गेम है?
4: देखो क्या होता है कि स्कूल के टाइम में हम ढंग से सो नहीं पाते।
3: अच्छा, तो रात को सोते सोते गेम खेलते हो?
4: नहीं नहीं, स्कूल से आके फिर नाश्ता करके, खाना खाके ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद आके स्कूल का वर्क करना पड़ता है, फिर सुबह को जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर स्कूल जाना होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ समर वेकेशन में, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना सोता हूँ, पूरे साल की कसर एक पूरे घर में छुट्टियों में निकालता हूँ।
1: और जीतता कौन है?
4: जीतता स्कूल है।
1: अच्छा,
0: मतलब फाइनली स्कूल खुल जाता है और नींद टूट जाती है।
3: हमें छुट्टियों में सोना नहीं चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए,
1: कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए।
4: हाँ। इसीलिए मैं जून में नहीं सोता, सिर्फ मई में सोता हूँ।
0: हाँ, क्योंकि छुट्टियों का टाइम हमें साल में एक ही बार मिलता है, जिसमें हम और नई नई चीजें सीख सकते हैं और इन्हें ट्राई कर सकते हैं, है ना सैंडी?
1: दीदी मैंने ना आइस वाटर भी गेम खेले।
2: हाँ, मैं भी खेलती हूँ।
1: बर्फ पानी,
2: आइस एंड वाटर।
0: और उसमें क्या होता है?
4: एक बच्चा होता है, आइस लेके आता है, दूसरे बच्चे के ऊपर डाल देता है, और जब तक वो आइस
1: ऐसा नहीं करते
2: कोई भी नहीं आएगा।
4: डैनर होता है ना, वो दूसरे बच्चे के ऊपर आइस डाल देता है तो वो आइस बन जाता है, और जो बाकी ऑडियंस होते हैं ना वो उस बच्चे के ऊपर पानी डाल देता है तो वो पानी आ जाता है।
3: आकाश कश्मीर से लाते हो आइस?
4: नहीं नहीं, फ्रीजर से।
0: भाई ये तो नाम पे चलेगा आकाश, लेकिन एक्चुअली हम ये आइस वाटर कैसे खेलते हैं हमें कौन बताएगा?
4: नहीं भूलना दीदी, आप बताओ।
0: अच्छा सैंडी बताओ।
1: इस गेम में एक होता है, एक डिनर होता है और बाकी सब खेलने वाले होते हैं, तो ट्रेनर किसी को बोल देगा ना कि आइस, तो वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में खड़ा रहेगा,
4: उसको टच भी करना होता है,
1: स्टेचू बन जाएगा, फिर बाकी जो होंगे ना उसे टच करेंगे तो वो आइस से हट जाएगा, मतलब आवास वाटर बन जाएगा।
0: अच्छा, तो इस गेम में बहुत मजा आता है यानी?
1: हाँ, बहुत।
2: हाँ, दीदी बहुत आता है।
0: और अपने स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हो कि घर पे?
1: कभी कभी हम लंच में भी खेलते हैं। ऐसा
0: लंच में खेलते हो?
3: हाँ दीदी।
0: और बहुत तेज तेज भाग के जब पकड़ना होता है, क्या कभी किसी को चोट लगी है कोई गेम खेलते खेलते?
1: हाँ, हमने इसी गेम में, मैंने
2: सावधान रहते हैं,
0: बहुत सावधान रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सैंडी?
1: मैंने इसी गेम में सर को एक बार गिरा दिया था भागते भागते।
0: सर को गिरा दिया था? मतलब भागते भागते आप उनसे टकरा गए थे?
1: फिर सर ने मुझे एक थप्पड़ मार गिरा दिया।
3: दीदी मुझे क्रिकेट में चोट लगी थी जब मैं कीपिंग कर रहा था।
0: कीपिंग करते टाइम?
3: हाँ दीदी।
0: तो आपके पास ग्लव्स होते हैं कि नहीं?
3: नहीं, हम बिना ग्लव्स के ही करते हैं।
1: खतरों के खिलाड़ी हम।
4: मेरे पास ग्लव्स पड़े हैं लेकिन मुझे कीपिंग करनी नहीं आती।
3: लेदर की बॉल से नहीं खेलते ना, टेनिस की बॉल से खेलते, इसलिए ज्यादा
4: चोट लग सकती है। सॉफ्ट टेनिस या हार्ड टेनिस भैया?
3: हार्ड टेनिस होती
4: है। अच्छा,
3: लेकिन फिर भी उससे कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो चोट लग जाती है।
4: मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, उनके अंकल गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, तो हार्ड टेनिस की बॉल से वो लोग खेलते हैं, तो जैसे ही बॉल आई तो उनकी लिटिल फिंगर पे कट लग के बॉल चौका लग गया और उनकी लिटिल फिंगर टूट गई।
0: मतलब ये सब गेम्स खेलते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गेम जीतने से इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी किसी को चोट ना लगे, है ना बच्चों?
3: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो ये तो हुई बातें जो हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप जब मम्मी के साथ या पापा के साथ होते हो तो उनको कौन से गेम्स खेलना पसंद है? क्या वो आप लोगों के साथ कभी कोई गेम्स खेलते हैं?
4: मेरे साथ तो नहीं,
1: मेरे साथ भी नहीं।
2: खेलते
3: सैंडी के पापा खेलते हैं ना बैडमिंटन।
0: हाँ सैंडी के पापा तो सैंडी के साथ बैडमिंटन खेलते हैं
1: जब कभी कभी फ्री होते तब।
3: अच्छा मूड पे डिपेंड,
1: मूड के ऊपर डिपेंड करता हूँ।
0: अच्छा और मम्मी के साथ तुम लोग कोई गेम खेलते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
0: क्या भूखना?
2: मेरे मम्मी पापा यूनो खेलते दीदी, यूनो मोनोपोली सारे गेम्स खेलते,
0: सारे गेम्स खेलते हैं।
2: और मैं ब्रेन वीटा भी खेलती हूँ।
0: अच्छा और कोई गेम?
1: हाँ दीदी मैं मम्मी के साथ कभी कभी सांप सीढ़ी खेलता हूँ, लूडो।
0: अरे वाह, मतलब उसमें
1: मम्मी बहुत अच्छा खेलती है सांप सीढ़ी।
0: मम्मी को मजा आता है
1: बहुत, और मम्मी को फूल आता भी है।
0: और पंकज कौन सा गेम खेलते हो? मम्मी के साथ कभी कोई गेम खेलते हो?
3: नहीं दीदी मम्मी के साथ कभी गेम नहीं खेला मैंने।
0: कभी नहीं खेला?
3: नहीं खेला।
0: लेकिन कभी कभी हमें अपनी मम्मियों के साथ गेम खेलना चाहिए क्योंकि वो लोग तो घर में अकेले होते हैं और हमें इतने सारे गेम्स आते हैं।
2: मेरी मम्मी ऑफिस जाती है दीदी।
3: वो एक गोटियों वाला गेम आता है ना, पांच कंकर पत्थर होते हैं।
4: हाँ क्या कहते हैं उसको, गट्टे, गट्टे की गोटियां ऐसा कुछ।
0: अच्छा तुम लोगों ने कभी पिट्ठू फोड़ खेला है? ये कैसे खेलते हैं?
1: कौन सा गेम दीदी?
0: नहीं खेला? इसमें क्या करते हैं, हम सात पत्थर लेते हैं जिनको हम बड़े से छोटे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख
4: देते। सतोलिया।
0: अच्छा उसे सतोलिया बोलते हो?
3: हाँ दीदी।
4: हाँ
0: मतलब उसे खेलने में तो बहुत मजा आता है ना।
4: बहुत,
1: जब एक दूसरे को मारते हैं ना
4: पॉट
1: मजा आता है।
0: लेकिन धीरे धीरे मारो, किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए।
1: हम तो जोर जोर से मारते हैं,
3: पूरी कसर
1: निकाल देते हैं। बोले कल मुझे छेड़ रहा था ना, ले
4: ले काले मार।
0: अच्छा तुम लोग कभी किसी टीम में कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गए हो?
4: हाँ दीदी मैं सिंगिंग की टीम के लिए टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गया था, सिंगिंग के लिए।
0: किसी गेम के लिए गए हो क्या?
4: गेम के लिए एक बार गया था, स्कूल से बैडमिंटन के लिए सिलेक्ट होकर मैं जोधपुर गया था खेलने के लिए। तो वहाँ पे जितने बच्चे थे ना, तो सर ने मेरा नंबर लास्ट में लगा दिया, तो आगे के आगे सब लोग आउट होते जा रहे थे। और उस टाइम मेरा लक ऐसा था ना कि जब हवा मेरे तरफ की थी तो मैं जैसे मार रहा था ना, वो सीधा उसके पाले में आके गिर रहा था, और हवा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो उसको परेशान हो जा रहा था बेचारा, कॉक किधर से मारूं, से बार बार उसका गिर रहा था। लेकिन अंत में मैं आउट हो गया, लेकिन हमारी टीम जीत गई।
0: अरे वाह आपकी टीम जीत गई। और सैंडी पंकज तुम लोग कभी गए हो?
1: हाँ दीदी मैं जिन्माष्टमी में गया हूँ।
0: अच्छा
1: जिन्माष्टमी में बहुत बार गया हूँ, 5-6 बार गया हूँ, मेरे को 5 सर्टिफिकेट जिम्नास्टिक के।
0: अच्छा जिम्नास्टिक के 5 सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं? अरे वाह। और भुगना इसी बात पे हम सब क्या करेंगे सैंडी के लिए?
2: थैंक
1: यू।
0: भुगना आप कभी किसी गेम के लिए गए हो?
2: मैं गेम के लिए नहीं दीदी, पर कराटे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन।
4: हाँ।
0: कराटे? अरे वाह। और आकाश?
4: मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
0: गेम खेलते समय कुछ फनी?
4: हाँ
1: हाँ दीदी,
0: हमने तो बहुत डांट खाई है क्योंकि हम गेम जब खेलना शुरू करते थे तो फिर चाहे रात हो जाए और लेट हो जाए खेलते ही रहते थे, खेलते ही रहते थे। सबकी मम्मियां बुलाती रहती थी और हम लोग घर ही नहीं जाते थे, फिर सबकी मम्मियां आके धीरे धीरे एक एक को कान पकड़ के लेके जाती थी।
3: दीदी आपने इमोशनल कर दिया, हमने फनी पूछा था।
0: लेकिन वो हमारे लिए फनी होता था क्योंकि डांट खा के भी हम लोग गेम खेलते रहते थे।
1: तो हम लोगों ने भी बहुत मार खाई है,
0: डांट खाई है।
1: मैंने मार खाई है
3: बस।
4: बस पुरानी यादें मत ताजा करो पप्पू भैया।
0: और भुवना?
2: नहीं दीदी इतना फनी इंसिडेंट नहीं हुआ।
0: ठीक है तो आज के इस गेम्स के ऊपर करी बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। भाभी जी।

0: ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।